मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 मई सन 2026। 5:56 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने वाले हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मन से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत कर रहे हैं मातृवंदना से।

समूह स्वर में अभी आपने सुनी वीरेंद्र मिश्रा की देशभक्तिपूर्ण रचना। लीजिए अब सुनिए सीताराम सिंह के स्वर में संत कबीर का ये भक्तिपद।

अनूप जलोटा के स्वर में अभी आपने सुना ये भजन। लीजिए अब सुनिए सुरेश वाटकर के स्वर में कवि राम नारायण अग्रवाल का ये भजन।

0: इस भक्ति रचना के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख श्री गुलाब सिंह का है।
1: मनुष्य का जीवन एक निश्चित कालखंड में उसके द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों का प्रतिफल है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है समय, जिसमें उसने जीवन जिया है। वर्तमान युग समय प्रबंधन का है। दूसरे शब्दों में, जिस व्यक्ति ने समय का प्रबंधन सही रूप में कर लिया है, उसी का जीवन सफल और चरितार्थ है। क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वो हमेशा उड़ता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति पायलट की भूमिका निभाते हुए समय के वेगवान जहाज को नियंत्रित और संचालित करना जानता है, वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये भी सच है कि आप चाहे कितने चालाक, धनी, बुद्धिमान अथवा मेहनती हैं, समय की गति को रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, नहीं पीछे धकेल सकते हैं। इतना ही नहीं, समय को संसार के किसी दुकान या बाजार से खरीदा नहीं जा सकता, नहीं उसे बचाकर रखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को असीमित काल का एक निश्चित भाग ही मिलता है, जिसका अधिसंख्य लोग सही उपयोग और उचित प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। उनके लिए तो यही कहा जा सकता है कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है। बर्बाद समय दोषी व्यक्ति से बदला भी लेता है और व्यक्ति को हानि भी उठानी पड़ती है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने उद्देश्यों का चुनाव करना जानता है और सर्वोत्तम को प्राप्त करने का सार्थक प्रयत्न करता है। समय प्रबंधन का सूत्र है कि हम अपनी दिनचर्या तय करें और उसका पालन अनिवार्य रूप से करें। दैनिक कार्यों की सूची कार्यों की आवश्यकता अनुसार वरीयता क्रम में बनाएं। अपने घर और कार्यस्थल को व्यवस्थित रखने की कोशिश करें। अतीत की सोच में समय व्यतीत न करें। प्रतीक्षा के समय के उपयोग का विकल्प हमेशा पास रखें। वर्तमान में सचेत रूप से रहें और प्रत्येक क्षण का सजगता से उपयोग करें। समय का पालन करने से जीवन में अनुशासन और नियमितता आती है। प्रतिपल प्रकृति स्वयं इसकी प्रेरणा हमें प्रदान करती है। पल पल परिवर्तित प्रकृतिवश सभी ग्रह उपग्रह अपनी कक्षा में समय का पालन करते हुए चक्कर लगाते हैं। वनस्पतियां और जीव जंतु समय से अपना कार्य संपादित करते हैं।

0: व्यक्ति से प्रेरणा लेकर हमें भी अपनी दिनचर्या और कार्य योजना को व्यवस्थित करना चाहिए। समय पर सोने और जागने से हमारी कार्यशक्ति और प्रभावशीलता बढ़ती है। सच तो यह है कि यदि हमने समय का सर्वोत्तम उपयोग करना सीख लिया तो हमें जीवन में उपलब्धियां स्वतः ही मिलती जाएंगी। हमें अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर भी ध्यान देना जरूरी है। समय पर भोजन, स्वाध्याय, मनोरंजन, हंसने का आनंद लेना भी आवश्यक है। इतना ही नहीं, हमें अपनी सामर्थ्य और क्षमताओं को नित नवीन तकनीकों को सीखकर बढ़ाना चाहिए। सीखने के लिए उम्र की बाधा नहीं होनी चाहिए। नए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने से हमारी कौशल क्षमता विकसित होती है। अतः हमें अपने समय का ऐसा प्रबंधन करना चाहिए जिसमें कुछ समय अपने लिए, कुछ समय परिवार और समाज के लिए हो। कहना न होगा कि यदि हम समय का सही निर्धारण और नियोजन कर सकें तो हमारा जीवन सफल ही नहीं बल्कि चरितार्थ भी हो जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख था श्री गुलाब सिंह का। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन के मार्ग पर छोड़ अयोध्या लौटते हुए सुमंत्र को वैसा ही पश्चाताप हो रहा है जैसा किसी विवेकशील वेद के ज्ञाता तथा साधु चरणों में आसक्त व्यक्ति के मन में हो सकता है यदि वो धोखे से मदिरापान कर ले। भयानक संताप के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए हैं, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से कुछ भी सुनाई नहीं देता और बुद्धि काम नहीं कर रही, होठ सूख गए हैं, जीवा काम नहीं करती। आसन्न मृत्यु के इन सभी लक्षणों के बावजूद प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मन के किसी कोने में ये आशा बंधी है कि 14 वर्ष बीत जाने पर श्री राम अयोध्या लौटेंगे और एक बार फिर उनके दर्शन हो सकेंगे। परंतु रह रहकर वो इस सोच से व्याकुल होते हैं कि अयोध्या लौटकर वो लोगों को क्या उत्तर देंगे। उन्हें अकेला वापस आया देख कोई उनसे बात भी नहीं करेगा। शोक में डूबी माताओं का सामना वो किस प्रकार कर सकेंगे। आशंकाओं में डूबते उतराते सुमंत्र अयोध्या के समीप पहुंचे, किंतु दिन के प्रकाश में नगर में प्रवेश करने का उन्हें साहस नहीं हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, कलाकार थे बशीर अहमद। आकाशवाणी के इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृषि चर्चा इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए खरीफ में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन का महत्व, इस विषय पर जानकारी देते हुए डॉक्टर राकेश वनवासी।
1: किसान भाइयों, आज हम समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। कृषि में फसलों की अच्छी उपज के लिए फसलों को पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ये पोषक तत्व देने के लिए हमारे पास कई स्रोत होते हैं, जैसे कि रासायनिक उर्वरक, उसके अलावा हरी खाद जैसे सनई या ढेंचा, इसको हरी खाद के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं, और जैव उर्वरक भी हैं जो पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा कंपोस्ट खाद या फिर गोबर की खाद, यानी कई प्रकार के जैविक और कार्बनिक खाद हैं जो कि पोषक तत्वों के स्रोत हैं। तो किसान भाइयों, पौधों के लिए उपयोगी पोषक तत्वों के कई स्रोत होते हैं, इन्हीं स्रोत का एक साथ समन्वय करके उपयोग करना ही समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन अथवा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में INM कहते हैं, इसके रूप में ये जाना जाता है। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य मृदा में दीर्घकालीन उर्वरता को बनाए रखना, उपज में वृद्धि प्राप्त करना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करना, पर्यावरण एवं कृषि संसाधन जैसे कि भूमि, मृदा जल, इसको स्वस्थ बनाए रखना भी इसका उद्देश्य है। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के अंतर्गत कई चरण होते हैं, कई घटक होते हैं जिनका हम सामान्य चर्चा करते हैं, जैसे कि मृदा का परीक्षण करना अथवा सॉइल टेस्ट करना, और मृदा में पोषक तत्वों के स्तर के आधार पर, यानी कि कमी या फिर अधिकता के आधार पर, कौन कौन से पोषक तत्व देने हैं, उनकी कितनी मात्रा देनी है, इसका निर्धारण करना। साथ ही भूमि में कार्बनिक खादों और जैविक पदार्थों का उपयोग करना, यानी हमको जैविक पदार्थ या कार्बनिक खाद भी ऐड करना है। तो जैविक पदार्थ या कार्बनिक खाद कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ग्रीन मैन्यूर है, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, या फिर नाडेप कंपोस्ट है, यानी बाड़ी में तैयार किया गया कंपोस्ट है। तो इन कार्बनिक खादों को भूमि में हमको मिलाना है, तो ये एक घटक है। इसके अलावा जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक ऐसे सूक्ष्म जीवों के समूह होते हैं जो कि भूमि में डालने पर पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं या फिर नत्रजन को स्थिर करते हैं। धान की खेती में ही एक नील हरित काई जो है, ये बहुत ही उपयोगी जैव उर्वरक है जो कि नत्रजन को स्थिरीकरण करने के लिए काम में लाया जाता है। और वर्तमान में क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम रोपा पद्धति का उपयोग करते हैं जिसमें खेतों में हम पानी को रोक कर रखते हैं, तो ऐसी अवस्था में हम नील हरित काई जैव उर्वरक का, जिसे हम BGA भी कहते हैं, उपयोग करना चाहिए। कई फसलें हैं, विशेष करके सनई या सनहिंग, ढेंचा, मूंग, लोबिया, उड़द, ये सभी फसलें हरी खाद की फसल के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं। आजकल जो जैव उर्वरकों का प्रकार आजकल जो प्रचलित है वो कंसोर्शिया कहलाता है। कंसोर्शिया मतलब एक ही तरल में कई प्रकार के बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक मिश्रित होते हैं, और आप उनका उपयोग करके खेतों में फसलों में जो है लाभ उठा सकते हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मृदा का परीक्षण, जैविक खाद, कार्बनिक खादों का उपयोग, जैव उर्वरकों का उपयोग, इन सभी स्रोतों से हम कृषि की फसलों में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं, इसे ही समन्वित पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। एक उदाहरण के रूप में हम धान की चर्चा करेंगे, तो धान में जैसे हम बीजोपचार के लिए और पौध जड़ के उपचार के लिए यदि हम जैव उर्वरक का उपयोग करें, साथ ही पानी भरे खेतों में यानी धान की खेत में यदि हम नील हरित का या BGA का उपयोग करें, खेत की तैयारी

0: प्रतिशत तक रासायनिक खाद की मात्रा को कम कर सकते हैं। इससे लागत में भी कमी आएगी तो हमारी बचत भी होगी, साथ ही हमारी भूमि, हमारा पर्यावरण भी जो है स्वस्थ रहेगा और हमारी उपज में वृद्धि से हमको लाभ प्राप्त होगा। तो ये आज के समय की आवश्यकता है कि हम रासायनिक खादों पर अपनी निर्भरता को कम करें और समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाते हुए लाभ लें।
1: कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे खरीफ में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन का महत्व, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राकेश वनवासी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार वितरण का सजीव प्रसारण आप सुनेंगे शाम 5 बजे। पब्लिक स्पीक सुनिएगा रात 9:30 पर। स्पोर्ट्स स्कैन आप सुनेंगे रात 8:30 पर। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर सुनिएगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। इसमें आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस पर बचपन बचाओ आंदोलन संस्था के सदस्य श्री विपिन ठाकुर से बातचीत। साथ ही आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय थायराइड दिवस पर डॉक्टर विकास अग्रवाल से विशेष बातचीत। और साथ ही सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस पर वरिष्ठ फुटबॉल कोच मुश्ताक अली प्रधान से बातचीत। प्रस्तुत करता होंगे अंकुर शुक्ल। सुबह 8:30 पर साहित्य पत्रिका पल्लवी आप सुनेंगे। इसमें सुनिएगा कहानी एक्वेरियम, कहानीकार होंगी श्रीमती मीना गुप्ता। साथ ही सुनिएगा श्रीमती शुचि लिखा का कविता पाठ, संपादन प्रकाश उदय का होगा। सुबह 9 बजे सुनिएगा कार्यक्रम विज्ञान लोक में वार्ता जैव विविधता, वार्ताकार होंगी रेणु माहेश्वरी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 और रात 8:15 पर कलाकार होंगी तापसी नागराज। इसी कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे मोहम्मद याकूब। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10 बजे सुनिएगा पंडित जगदीश प्रसाद का गाया राग भटियार। इसी कार्यक्रम में रात 10:30 पर शाहिद परवेज का सितार पर बजाया राग पूरिया धनाश्री आप सुनेंगे। फोन करो छत्तीसगढ़ की सुनव, ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 11:05 पर। प्रस्तुत करता होंगे तारकेश्वरी आसुदानी। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे। लोक रंजनी कार्यक्रम सुनिएगा दोपहर 12:30 पर, कलाकार होंगे लखन नेताम। और साथ ही दोपहर 1:30 पर कार्यक्रम बिंदिया के आकर्षण होंगे। आज की बात इसमें चर्चा का विषय होगा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। साथ ही सुनिएगा कवि गोष्ठी, प्रतिभागी कवित्री होंगी सीमा पांडे और विजया ठाकुर, संचालन करेंगी नेहा त्रिवेदी। साथ ही सुनिएगा तरन्नुम और टिप्स। शाम 7:21 पर कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट प्रबंधन। आज की सलाह में दुग्ध प्रसंस्करण एवं प्रबंधन, इस विषय पर डॉक्टर सारंग दिलीप पोपली, सहायक प्राध्यापक दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर की सलाह। सुरों का सफर, पुराने फिल्मी गीतों का ये फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10 बजे। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे सुबह 9:15, 10:30, दोपहर 1:05, 2 बजे, 2:30, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं, आइए समाचार सुनें।

भारतीयर्थ विभागेन सूचितम्। क्रीडावार्तासु आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ दिल्ली कैपिटल्स दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स दलं पराजितम्। अपरतः राजस्थान रॉयल्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं 30 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में प्रधान गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ. जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। IPL क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। प्रस्तुत करता है अंकुर शुक्ला।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग सुप्रभात साथियों, मैं हूं अंकुर शुक्ल और आप सुन रहे हैं सुबह की ताजगी से भरपूर आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। दोस्तों, आज तारीख है 25 मई और आज से शुरू हो रहा है नौतपा। जी हाँ, भारतीय पंचांग के अनुसार सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब शुरू होते हैं साल के सबसे गर्म माने जाने वाले 9 दिन, जिन्हें नौतपा कहा जाता है। कहते हैं नौतपा जितना तपता है बारिश उतनी ही अच्छी होती है। यानी अभी भले ही गर्म हवाएं तेज धूप परेशान करें, लेकिन यही तपिश आने वाले मॉनसून की उम्मीद भी लेकर आती है। तो दोस्तों, खूब पानी पीजिए, बाहर निकलते वक्त सर को ढकिए और अपने आसपास पशु पक्षियों के लिए भी पानी जरूर रखिए, क्योंकि गर्मी सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि हर जीव को लगती है। और दोस्तों, गर्मी की छुट्टियों का दौर तो चल ही रहा है, बच्चे घरों में हैं, तो क्यों ना आज का दिन मोबाइल से थोड़ा दूर और परिवार के थोड़ा पास बिताया जाए। दादी नानी की कहानियां, पुराने खेल और फिर घर की छत पर सुबह की ठंडी हवा, यही तो असली छुट्टियों की यादें होती हैं। तो चलिए, इन्हीं विचारों के साथ शुरू करते हैं आज का सफर।

0: इस गढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
0: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
2: 10वीं या BSc पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था CPET रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
3: साथियों, अब बात एक ऐसे क्रांतिकारी की जिनके विचारों और साहस ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी। हम बात कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी राजबिहारी बोस की। उनका एक बहुत प्रसिद्ध विचार है, स्वतंत्रता मांगने से नहीं, संघर्ष और बलिदान से मिलती है। और उन्होंने सिर्फ यह कहा नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन में इसे जीकर भी दिखाया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति की योजनाएं बनाना, युवाओं को जोड़ना और देश से दूर जापान में भी भारत की आज़ादी के लिए काम करना, ये सब उस दौर में आसान नहीं था। राजबिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को हुआ था। 1915 के गदर आंदोलन से लेकर आगे चलकर आज़ाद हिंद फौज की नींव तैयार करने तक राजबिहारी बोस ने लगातार देश के लिए काम किया। कहते हैं अगर उन्होंने विदेश में रहकर भारतीयों को संगठित करने की शुरुआत नहीं की होती तो शायद आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वह मंच इतनी मजबूती से नहीं मिल पाता। दोस्तों, राजबिहारी बोस हमें यह सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी कठिन क्यों ना हों, अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान दूर रहकर भी अपने देश और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। आज जब हम अपने छोटे छोटे लक्ष्यों के सामने जल्दी हार मान जाते हैं तब ऐसे क्रांतिकारियों का जीवन हमें धैर्य, साहस और समर्पण की प्रेरणा देता है।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: डिजिटल अरेस्ट, इसमें ठग अपने आप को पुलिस का अधिकारी या कस्टम का अधिकारी बताकर कॉल करता है और इनके द्वारा ऐसा बताया जाता है कि आपकी निजी बैंक अकाउंट, आधार कार्ड का यूज़ इन लीगल एक्टिविटी में हो रहा है, जैसे हवाला का पैसे के ट्रांसफ़र पे या ड्रग्स के व्यापार पे, और इस प्रकार आपको भय या डर के आधार पर आपके साथ ठगी करने का प्रयास किया जाता है। इसमें आम व्यक्ति समानता डर जाता है, तब ठग उन्हें वीडियो कॉल करता है और यह बोलता है कि आप अपनी लीगल प्रोसेस के लिए एक एक्स या वाई किसी सिटी पे पिछले 2 घंटे के अंदर पहुंचिए। जब आप उस सिटी में पहुंचने में असमर्थ होते हैं, तब वह बोलता है कि जब तक लीगल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, आप वीडियो कॉल में बने रहेंगे, और लगातार आपको डरा और धमका कर आपके साथ ठगी करने का प्रयास करता है। कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। आप हमेशा सतर्क रहें। कोई भी पुलिस ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर वीडियो कॉल पे कोई भी लीगल प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराता। यदि फिर भी आपके साथ किसी प्रकार की ठगी होती है तो आप 1930 पर कॉल कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।
2: दोस्तों, हर बच्चा अपने परिवार की मुस्कान होता है, लेकिन सोचिए जिन परिवारों के बच्चे अचानक उनसे बिछड़ जाते हैं, उन पर क्या गुजरती होगी। हर साल 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना, मानव तस्करी और बाल अपराधों के खिलाफ लोगों को सतर्क करना और ऐसे बच्चों को जल्द से जल्द उनके परिवारों तक पहुंचाने के प्रयासों को मजबूत करना। आज तकनीक के दौर में मोबाइल और सोशल मीडिया जितने मददगार हैं, उतने ही

0: खतरे भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में बच्चों को गुड टच, बैड टच, अजनबियों से सावधानी और ऑनलाइन सुरक्षा जैसी बातें सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। साथ ही अगर किसी बच्चे के गुम होने की जानकारी मिले तो उसे हल्के में लेने के बजाय तुरंत पुलिस और संबंधित हेल्पलाइन को सूचना देना भी हम सब की जिम्मेदारी है। इसी गंभीर लेकिन बेहद जरूरी विषय पर अब हम खास बातचीत करेंगे बचपन बचाओ आंदोलन नामक संस्था से जुड़े विपिन ठाकुर जी से।
1: विपिन जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: विपिन जी, सबसे पहले बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस क्यों मनाया जाता है?
2: जी हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस जो है ये 25 मई को मनाया जाता है। जैसा कि मालूम होगा 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इसकी शुरुआत की थी और उस दिन से ये दिवस जो है पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और जैसा कि इसका पीछे मुख्य उद्देश्य जो है वो है गुमशुदा बच्चों के प्रति समाज को जागरूक करना, बच्चों की सुरक्षा को लेकर के लोगों को संवेदनशील बनाना और हमारी जो सिस्टम है उसको इस प्रकार सक्रिय बना सकना कि बच्चों को हम अतिशीघ्र खोज सकें, उनका पुनर्वास कर सकें और उन्हें समाज के बीच में हम वापस उनको ला करके उनको सुरक्षित बचपन उनको दे सकें। क्योंकि बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है, ये मानते हुए 1983 से जो है इस दिवस को मनाया जा रहा है 25 मई को।
1: जी विपिन जी, भारत और खास तौर पर छत्तीसगढ़ में बच्चों के गुम होने के प्रमुख कारण क्या सामने आते हैं?
2: जी हाँ, जैसे कि हम पिछले कई वर्षों से इस विषय पर काम कर रहे हैं, हमने ध्यान दिया है, कई प्रकार की चीज बातें बहुत सी बातें निकल के आई हैं। बच्चों के पीछे गुम हो जाने के पीछे कई प्रकार के कारण है, जैसे बहुत से बच्चे घर से भाग जाते हैं, खुद से भाग जाते हैं, इसके पीछे पारिवारिक विवाद है, घरेलू हिंसा भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है कि घर में माता पिता के बीच में झगड़ा होता रहता है, बच्चा उसमें ट्रॉमा का शिकार हो जाता है और वो कहीं ना कहीं वो अपने आप के लिए सुरक्षित स्पेस ढूंढता हुआ वो घर से चला जाता है। इसके अलावा पढ़ाई का दबाव है आजकल के समय में कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा अनावश्यक रूप से दबाव भी डाला जा रहा है, जो बच्चे उनकी कैपेसिटी के बाहर अगर कोई चीज है वो बच्चे उसको नहीं कर पाते हैं तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू करते हैं। इसके अलावा अभी अगर हम देखें तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं इमोशनल तरीके से कमजोर हैं उन बच्चों को बहुत से लोग बहला फुसला करके अपने साथ लेकर के चले जा रहे हैं, बच्चे घर से नाराज होकर के निकल जा रहे हैं। या फिर अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो बहुत सारे बच्चों को गुम होने के पीछे जो कारण है वो कहीं ना कहीं बाल तस्करी भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या ऐसे बच्चे जो थोड़े भावनात्मक रूप से कमजोर हैं इन बच्चों को ले जा करके लोग उनका शोषण कर रहे हैं, उनसे मजदूरी करवाई जा रही है। ये सब जो माध्यम है ये कहीं ना कहीं है। और छत्तीसगढ़ जैसे अगर अपन देखें तो उत्तर छत्तीसगढ़ है और दक्षिण छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, इन कम्युनिटी के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, इन लोगों को भी बहला फुसला करके लोग अपने साथ बाहर ले जा लेते हैं और जहाँ पर इनके साथ में कई प्रकार के एक्सप्लॉइटेशन जो है वो होते हैं।
1: जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि बच्चों को सेफ्टी एजुकेशन किस उम्र से और कैसे देना चाहिए?
2: जी जी जी, बच्चों को सेफ्टी एजुकेशन जो है ये मुझे लगता है कि बहुत छोटी उम्र से हमको दे देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। और सेफ्टी एजुकेशन जो है ये कहीं और से नहीं, घर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि अगर अपन देखते हैं कि बच्चों का जो एक्सप्लॉइटेशन होता है वो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ही होता है जो उनके जान पहचान के होते हैं, उनके परिचित के होते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कहती है कि लगभग 70% जो होते हैं बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन करने वाले उनके करीबी ही होते हैं। तो बच्चों को जो सेफ्टी एजुकेशन है वो बहुत छोटी उम्र से घर पर ही दी जानी चाहिए, उन्हें सेफ टच अनसेफ टच यानी जिसे हम सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श कहते हैं, जैसे पहले जिसे पहले गुड टच बैड टच कहा जाता था, उस चीजों को हमको घर से ही सिखाना चाहिए। इसके अलावा बिल्कुल सरल भाषा में बच्चों को इन चीजों को घर से शुरुआत करने के बाद जो प्राइमरी लेवल की स्कूल में जब बच्चे पहुंचते हैं, प्री नर्सरी में पहुंचते हैं, उसके बाद वो आगे की जो पढ़ाई करते हैं तो स्कूलों में भी यह सुरक्षा जो है सेफ्टी एजुकेशन जो है ये शुरुआत से ही देनी चाहिए कि किस किस प्रकार के एक्सप्लॉइटेशन बच्चों के साथ में, उनके दुर्व्यवहार उनके साथ में हो सकता है।
1: जी, एक और सवाल ये है कि अगर किसी को कोई बच्चा संदिग्ध परिस्थिति में दिखाई दे तो उस व्यक्ति को उस वक्त क्या करना चाहिए?
2: देखिए, अगर कोई बच्चा कहीं पर भी संदिग्ध परिस्थिति में किसी को दिखाई देता है तो वहां पर हमको बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले उस बच्चे को अगर आप बात कर सकते हैं तो उस बच्चे को विश्वास दिलाइए कि आप उसकी सुरक्षा के लिए हैं और तत्काल में पुलिस के जो हमारे ERSS के जो नंबर है, जैसे 112 एक ERSS का नंबर है, इसके अलावा में चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर 1098 है, इन नंबरों पर हमको फोन करना चाहिए और उन बच्चों को उनके सुपुर्द कर देना चाहिए। हर प्रत्येक व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी बच्चा अगर ऐसी परिस्थिति में कहीं मिल रहा है, दिख रहा है, तो उस बच्चे को सबसे पहले ट्रॉमेटाइज होने से बचाना है और उस बच्चे को सुरक्षित जो तंत्र बना हुआ है वहां तक पहुंचाना है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट उस बच्चे को किसी के सुपुर्द कर देते हैं तो बच्चा जिन परिस्थितियों में निकला था, किस कारण से वो घर से निकला था, क्या कहीं वो वापस उसी ट्रॉमा उसी कारण तो नहीं पहुंच जा रहा है, तो ये सब जांच करने के लिए जो है 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है जिस पे हम फोन कर सकते हैं। पुलिस की जो इकाई है जिसमें 112 जो ERSS का नंबर है हम उसमें कॉल कर सकते हैं। नजदीकी जो जिला बाल संरक्षण इकाई है हम वहां पर कॉल कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा ऐसे NGO जो बच्चों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं हम उसको भी इनकी सूचना दे सकते हैं कि इन बच्चों को तत्काल संबंधित एजेंसियों के पास मदद के लिए ले जाया जा सके।
1: जी विपिन जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे श्रोताओं को जागरूक करने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दोस्तों, कई बार हम थकान, वजन का बढ़ना या घटना, चिड़चिड़ापन, बाल झड़ना या नींद की परेशानी जैसी चीजों को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये संकेत शरीर में थायराइड की समस्या के भी हो सकते हैं। हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को थायराइड से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक करना, क्योंकि आज यह समस्या तेजी से बढ़ रही है, खासकर महिलाओं में। थायराइड हमारे गले में मौजूद एक छोटी सी ग्रंथि होती है, लेकिन इसका असर पूरे शरीर की ऊर्जा, मेटाबॉलिज्म, दिल की धड़कन और मानसिक स्वास्थ्य तक पर पड़ता है। अच्छी बात यह है कि सही समय पर जांच, संतुलित खानपान और नियमित इलाज से थायराइड को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जागरूकता और समय पर पहचान बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी विषय पर और विस्तार से बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर विकास अग्रवाल जी।
1: विकास जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले हमें बताइए कि थायराइड क्या होता है और यह शरीर में क्या काम करता है।
2: थायराइड हमारे गले के सामने वाले हिस्से में एक छोटा सा ग्रंथि होता है, जिसका काम होता है थायराइड हार्मोन बनाना। और ये थायराइड हार्मोन जो होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मतलब कि हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। उसके अलावा थायराइड ग्लैंड, हमारे थायराइड जो हार्मोन होता है, हमारे शरीर के और भी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे कि दिल की धड़कन को, शरीर की वजन को, शरीर के तापमान को, हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को, फर्टिलिटी सिस्टम को, ब्रेन को, बाहरी त्वचा को, ये सारी चीजों को जो है ना, हमारा शरीर ओवरऑल फंक्शनिंग को थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है।
1: जी सर, आजकल थायराइड की समस्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है?
2: देखिए, थायराइड की समस्या आजकल इसलिए बहुत कॉमन हो गया है क्योंकि आजकल जो देखा गया है, तनाव और मानसिक दबाव बहुत कॉमन हो गया है, दिनचर्या अनियमित हो गई है, खानपान बहुत खराब हो गया है, नींद की कमी की वजह से भी होता है, शरीर की कई गतिविधियां ऐसी होती है जिसकी वजह से हार्मोनल बदलाव होने लगता है, उसकी वजह से होती है, कुछ ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें शरीर के अंदर ऐसे केमिकल्स या एंटीबॉडी बनने लगते हैं जो हमारे ग्लैंड को खुद अपना ग्लैंड को ही डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसके अलावा आयोडीन की कमी से भी या उसकी अधिकता से भी हमारे हार्मोन का बैलेंस बिगड़ सकता है।
1: जी सर, अगर थायराइड के प्रकारों की बात करें तो हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड में अंतर क्या है?
2: देखिए, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड में एक ही फर्क है, वो एक में कम होता है, एक में ज्यादा। हाइपोथायराइड मतलब थायराइड हार्मोन शरीर में बहुत कम मात्रा में बनने लगता है या बिल्कुल बनना बंद हो जाता है, और हाइपरथायराइड जो होता है उसमें शरीर में थायराइड हार्मोन अत्यधिक मात्रा में बनने लगता है।
1: जी सर, इसमें कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें लोग अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं?
2: शुरुआती तौर पर देखिए, जो लक्षण होते हैं वो होता है जैसे कि लगातार थकान होना, वजन में अचानक बदलाव होना, बाल झड़ना, मूड स्विंग होना, मेंटल फोकस की कमी होना, स्किन ड्राई होना, और स्पेशली फीमेल्स में जैसे कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाना या ठंड ज्यादा लगना, गर्मी ज्यादा लगना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो हाइपो और हाइपरथायराइड दोनों में हो सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को हाइपोथायराइड है तो उसमें वजन बढ़ना है, अत्यधिक थकान लगना, ठंड के गर्मी के महीनों में भी ठंड का महसूस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, बाल झड़ना, सुस्ती रहना, उदासी होना, ये सारे सिम्टम्स हाइपोथायराइड में होते हैं। और उसके जस्ट अपोजिट सिम्टम्स हाइपरथायराइड में होते हैं, जैसे उसमें वजन घटने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, धड़कन तेज होने लगता है और ज्यादा पसीना आएगा, हाथ में ट्रेमर्स आने लगते हैं, ये सारे सिम्टम्स हाइपरथायराइड में होते हैं।
1: जी सर, क्या महिलाओं में थायराइड की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, इसका क्या कारण है?
2: डेफिनेटली थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो पुरुष और महिलाओं में अगर हम कंपेयर करें, दोनों में हो सकता है, बट पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह ज्यादा पाया जाता है। उसका रीजन है कि एक तो हार्मोनल बैलेंस महिलाओं में थोड़ा सा ज्यादा होता है, इम्बैलेंस, और स्पेशली प्रेगनेंसी की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड अफेक्ट होता है और दिक्कत होती है। और उसके अलावा प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के दौरान भी, और दूसरा फिर मेनोपॉज जो होता है उस समय जब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो जाता है तो थायराइड हार्मोन को सपोर्ट नहीं मिलता, उसकी वजह से भी हाइपोथायराइड का चांसेस महिलाओं में ज्यादा हो सकता है। उसके अलावा जो मैंने बताया ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें शरीर खुद ही अपने ऑर्गन को डैमेज करने लगता है, एंटीबॉडी बनाने लगता है, वो भी महिलाओं में ज्यादा कॉमन होता है।
1: जी सर, क्या सही डाइट और नियमित व्यायाम से थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है?
2: बिल्कुल, अगर आप नियमित अपनी जीवन शैली अच्छी रखें और अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करके रखें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं।
1: जी सर, मेरा आखिरी सवाल है कि थायराइड से जुड़े कौन कौन से मिथक हैं जिन पर लोग अक्सर विश्वास कर लेते हैं?
2: थायराइड से जुड़े मिथक ये हैं कि लोगों को लगता है कि अगर आप मोटे हो रहे हो मतलब आपको थायराइड, ऐसा नहीं है। हाइपर थायराइड में आपको वजन घट भी सकता है जी। तो अगर आपको वजन घट रहा है तो आपको हाइपर थायराइड हो सकता है। उसके अलावा लोगों को लगता है कि कॉमन मिथ ये होता है कि एक बार दवा शुरू कर दिए थायराइड का तो हमको जीवन भर मेडिसिन लेना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। ये मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है कि आप कई बार कुछ लंबे समय के लिए मेडिसिन लेना पड़ता है, कई बार कम समय के लिए मेडिसिन लेने के बाद थायराइड ठीक हो जाता है और मेडिसिन बंद भी हो सकता है जी। उसके अलावा मिथ ये होता है कि सिर्फ आयोडीन की कमी से ही थायराइड का प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी कई बीमारियां ऐसी होती है जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन बनना बंद हो सकता है या अत्यधिक हो सकता है, जैसे मैंने बताया ऑटोइम्यून डिजीज है ना, और हार्मोनल इंबैलेंस है, इसकी वजह से भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है
1: जी। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और थायराइड जैसी एक बीमारी पर हमारे श्रोताओं को जागरूक करने के लिए।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत।

0: दोस्तों, फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून, टीम वर्क और ऊर्जा का दूसरा नाम है, और इस खेल के प्रति लोगों का प्यार दुनिया भर में देखने को मिलता है। आज विश्व फुटबॉल दिवस के मौके पर बात उस खेल की जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा लोग खेलते और देखते हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें आगामी 2026 फीफा वर्ल्ड कप पर टिकी हुई हैं, जो 2026 में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। इस बार टूर्नामेंट और भी बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि पहली बार 48 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत में भले ही क्रिकेट का क्रेज ज्यादा हो, लेकिन फुटबॉल के प्रति युवाओं का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी गांवों और स्कूल स्तर पर फुटबॉल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बस्तर और सरगुजा जैसे इलाकों में कई युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। जरूरत है बेहतर ट्रेनिंग, सुविधाओं और बड़े मंच की। फुटबॉल हमें सिर्फ फिटनेस नहीं सिखाता, बल्कि टीम भावना, अनुशासन और संघर्ष की सीख भी देता है। तो आज इसी खेल भावना के साथ करेंगे खास बातचीत छत्तीसगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वरिष्ठ फुटबॉल कोच मुश्ताक अली प्रधान जी से।
1: मुश्ताक जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में। सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि विश्व फुटबॉल दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है।
2: विश्व फुटबॉल दिवस जो है दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है फीफा, जिसे फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसके अंतर्गत करीब 211 देश जो है फुटबॉल के वो इस संस्था से जुड़े हैं, और इसको और प्रसारित करने के लिए और ज्यादा खिलाड़ियों को इनसे जोड़ने के लिए फुटबॉल डे मनाया जाता है, ताकि नए खिलाड़ी और नए देश और नए जो जनरेशन है वो फुटबॉल की तरफ आकर्षित हो और फुटबॉल को ऊंचाइयों पर ले जाए।
1: सर, आगामी 2026 फीफा वर्ल्ड कप को लेकर दुनिया भर में काफी उत्साह है, इस बार क्या खास देखने को मिल सकता है?
2: इस बार खास ये देखने को मिलेगा कि 48 टीमें हो गई हैं, अभी तक 32 देश खेलते थे क्वालिफाई करके, 3 साल तक क्वालिफाइंग राउंड चलता है, तो सभी 5 महाद्वीप से क्वालिफाइड टीमें जो है वो फीफा वर्ल्ड कप में खेलने आती है, और इस बार नए जो देश हैं, छोटे देश हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने क्वालिफाई किया, और इस बार फीफा वर्ल्ड कप में काफी उलट फेर होने की संभावना है, क्योंकि नई जनरेशन, नए जो फुटबॉल से जुड़ रहे हैं वो देश काफी अच्छा कर रहे हैं, और आगे भी आपको देखने मिलेगा, पूरे दुनिया में उत्साह है, और 3 देशों में एक साथ ये प्रतियोगिता अमेरिका में खेली जाएगी, तो जी। मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा, तो यहाँ पे पूरी दुनिया भर के लोग मैच देखने जा रहे हैं, हिंदुस्तान से भी काफी संख्या में लोग जा रहे हैं, और सभी टिकटें जो हैं वो मेरे ख्याल से बिक चुकी हैं जी। और बहुत ही आकर्षक टूर्नामेंट होगा, 32 की जगह 48 टीमें हो गई है
1: जी। सर, भारत को तो वैसे क्रिकेट का देश कहा जाता है, क्रिकेट एक बहुत ही पॉपुलर गेम है यहाँ, लेकिन भारत में फुटबॉल का भविष्य आप किस तरह से देखते हैं? क्या युवाओं का रुझान बढ़ रहा है?
2: बिल्कुल बढ़ रहा है, जो हमारा भी जो ग्रास रूट पे है ऑल इंडिया फुटबॉल ने काम शुरू किया है, फीफा ने जो ऑल इंडिया फुटबॉल को बहुत ही अच्छा वो सहयोग दिया है, पूरा फंड उपलब्ध कराया, तो जो अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 17 की गर्ल्स और बॉयज टीम आप देख रहे हैं एशिया में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, कई टूर्नामेंट जीत रही हैं, और आने वाले समय में अच्छे कोचिंग के माध्यम से यहाँ का फुटबॉल 2030 तक हम उम्मीद करते हैं ये फीफा के लिए हम क्वालिफाई करने की स्थिति में आ जाएंगे, फुटबॉल का बहुत विस्तार हो रहा है
1: जी। सर, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ फुटबॉल खेल की वर्तमान स्थिति कैसी है?
2: वर्तमान स्थिति छत्तीसगढ़ की फुटबॉल में आपको या लोगों को जानकारी नहीं है, हम विगत 3 वर्षों से 3-4 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं यहाँ दूरंचल बस्तर में नारायणपुर में आयोजित कर रहे हैं, वर्तमान में अभी अंडर 20 का नेशनल चैंपियनशिप नारायणपुर में आश्रम में खेली जा रही है, जिसमें देश की 33 राज्यों की और केंद्र शासित टीमें वहाँ खेल रही है, और कल वहां पर फाइनल है, 22 दिन तक प्रतियोगिता चली, और यहीं

0: बच्चों को जो है टीवी से दूर रखने के लिए, दूसरे चीजों से दूर रखने के लिए बच्चों को ग्राउंड में भेज रहे हैं। और जागरूकता ये पेरेंट्स खुद 2-3 घंटे का जो ट्रेनिंग सेशन चलता है तो बच्चों के साथ उपस्थित रह रहे हैं, बच्चों को लाना ले जाना कर रहे हैं और बच्चे जो है फुटबॉल से बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं और दूसरी नशे से दूर हो रहे हैं। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज में भी ऐसी व्यवस्था की जाए, अच्छे कोचिंग सेंटर शुरू किया जाए ताकि खिलाड़ियों को और जो खेलना चाहते हैं उनको ज्यादा समय ग्राउंड में बीते तो वो बाकी चीजों से दूर हो।
1: जी सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और फुटबॉल को लेकर हमारे श्रोताओं को जागरूक करने के लिए।
0: थैंक यू सर।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: 10वीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
4: तो साथियों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है आज का नमस्कार रायपुर आपके लिए जानकारी, जागरूकता और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहा होगा। तो अब आप लीजिए इस मधुर गीत का आनंद और अपने रेडियो साथी अंकुर शुक्ल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, प्रस्तुत करता थे अंकुर शुक्ल। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: सूखते थे, वहाँ पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
3: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
4: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
2: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
5: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
3: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: पल्लवी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। मित्रों, इस अंक में हम संजो लाए हैं एक मार्मिक कहानी और जीवन के आसपास की कुछ कविताएं। श्रोताओं, जीवन प्रवाह में कितना कुछ होता है जो हल्का सा स्पर्श पाकर पीछे छूट जाता है, और फिर जब कभी अतीत का कोई एक सिरा छूने की कोशिश की जाती है तो दूसरा सिरा छूटने लगता है। लाख कोशिशों के बाद भी वक्त रेत की मानिंद हथेलियों से फिसलता चला जाता है। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का ताना बाना है आज की कहानी एक्वेरियम में। कहानीकार हैं श्रीमती मीना गुप्ता।
1: वह दिसंबर महीने की ठिठुरन भरी ठंड की सुबह थी। नीरा दूध लेकर वापस आ रही थी कि मोड़ पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे किसी ने आवाज दी हो, सुनिए। वह छिटकी और पीछे मुड़ी, कोई नजर नहीं आया। आवाज फिर आई, मैं इधर। आवाज सड़क के किनारे लोहे के तार घेर कर बनाए गए बगीचे से आई थी, जिसे वह न जाने कब से उजड़ा सूखा वीरान देखती आ रही थी और जो झुरमुटों का जंगल बनाया था। झाड़ियों के झुरमुट के पीछे एक काया डोलती नजर आई। उसने ठहर कर पूछा, आवाज आपने दी है? जी हाँ, मैंने दी है। आर यू टेनेंट ऑफ डॉक्टर किसले? वहीं से ऊंची आवाज में उन्होंने पूछा। जी हाँ। अरे वाह, क्या बात है, तब तो आप हमारी पड़ोसन हुई। कहकर पाइप को एक बड़ी सी क्यारी में फेंक ढलान से जल्दी जल्दी नीचे उतरते हुए सड़क पर उसके करीब आकर बोले, मैं सर्वेश सक्सेना, आपके जस्ट ऊपर वाला फ्लैट मेरा है, आपके मकान मालिक और मैं जिगरी दोस्त हैं। आधी से ज़्यादा जिंदगी यहीं बीती है, बाकी भी बीत जाती, लेकिन अब बहू बेटे रहने नहीं देते। दरअसल अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, इसलिए फ्लैट खाली ही रहता है। 3 BHK का वेल फर्निश्ड घर है, पूरी गृहस्थी है। दरअसल उन्हें फूल पौधों का बहुत शौक था। घर की बालकनी की तरफ उंगली से इशारा किया, देख रही हैं आप, रेलिंग पर टंगे सारे गमले उसके ही शौक हैं, और यह बगीचा भी उसने ही जिद करके बनवाया था। झूला भी हुआ करता था, शाम को यहीं बैठकर चाय पिया करते थे। ऑफिस से आते ही सारे दोस्त यहीं इकट्ठे हो जाया करते थे। सक्सेना जी अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाने को बेताब हो रहे थे। यदि नीरा यह कहकर ना निकल आती, अच्छा मैं बाद में मिलती हूँ, तो शायद वह बाकी भी सुना जाते। लेकिन जैसे उन्होंने जिद ठान ली हो। अभी नीरा ने चाय का पानी गैस में रखा ही था कि घंटी बजी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए आइए। नीरा हैरान थी। नीरा की हैरानी को भाप कंधे उचकाते हुए बोले, बस यूं ही सोचा अपने नए पड़ोसन के साथ चाय पी लेते हैं। जी जरूर बैठिए, मैं अभी आई, कहकर वह किचन में चली गई। सक्सेना जी कटकटाती ठंड के ख्याल में सिर से पैर तक पैबस्त थे। घुटनों के नीचे तक टंगा पुलोवर और माथे को छूता ऊनी टोपा, हाथ पुलोवर की जेब में, दांत से ठंड के एहसास को गर्माते हुए सोफे पर आराम से धस गए और दोनों हथेलियों को रगड़ने लगे। आज बड़ी ठंड है, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, कल ही आया हूँ दिल्ली से। बड़ी तकलीफ हुई यह देखकर कि सारे पौधे लगभग सूख गए हैं। किचन में पैन का पानी कुलकुला रहा था, और इधर सक्सेना जी ड्राइंग रूम की खिड़की से बाहर जमी धुंध और ओस के पार कुछ खोजते हुए गुनगुना रहे थे, बेफिक्र बिंदास, जैसे वह यहाँ अक्सर आते रहे हों। इतनी आत्मीयता कैसे आती है, नीरा सोचने लगी। कमरे में उनकी गुनगुन नाचने लगी, मुंडी लय और ताल में डोलने लगी। अपनी छूटी हुई कहानी कहने को बेताब उल्लास में ही बोले, पहले यह घर मैंने लिया था, गृह प्रवेश की पूजा बड़ी धूमधाम से हुई थी, डॉक्टर किचले सपरिवार आए थे। उनकी आई यहाँ के शांत और मनोरम वातावरण को देख मुग्ध होने लगी। जंगल की वीरानी में चहचहाते पक्षियों का कलरव और शहर की पोपो से दूर कोयल की कुहू कुहू सुनकर गदगद होने लगी। आखिर चलते चलते उन्होंने मन की बात कह ही दी, सक्सेना जी यह जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, यदि आपकी पत्नी को ऐतराज ना हो तो ऊपर वाला फ्लैट आप ले लीजिए, हम नीचे आ जाते हैं, मुझे चढ़ने उतरने में दिक्कत है, वरना हम ही ऊपर वाला ले लेते। सक्सेना जी ने दोस्त की माँ के खातिर अपना पसंदीदा फ्लैट छोड़ दिया था, ऐसी पड़ोस संस्कृति अब कहाँ। फिर हम ऊपर और डॉक्टर किसले का परिवार नीचे, निकटता तब घनिष्ठता में तब्दील होने लगती है जब पड़ोसियों के बीच ऐसा आपसी सामंजस्य और सौहार्दता की भावना हो। आई बहुत खुश, खूब गाना बजाना होता था, भीड़ लग जाती थी गेट पर, वंस मोर के शोर से कॉलोनी गूंजने लगती थी। आई नहीं रही, इस बीच बहुत कुछ नहीं रहा। बीते दिनों को तलाश करती उनकी आवाज़ गूंजती रही, जाने कहाँ गए वो दिन। चाय पीते पीते अचानक पूछा, संगीत में रुचि है आपकी? जी हाँ, लेकिन शास्त्र नहीं जानती, बस फिल्मी गाने सुनती हूँ। इस पर उन्होंने संगीत और अन्य भारतीय कलाओं पर एक लंबा लेक्चर दे डाला। गाने के लिए शास्त्र की जानकारी ज़रूरी नहीं, देखती नहीं हैं आप फेसबुक में कितने ग्रुप हैं, क्या वो संगीत में विशारद हैं? शास्त्र हमने ही बनाया है ताकि राग रागनियाँ बनी रहें, ताकि सुर में रहें, गति बनी रहे। जैसे जीवन, इसका भी शास्त्र है, यति गति लय और ताल है, जन्म मृत्यु लाभ हानि जय पराजय, ये सब जीवन की गतियाँ ही तो हैं। चलिए छोड़िए ये सब, बाकी बाद में, चलता हूँ। कहकर चलने को हुए कि जैसे उन्हें कुछ याद आया। वैसे यदि आप अन्यथा ना लें तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मना मत करिएगा। कहूँ? जी कहिए। वो बात ऐसी है कि हमारे घर में एक एक्वेरियम है, आप उसे रख लीजिए। दरअसल पहले उसमें रंग बिरंगी मछलियाँ हुआ करती थीं। अब क्यों नहीं, कहाँ गई मछलियाँ? सुनते ही सक्सेना जी की चिड़िया सी चहचहाती आवाज़ शांत हो गई, अस्फुट से शब्दों में फुसफुस आए, धीरे धीरे सब मर गई। ओह कैसे? दीर्घ निःश्वास छोड़ते हुए बोले, छोड़िए फिर कभी। एक बात और कहनी है आपसे, यदि कोई ऐसा किराएदार मिले तो बताइएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कैसा और किसके लिए? हमारे फ्लैट के लिए, बेटा कह रहा है फ्लैट बेचकर यहीं रहेंगे अब। लेकिन मैं बेचूंगा नहीं, किराए पर उठाने की बात सोच रहा हूँ। कैसा किरायादार, समझ में नहीं आया। कॉलोनी में बहुत सारे किरायादार हैं, अवकाश प्राप्ति के बाद बहुत लोगों ने अपने अपने घर बना लिए हैं, और इन घरों में जो उन्होंने बीएसपी से लीज पर लिए थे किराए पर उठा दिए। बहुत पुरानी कॉलोनी है, जब भारत और रूस ने मिलकर नेहरू की कल्पना के भारत को साकार करने के लिए भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की थी, तभी बीएसपी को तकनीकी सहयोग देने वाले रूसी इंजीनियरों और विशेषज्ञों के लिए इस कॉलोनी का निर्माण किया गया था। इस अर्थ में यह एक ऐतिहासिक आवासीय परिसर है। रेसिडेंस अब नहीं रहे। अगले रविवार सुबह सुबह से ही घर घर की आवाजें आने लगी। नीरा बिस्तर में पड़े पड़े ही कुनमुनाई, क्या हो गया सक्सेना जी को, सुबह से शोर मचाए पड़े हैं, नींद खराब कर दी। शाम हुई और अपने कलिक को लेकर उनके घर पहुंच गई। सक्सेना जी अपने घर के फर्नीचर को करीने से लगाने में व्यस्त थे, कभी सोफे उस कमरे में ले जाते, कभी उस कमरे की कुर्सी पीछे वाले में, कभी टेबल इस कोने में तो कभी उस कोने में, कोई चीज़ जगह ठिकाने पर नहीं थी। देखते ही सामने वाले सोफे की तरफ, जो आधा दीवार से और आधा बेडरूम के दरवाजे से लगा हुआ था, इशारा किया, बैठिए, क्या सेवा करूं, घर में दूध नहीं है, चाय गली के मोड़ के पास जो छोटा सा टी स्टॉल है वहीं पीता हूँ। लकड़ी के डिब्बे नुमा घर में माँ बेटे रहते हैं, दिन में दुकान और रात में वह डिब्बा घर हो जाता है। दोनों माँ बेटे बहुत मेहनती हैं, सुना है उत्तराखंड की बाढ़ में सब गंवा कर यहाँ आए थे, उखड़े हुए लोग। उनकी बातों में ऊपरी असंबद्धता के अंदर एक आंतरिक अन्योन्याश्रितता की धारा बहती रहती है। वस्तुतः जीवन असंबद्धताओं की उलझी हुई पहेली है, घटनाएं घटकर अपनी निशानी छोड़ जाती हैं, पर क्यों हुआ यह पहेली ही रही आती है, और आदमी इन पहेलियों को समझते हुए बीत जाता है। कलिक की तरफ मुड़कर बोले, तो आप भी टीचर हैं? जी हाँ,

0: भी कई जगहों पर टीचिंग का काम किया है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा फर्नीचर और टीवी वगैरह यहीं रहेगा। सुनते ही मीरा के कले वापस यह कहते हुए लौट गई, उसे किराए का घर चाहिए, किराए का सामान नहीं। भौतिक जगत के प्रति इतनी मोहावृष्टि, दरअसल सांसों के मोह से जुड़े ऐसे ही ना जाने कितने और मोह हुआ करते हैं, जिनसे चिपटा इंसान जीवन भर इस भ्रम में जीता है कि यह सब कुछ उसका है। जब सांसें ही अपनी नहीं होती, अनायास साथ छोड़कर चली जाती हैं, फिर इन चीज़ों का क्या। लेकिन सक्सेना जी ना इन चीज़ों के साथ रह पा रहे थे और ना ही कोई ऐसा किरायादार मिल रहा था जो इन चीज़ों के साथ रहे, और ना ही वह उन चीज़ों को दुर्गत के लिए छोड़कर जा पा रहे थे। एक दिन शाम को घर में गुंजन संगीत संगोष्ठी की बैठक रखी। ऐसी अनगिनत संगीत संगोष्ठियाँ कोरोना काल में बनी थी। तनाव से कटने और लोगों से जुड़े रहने में इन दिनों ऐसे प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया ने काबिले तारीफ भूमिका निभाई थी। शाम हुई, गाड़ियां आने लगी। सक्सेना जी ने प्रयास करके बेतरतीबी को दूर करने की कोशिश की थी। वस्तुतः सक्सेना जी जीवन और संगीत दोनों में व्यवस्था और नियम के कायल हैं। कोई सुर यदि ठीक नहीं लगा तो घंटों लगे रहेंगे। तो संगोष्ठी में लोग आते रहे, भीड़ बढ़ती रही। खाने पीने का सामान किचन में रखा हुआ था, उठे और कुर्सियों को खिसका खिसका कर किचन तक जाने का रास्ता बनाने लगे। वहां पहुंचकर कांच की अलमारी से सारी क्रॉकरी निकाल उनकी धूल पोछी और डाइनिंग टेबल पर जमा दिया। चाय की केटली में भी चाय रख दी। यह सब करते हुए उनकी नजर कोने की मेज पर जा जाकर लौट रही थी। कोने में मेज थी, मेज पर तस्वीर थी और तस्वीर में एक महिला जो फूलों की माला पहने मुस्कुरा रही थी। माला ताजी लग रही थी। लोगों की आवाजें फुसफुसाहट भरी आ रही थी। भाभी जी को ये वाला गाना पसंद था, अक्सर गाया करती थी, सारंगा तेरी याद में। गाना शुरू होता है और सक्सेना जी के होठों पर दर्दीली मुस्कान बिखरने लगती है, वह बड़बड़ाने लगते हैं। उस दिन भी ऐसी ही भीड़ हुई थी कि अचानक तुम्हें घबराहट हुई और तुमने कुछ करने का मौका भी नहीं दिया, पूछने का मौका भी नहीं दिया, तुम चली गई। कितनी भी भीड़ हो जाए, तुम सब संभाल लेती थी। और तस्वीर बन चुकी महिला भी मुस्कुराते हुए जैसे कह रही थी, मैं होती तो सब ठीक कर देती। उस आयोजन के बाद वह बहुत दिनों तक नज़र नहीं आए। एक दिन अचानक शाम के वक्त ढलान के चमकीले पत्थरों पर सूरज के किरणों की छोटी छोटी गेंदों को पैरों से ठोकर मारते बच्चों की तरह नीचे की तरफ लुढ़कते नजर आए। नीरा ने रोककर पूछा, किरायेदार मिला? नहीं मिला, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, मना मत करिएगा, कल ऊपर आइएगा। शाम को पहुंचते ही वह शुरू हो गए। यह सेट मुझे गिफ्ट में मिला था, देहरादून में एक लेक्चर देने गया था। यह गर्म पानी की केटली पत्नी को मायके से मिली थी। यह टी सेट मैंने सिक्किम से खरीदा था। नीरा को अब तक उनकी लगभग पूरी कहानी समझ में आ गई थी, इसलिए उसने बेबाकी से कह दिया, क्या मतलब, बेकार पड़ा है, बेच डालिए। यह लकड़ी का कार्नर शोपीस करीब 20 साल हो गया, क्यों रखे हैं, किस काम का है? नीरा खुद को रोक नहीं पा रही थी। यह पलंग मैंने शीशम की लकड़ी से बनवाया था। उस दिन मिसेज गुप्ता कह रही थी, यदि आप कुछ बेचना चाहें तो उन्हें अवगत कराएं। चिल्ला पड़े, अरे आप बड़ी बेदर्द हैं, यादें हैं, कैसे बेच दूं? फिर धीरे से बोले, वैसे यहाँ सभी के पास सब कुछ है, कोई सामान ले भी लेगा तो अंदर बहुत कुछ है, उसे कौन लेगा। उसने संवेदना जाहिर की। क्या हुआ था उन्हें, बीमार थी? नहीं, पता नहीं चला क्या हुआ। नीरा के कानों में एक्वेरियम के खाली और मछलियों के मरने की बात गूंज गई। मछलियां नहीं रहीं, पता नहीं क्या हुआ था। वस्तुतः अधिकतम लोग पता नहीं क्या हुआ से ही जाते हैं। कोने में रखा एक्वेरियम, कांच पर पानी के दाग, मछली के नहीं। मछली कभी रही भी होंगी यहाँ नहीं लग रहा था, लेकिन घर में सब तरफ बिखरी चीज़ें एक खुशहाल परिवार की कहानी कह रही थी। दो तीन दिन बाद आए और गेट पर खड़े खड़े ही बोले, मैं आज आपको थैंक्स कहने आया हूँ, लगभग सारा सामान बेच दिया और बेचते ही किरायेदार भी मिल गए और वह सामान रखकर चले भी गए। बीच में रुके और मुस्कराए, यहाँ उनका सामान रहेगा और वह दिल्ली में बेटे के पास। बहुत अच्छा, एक और सक्सेना जी, नीरा ने मन ही मन सोचा। जैसे मेरा कुछ सामान यहाँ और मैं दिल्ली में। दरअसल एक कमरे में एक पलंग, एक्वेरियम और हारमोनियम रखकर अपने लिए छोड़ दिया है। दिन बीते, महीने बीते, मौसम ने फिर करवट ली। सक्सेना जी दिल्ली की दिनचर्या में धीरे धीरे ढलने और महानगरीय जीवन, सभ्यता, संस्कृति में जज्ब होने लगे। सुबह सुबह पार्क में हम उम्रों के साथ योगासन आदि करते, जन्मदिन मनाते, केक काटते, गाते बजाते, ठहाके लगाते नजर आते। तबला वादक रख दिया, कशियो खुद बजाते और हर दिन गुंजन संगीत संगोष्ठी ग्रुप में एक गाना पोस्ट करते, कभी ऑडियो में तो कभी वीडियो में। कभी संगतकार तबला वादक के साथ तो कभी हारमोनियम पर, कभी माउथ ऑर्गन पर तो कभी बांसुरी पर। उन्होंने सारे वाद्य यंत्र सीखे नहीं हैं, लेकिन सारे वाद्य यंत्र उनके हाथ में आते ही जैसे बज उठते हैं। जिस संगीत को उन्होंने अपना शौक बनाया था, वही उनके जीवन का सहारा बनाया। बहू बेटा दोनों नौकरी में हैं और पोता कोचिंग में। जिस दिन वह कोचिंग से जल्दी आ जाता है, उस दिन दादा पोता दोनों के बीच शतरंज की बाजियां देर तक चलती हैं। हार अपने नाम और जीत पोते के नाम लिखकर खुश होते हैं। धीरे धीरे उन्होंने नई जीवन शैली को अपनाने और खुद को जमा लेने की भरपूर कोशिश की और दिल्ली ने भी उन्हें अपने में जल्दी जज्ब कर लिया। लेकिन एक दिन अचानक फिर लौटे, घर खोला, कमरा खोला, स्विच ऑन करते ही घर की हालत देख स्तब्ध रह गए। किराएदार का सामान कचरे के ढेर की तरह पड़ा हुआ था। किचन के सारे डिब्बे बर्तन जमीन पर बिखरे हुए थे। गैस स्टोव में फफूंद लगी थी। जमीन में पैर रखने की जगह न थी। वॉशिंग मशीन में जूते, चप्पल और कपड़े भरे हुए थे। सड़ी बदबू पूरे घर में फैली हुई थी। घर की दुर्दशा देख उनका मन दुखी होने लगा। दुख बढ़ते बढ़ते क्रोध बनाया। तो उन्होंने मेरा घर इसलिए लिया था? यह घर है, कूड़ेदान नहीं कि आप अपना सामान फेंक कर चले जाएं और भूल जाएं। सक्सेना जी विक्षिप्तों की तरह चिल्ला रहे थे। अचानक नजर कोने की मेज की तस्वीर पर गई, जैसे किसी ने क्रोधाग्नि में पानी डाल दिया हो। धम्म से सोफे पर धस गए, धूल उड़ी और सब कुछ धुंधला कर गई। किसी और के सामान ने उनके घर पर डेरा डाला हुआ था। डेरा नहीं बल्कि घर को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया था और वह देख रहे थे। नहीं, वह ऐसा नहीं होने देंगे, सोचकर उठे और तुरंत ही किराएदार को घर खाली करने का नोटिस भेज दिया। अगले ही माह घर खाली हो गया, लेकिन वह कोना नहीं, वहाँ फिर वही मेज है, वहाँ फिर वही एक्वेरियम है और एक्वेरियम में रंग बिरंगी चंचल मछलियाँ।
1: एक्वेरियम, ये कहानी अभी आपने सुनी। कहानीकार थीं श्रीमती मीना गुप्ता। और आइए अब सुनते हैं जीवन की परिधि के आसपास की कुछ कविताएं। कवयित्री हैं श्रीमती शुचि भवी।
2: मेरा प्रथम श्रृंगार हो तुम, मेरी प्रथम कविता का शीर्षक है। शब्दों को एहसास देना ही कविता है, एहसास को शब्द देना ही कविता है। सुनो, मैं हीर नहीं और न तुम रांझा, मैं सोहनी भी नहीं और न ही तुम महिवाल। नहीं हम हैं रोमियो जूलियट, मगर सच कहूं इनमें से कोई भी कभी भी नहीं हो सकता हमारे जैसा। सुनो, मैं हीर नहीं और न तुम रांझा, मैं सोहनी भी नहीं और न ही तुम महिवाल। नहीं हम हैं रोमियो जूलियट, मगर सच कहूं इनमें से कोई भी कभी भी नहीं हो सकता हमारे जैसा। मुझे पाकर तुम्हारा वो श्रृंगार रस में भीगना और मुझे भी अपने संग भिगो लेना। अपने आप में अतुलनीय है, सच कहती हूँ, कोई भी प्रेम तुलनात्मक

ओ या जूलियट को ही छू सकेगा भला? नहीं मेरी आवाज का जादू महिवाल, रांझे या रोमियो को करेगा मदहोश कभी। सुनो, हम आजाद हैं प्रेम की गहराइयों में डूबने और आकाश गंगाओं के पार प्रेममय उड़ानों के लिए, कि हम केवल हम हैं शरीर नहीं, कि हम केवल हम हैं शरीर नहीं जिसे तुम कोई नाम दे सको, जिसे तुम कोई नाम दे सको। मेरी अगली कविता का शीर्षक है सर्द रिश्ते। मन परिंदा उड़ जाता है, मन परिंदा उड़ जाता है, बंद दरवाजे बंद खिड़की बंद रोशनदान से भी चुपके से तेरी याद चली आती है, लेकिन हर खुली खिड़की हर रोशनदान और हर दरवाजे से इस खंडहर हो रहे जीवन में यादों के लिए तो नहीं खोले थे मैंने ये सभी दरवाजे खिड़कियां और रोशनदान। सुनो, नया सूरज उगेगा एक रोज जरूर, और मेरी इन खुली खिड़कियों खुले दरवाजों और खुले रोशनदानों से भीतर आकर गर्माहट दे ही जाएगा मुझे भी, बस तब तक सर्द रिश्तों के इस खंडहर में भी गर मैं जिंदा रह लूं तो जी जाऊं शायद अपनी पूरी उम्र, तो जी जाऊं शायद अपनी उम्र। मेरी अगली कविता का शीर्षक है युद्ध। युद्ध शांति के लिए, युद्ध शांति के लिए कभी न हुआ है न हो सकेगा। युद्ध होता है सिर्फ और सिर्फ युद्ध के लिए। शांति सीखनी है तो फूलते फलते वृक्ष से सीखे मानव, शांति सीखनी है तो फूलते फलते वृक्ष से सीखे मानव, जो काटने वालों पर भी अपने पुष्पों की वर्षा करता है, पत्थर मारने वालों को भी रसीले फल देता है। काश शांति के लिए युद्ध न होते कभी, काश शांति के लिए युद्ध न होते कभी। मेरी अगली कविता है मैं जिंदा हूं। सुनो, चलोगे मेरे साथ? सुनो, चलोगे मेरे साथ उस माँ से मिलने? जीवन को जो जीना जानती हैं तो क्या हुआ, बच्चों को बड़ा कर बड़ा बनाते तक झुकते झुकते कुछ इतना झुकी वो कि अब करछुल तक पहुंचने के लिए भी उन्हें उठना होता है थोड़ा सा पंजों पर। मिलोगे क्या तुम भी उस माँ से जिसने बच्चों के मन में ख्वाब भरे थे कभी ऊंचा उड़ने के, और उनकी आंखों की गहराई में डूब कर पूरे भी किए थे वो सारे स्वप्न? उनकी आंखों की गहराई में डूब कर पूरे भी किए थे वो सारे स्वप्न? क्या हुआ कि उन सपनों में, क्या हुआ कि उन सपनों में अपनी मोतिया बिंद वाली आंखों की जगह ही न बचाई उस माँ ने? क्या हुआ कि उन सपनों में अपनी मोतिया बिंद वाली

0: अपनी आंखों की जगह ही ना बचाई उस माँ ने। बोलो भी, मिलोगे क्या तुम उस नारी से जिसने सीखा स्मार्टफोन पर बस उतना ही स्मार्ट बनना जितनी में विदेश में पैदा हुए पोते पोती नाती नतनी का बचपन वो जी सके घर बैठे अपने बुढ़ापे के साथ। सुनो, उस अम्मा ने मुझे कहा था पिछली बार, मैं जिंदा हूँ यह प्रमाण घर आकर ले जाया करूँ। पेंशन के पैसे औलाद की तरह ही है ना, जिनके बिना जीना नामुमकिन है। उस अम्मा ने मुझे कहा था पिछली बार कि मैं जिंदा हूँ यह प्रमाण घर आकर ले जाया करो बेटा, पेंशन के पैसे औलाद की तरह ही है ना, जिनके बिना जीना नामुमकिन है। मेरी अंतिम कविता है मृत्यु। मृत्यु है सच अंतिम या फिर है कर्म? मृत्यु है सच अंतिम या फिर है कर्म? सोचते हैं हरदम, और तुम भी तो सोचते हो। सोचते हैं हरदम हम, और तुम भी तो सोचते हो। फिर क्यों शमशान शोक न रहता हरदम? मृत्यु है सच अंतिम या फिर है कर्म? सोचते हैं हम हरदम, और तुम भी तो। फिर क्यों शमशान शोक न रहता हरदम? चिता एक जलती जब कह जाती हमसे तब, अंत ये नहीं है जान लो, है शुरुआत अब हिसाब की। अंत ये नहीं है जान लो, है शुरुआत अब हिसाब की। जो कमाया इतने वर्षों उन्हें देखने की बात की। स्वतंत्र थे जब कर्म करने, उत्तम कर्म कम किए। माटी थे माटी ही मिले, पर कर्मों की बरसात थी। सदकर्म भी साथ चले, और चले बुरे भी संग। मृत्यु है सच अंतिम या फिर है कर्म? सोचते हैं हम हरदम, और तुम भी तो शायद, और तुम भी तो शायद।
1: शुचि भवी का काव्य पाठ अभी आपने सुना। इसी के साथ पल्लवी के इस अंक से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे साहित्य पत्रिका कार्यक्रम पल्लवी, संपादन प्रकाश उदय का था। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विज्ञान लोक। इसमें सुनिए वार्ता जैव विविधता। वार्ताकार हैं रेणु माहेश्वरी।

जैव विविधता। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी जीव वैज्ञानिक वॉल्टर जी रोसन ने 1985 में नेशनल फोरम ऑन बायोडायवर्सिटी की योजना बनाते समय की थी। यह शब्द बाद में 1986 में बहुत अधिक प्रचलित हुआ। इस शब्द को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने का श्रेय एडवर्ड ओ विल्सन को जाता है। पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जीवन के रूपों की विविधता और परिवर्तनशीलता को जैव विविधता कहते हैं। हमारे ग्रह पर जीवन की विविधता अविश्वसनीय है, जिसके अंतर्गत वायरस, बैक्टीरिया से लेकर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से लेकर मनुष्य शामिल हैं। पृथ्वी पर इन सभी जीवों के जीवन को बनाए रखने वाली प्रक्रियाओं के लिए जैव विविधता आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पौधों और सूक्ष्म जीवों के बिना हम उन स्वस्थ इकोसिस्टम को नहीं बना सकते जिनसे हमें भोजन तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जैव विविधता को 3 मुख्य परस्पर संबंधित प्रकारों में बांटा गया है। पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा स्पीशीज डाइवर्सिटी, तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इनमें प्रजातियों के भीतर जीन्स की विभिन्नता, प्रजातियों की विविधता जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और आवासों की विविधता जैसे वन, रेगिस्तान, महासागर शामिल हैं। सबसे पहले हम आनुवांशिक विविधता, जो प्रजातियों के भीतर ही पाई जाती है, को देखें तो एक ही प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले जीन्स हेरिडिटरी यूनिट जो माता पिता से लक्षणों को संतान में स्थानांतरित करते हैं, के अंतर को आनुवांशिक विविधता कहते हैं। इस विविधता के कारण जीवों को अलग अलग रूप, रंग, आकार, कार्य क्षमता और साथ ही बदलते पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन क्षमता प्राप्त होती है, जो जीवित रहने के लिए सहायक होती है। उदाहरणतः हम देखें छत्तीसगढ़, जिसे भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, में कई प्रकार की चावल की किस्में पैदा होती हैं, जैसे नगरी, दुबराज, महामाया, दंतेश्वरी, बादशाह भोग और विष्णु भोग इत्यादि शामिल हैं। ये सभी अंतर अनुवांशिक विविधता के कारण ही हैं। दूसरा उदाहरण अगर देखें तो मनुष्यों में त्वचा का रंग, ऊंचाई, बालों का प्रकार आदि में अंतर पाया जाना भी अनुवांशिक विविधता के कारण है। दूसरी विविधता अगर हम देखते हैं, जिसे प्रजाति विविधता कहते हैं, जिसका अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों जैसे सूक्ष्म जीवों, पौधों और जानवरों की विविधता के साथ उनकी संख्या तथा उनका संतुलन देखना होता है। इसका तात्पर्य केवल यह नहीं कि कितनी प्रजातियां हैं, बल्कि यह भी वो कितनी मात्रा में वहां पाई जाती हैं। यदि किसी स्थान पर कई प्रकार की प्रजातियां हैं और सभी का अस्तित्व संतुलित रूप से बना हुआ हो, तो हम कह सकते हैं वहां प्रजाति विविधता अधिक होगी। इसके विपरीत, जहां कुछ प्रजातियां अधिक संख्या में और कुछ बहुत कम हो, तो हम कहेंगे कि विविधता वहां पर कम पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक जंगल में पेड़, पक्षी, जानवर, कीट आदि कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसलिए वहां प्रजाति विविधता अधिक होती है। लेकिन किसी बंजर क्षेत्र में प्रजाति हमें कम मिलती है, या यूं हम कह सकते हैं कि जीव हमें कम मिलते हैं, इसलिए यहां प्रजाति विविधता कम होती है। तीसरे प्रकार की विविधता इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है। इसका मतलब विभिन्न प्रकार के हैबिटेट्स और पारिस्थितिक तंत्रों, अर्थात अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक वातावरणों और उनमें रहने वाले जीवों के अंतर से है। पृथ्वी पर हर स्थान का वातावरण अलग अलग होता है। कहीं बहुत अधिक पानी होता है तो कहीं बहुत कम। इसी तरह कहीं घने जंगल होते हैं तो कहीं खुले मैदान पाए जाते हैं। इन अलग अलग परिस्थितियों के कारण हर जगह अलग तरह के जीव और पौधे का समुदाय पाया जाता है, जो अपने अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलित होकर जीवन यापन करते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो फॉरेस्ट या जंगल, जहाँ पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर और सूक्ष्म जीवों की विविधता पाई जाती है, लेकिन मरुस्थल, जिसे हम डेजर्ट कहते हैं, वहाँ कम जल होने के कारण
ऐसे जीव पाए जाते हैं जो कम, या ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है, जैसे कि कैक्टस और ऊंट। गीले स्थान जिसे हम वेटलैंड्स या आर्द्रभूमि कहते हैं, या मछलियां, मेंढक, जल पौधे और पक्षी पाए जाते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र विविधता हमें समझने में मदद करती है कि अलग अलग स्थानों पर जीवन क्यों और कैसे अलग अलग रूप में विकसित होता है। जैव विविधता हमारे जीवन के लगभग हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम इसे कई कारणों से महत्व देते हैं। एक ओर इसके प्रत्यक्ष लाभ हैं, तो दूसरी ओर इसका अपना स्वतंत्र महत्व भी है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो हमें भोजन, ईंधन, आवास और औषधि जैसी आवश्यक चीजें जैव विविधता से ही प्राप्त होती हैं। इसके अलावा प्रकृति हमें अनेक आवश्यक सेवाएं भी प्रदान करती हैं, जैसे परागण, बीजों का फैलाव, जलवायु को संतुलित रखना, पानी को शुद्ध करना, पोषक तत्वों का चक्र बनाए रखना और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नियंत्रित करना। ये सभी प्रक्रियाएं हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं। जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन की अगर हम बात करते हैं तो यह माना जाता है कि जहाँ का पर्यावरण अधिक स्थिर और संतुलित होता है, उस क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है, जबकि असंतुलन की संभावनाएं कम प्रजाति वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए बायोडायवर्सिटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज हम देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी जो है वो लगातार कम होती चली जा रही है या उनका ह्रास होता जा रहा है, अर्थात पृथ्वी पर पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या और विविधता में कमी आ रही है और यह एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जो प्राकृतिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। बायोडायवर्सिटी में कमी का होना, इसके मुख्य कारण पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस और ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जिसे हम अत्यधिक दोहन कहते हैं, होता है। और इनके कारण जो प्रभाव होता है या प्रभाव पड़ता है वह नेचुरल रिसोर्सेस, जिसे हम प्राकृतिक संसाधनों की कमी कह सकते हैं, इकोसिस्टम में असंतुलन होता है, फूड चेन में बाधा होती है और साथ ही मनुष्यों के जीवन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और इनको रोकने के लिए या इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जैव विविधता का संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है। जैव विविधता संरक्षण का मतलब है प्रकृति में मौजूद विभिन्न जीवों, उनकी प्रजातियों और उनके रहने के स्थानों को सुरक्षित रखना और उनका सही ढंग से उपयोग करना। इसका उद्देश्य यह है कि पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बना रहे और मनुष्य सहित सभी जीवों का भविष्य सुरक्षित रह सके। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण ही हमें स्वच्छ हवा, पानी, भोजन, अन्य आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। साथ ही यह सतत विकास और आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मदद करता है। एडवर्ड ओ विल्सन के अनुसार सौंदर्य की दृष्टि में पृथ्वी पर लाखों प्रजातियों में से प्रत्येक प्रजाति अद्वितीय है। प्रकृति की ऐसी कलाकृति जिसे एक बार नष्ट हो जाने पर पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता, डायनासोर का उदाहरण आपके सामने है। अब अगर हम छत्तीसगढ़ की जैव विविधता देखें तो छत्तीसगढ़ की जैव विविधता पर गौर करें तो भारत के मध्य में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य देश के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्यों में से एक है। यहाँ पर्वत, पठार और मैदान तीनों प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं पाई जाती हैं। राज्य के घने हरे भरे वन व यहाँ पर पाई जाने वाली नदियाँ इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। राज्य में तीन राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास है, तथा 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिनमें बारनवा पारा, अचानक मार्ग इत्यादि हैं। इन उद्यानों तथा अभ्यारण्यों में विविध प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं, यहाँ इनका संरक्षण किया जाता है। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु जंगली भैंसा, राज्य पक्षी पहाड़ी मैना, राज्य वृक्ष साल तथा राज्य पुष्प गेंदा है। अब मैं यहाँ प्रसिद्ध भारतीय पारिस्थितिक वैज्ञानिक रीनी मारिया बोरिस के शोध कार्य पर प्रकाश डालना चाहूंगी।
जिनका शोध मुख्य रूप से व्यवहारिक व संवेदी पारिस्थितिकी पर है, जहां वे प्लांट व एनिमल के मध्य इंटरैक्शन, जिसे अंतःक्रिया

क्रियाएं कहते हैं का अध्ययन करती हैं और बताती हैं कि जीवों का व्यवहार रंग गंध और उत्तेजनाओं के माध्यम से होने वाले इंटरेक्शन से सहविकास को समझा जा सकता है। भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती से लिया गया यह अंश जो उन्होंने लिखा है मैं साझा करना जरूरी समझती हूँ। उन्होंने यह लिखा है, मधुमक्खियों के एक समूह में से 1/5 हिस्सा कदम के फूल के पास गया, 1/3 हिस्सा केले के फूल के पास गया और दोनों में जो अंतर था उनका तिगुना मृगनयनी कृतज के फूल के पास गया। शेष बच रही एक मक्खी जो चमेली केवड़े की गंध से मोहित हो रही थी भिनभिनाती हुई हवा में मंडराती रही। तो बताइए प्रिय कितनी मक्खियां थी। इसमें रीनी मारिया बोर्गिस ने बहुत सरल तरीके से पारस्परिक होने वाली क्रियाओं को समझाया जो प्लांट और इंसेक्ट के बीच थी। यहाँ मैंने यह उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि हम सभी वैज्ञानिक तो नहीं बन सकते, लेकिन यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक सोच सब में विकसित होनी चाहिए। हम सभी अपने चारों तरफ प्रकृति में इस तरह के कई उदाहरण देखते हैं जिसमें हमें उन्हें संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, बायोडाइवर्सिटी पृथ्वी पर जीवन और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका संरक्षण वर्तमान और भावी पीढ़ियों के सतत विकास और कल्याण के लिए अनिवार्य है। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान लोक में वार्ता जैव विविधता। वार्ताकार थी रेणु माहेश्वरी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सराय पाली केंद्र है।

हम आपको याद दिला दें, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार वितरण का सजीव प्रसारण आप सुनेंगे शाम 5 बजे। पब्लिक स्पीक सुनिएगा रात 9:30 पर। स्पोर्ट्स स्कैन आप सुनेंगे रात 8:30 पर। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। श्रोताओं, आज मशहूर अभिनेता सुनील दत्त साहब की पुण्यतिथि है। सुनील दत्त जी का जन्म 6 जून 1929 को गांव खुर्दी पंजाब में हुआ था। वे एक ऐसे अभिनेता थे जिनको पर्दे पर देख एक आम हिंदुस्तानी अपनी जिंदगी की झलक देखता था। हिंदी सिनेमा जगत में सुनील दत्त जी को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने फिल्म निर्माण, निर्देशन और अभिनय से लगभग 4 दशकों तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया।

उनके किरदार वास्तविक जीवन के बहुत करीब होते थे और उनका व्यक्तित्व भी उनके किरदार की तरह प्रभावशाली रहा। सुनील दत्त साहब की पहली फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म सन 1955 में प्रदर्शित हुई। 1957 में प्रदर्शित फिल्म मदर इंडिया से सुनील दत्त जी को अभिनेता के रूप में खास पहचान और लोकप्रियता मिली। उनके सिने करियर का 1967 सबसे महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। इस साल उनकी फिल्में मिलन और हमराज प्रदर्शित हुईं, जिसमें उनके अभिनय के नए रूप देखने को मिले। दत्त साहब ने रेडियो सिलोन की हिंदी सेवा के उद्घोषक के तौर पर भी कार्य किया था। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित सुनील दत्त साहब को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। सुनील दत्त भारतीय सिनेमा के उन अभिनेताओं में से एक रहे जिनकी फिल्मों ने 50 और 60 के दशक में दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। सुनील दत्त जी के स्मृति दिवस पर उन्हें नमन करते हैं और सुनते हैं उन पर फिल्माए कुछ गीत। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत।

0: महेंद्र कपूर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म हमराज का गीत। गीत साहिल उद्यानवी का था और संगीत था रवि का।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लीजिए अब सुनिए फिल्म वक्त का गीत, आवाजी महेंद्र कपूर और आशा भोसले की, गीत साहिल उद्यानवी का, संगीत रवि का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: राजेंद्र कृष्ण का था और संगीत था राहुल देव परमन का।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

लीजिए अब सुनिए फिल्म छाया का गीत, आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की, गीत राजेंद्र कृष्ण का, संगीत सलिल चौधरी का।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। कलाकार हैं तापसी नागराज। इनकी आवाज़ में पहले पेश है दुष्यंत कुमार की ये रचना।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थीं तापसी नागराज। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया, समान नागरिक संहिता से जनजातीय समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते प्रदेश के किसानों को इस वर्ष यूरिया और डीएपी पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम दिया जाएगा। और जशपुर जिले के अनिमेश कुजूर ने फेडरेशन कप में 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह समागम आने वाले वर्षों में जनजातीय महाकुंभ के रूप में वैश्विक पहचान बनाएगा। श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज को अपनी संस्कृति, धर्म और जल जंगल जमीन की रक्षा का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समाज के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। जनजातीय कल्याण का बजट 28,000 करोड़ रुपये से बढ़ा

0: कर 1.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि नक्सल हिंसा में बड़ी संख्या में जनजातीय लोगों की जान गई, लेकिन सरकार ने नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया है। गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता यानी UCC से जनजातीय समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने लोगों से भ्रांतियों से बचने और एकजुट होकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रीय जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजातीय समाज दुनिया को प्रकृति के साथ संतुलित विकास का मार्ग दिखा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज भारत की सांस्कृतिक आत्मा का सबसे प्राचीन और जीवंत स्वरूप है। उन्होंने जनजातीय भाषा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार गोंडी, हल्बी और सादरी जैसी भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। श्री साय ने कहा कि आदि बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन जनजातीय पहचान और प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में यह पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण शामिल हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते प्रदेश के किसानों को इस वर्ष यूरिया और DAP पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार बीते वर्ष किसानों को वितरित की गई उर्वरक की मात्रा के आधार पर इस वर्ष का कोटा तय किया गया है। इसके तहत इस वर्ष किसानों को यूरिया की 80% मात्रा ही पारंपरिक यूरिया के रूप में दी जाएगी। शेष 20% मात्रा उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाएगी या उसके बदले नैनो यूरिया दिया जाएगा। DAP वितरण भी पिछले वर्ष के मुकाबले 60% ही किया जाएगा। शेष 4% मात्रा के लिए वैकल्पिक NPK उर्वरक या नैनो DAP उपलब्ध कराया जाएगा। बलरामपुर जिले में सनावल रोड स्थित ग्राम पीपरपान के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। ईंट से लदे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक रविवार की शाम एक ही बाइक पर सवार होकर चारों युवक बाजार से लौट रहे थे। उसी समय यह हादसा हुआ जिसमें चारों की जान चली गई। जशपुर जिले के अनिमेश कुजूर ने फेडरेशन कप 2026 में 200 मीटर दौड़ 10.15 सेकंड में पूरी कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। निमेश कुजूर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने अनिमेश को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता से जनजातीय समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते प्रदेश के किसानों को इस वर्ष यूरिया और DAP पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम दिया जाएगा। और जशपुर जिले के अनिमेश कुजूर ने फेडरेशन कप में 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें सुनिए पंडित जगदीश प्रसाद का गाया राग भटियार। आप सुनेंगे 2 रचनाएं, विलंबित और द्रुत दोनों ही रचना एक ताल में निबद्ध है। विलंबित रचना के बोल हैं उछट गई मोरी नींद, द्रुत रचना के बोल हैं मारो भाता विदेशा जी। आपके साथ संगतकार हैं तबले पर संपत लाल पंडित, सारंगी पर आशिक अली खां और हारमोनियम पर संतोष कुमार पंडित। तो लीजिए सुनिए पंडित जगदीश प्रसाद का गाया राग भटियार।

अभी आप सुन रहे थे पंडित जगदीश प्रसाद का गाया राग भटियार। आपके साथ संगतकार थे तबले पर संपतलाल पंडित, सारंगी पर आशिक अली खां और हारमोनियम पर संतोष कुमार पंडित। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म घर का नखमा। गीत था गुलजार का, संगीत राहुल देव बर्मन का था।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अभी आपने सुना फिल्म शक्ति का गीत, आवाज़ें थीं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीत था आनंद बख्शी का और संगीत था राहुल देव परमन का।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुनल।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो

आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 26 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। लीजिए अब सुनिए फिल्म अखियों के झरोखों से का गीत, आवाज़ हेमलता की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने वाले हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में दिए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कहा कि इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों से जुड़े लोगों के अधिकारों को संरक्षित करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
2: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। यह स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 874 अंक के उछाल के साथ 76,289, जबकि निफ्टी 264 अंक बढ़कर 23,983 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फोन करव छत्तीसगढ़ी के सुनव। प्रस्तुत करता है तारकेश्वरी आसुदानी।

0: फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम सुनैया जम संगवारी मन के कार्यक्रम मा स्वागत है। संगवारी हो आज के कार्यक्रम बर रिकॉर्डिंग होए रहिस 21 जून के ताव सुने जाए आप मन सन हमार गोट बात और आप मन के पसंद के गीत। ई हवे पहली कॉल। हेलो फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: हाँ नमस्ते मैम।
0: नमस्ते कौन बोला था भैया?
1: मैं हाँ बलौता बाजार जिला ग्राम हम आपको थाना सुहेला से कमलेश कुमार यदु बोला था मैम।
0: कमलेश कुमार यदु जी कार्यक्रम आपन के बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत दिन बाद फोन लगे है मैम और बहुत प्रयास करत रहे हैं हम और यहाँ बचपन ले रेडियो रही से मोर बाबू जी मन बहुत दिन से रखे रही से मोर यहाँ कम से कम मोर तो उम्र 35-36 साल हो गए मोर यहाँ कम से कम कई 50 साल हो गए रेडियो मोर बाबू जी अभी रखे हैं। हम मोर पिताजी के नाम लेना चाहते हुए हैं। मोर पिताजी के नाम है बाबूलाल यदु और मोर माता जी के नाम है सरस्वती यदु। पहली बार लगे मोर बहुत खुशी लगत है।
0: हम मल्ला खूब खुशी होते जब आने आने संगवारी मन हमार संग एक कार्यक्रम में जुड़ते खूब बने लागते और रेडियो के 90 बछर पूरे हुए थे। आप रेडियो के सरलक श्रोता हवो तो का योगदान है रेडियो के आपके जीवन में?
1: अब रेडियो सुने से तो बहुत कुछ प्रकार के जानकारी मिलते बहुत कुछ सहयोग भी मिलते।
0: और आज के कार्यक्रम में कॉल लगाए हो तो बताओ कौन से कलाकार मन के कौन से गीत आप मल्ला सुना देन?
1: ध्रुवाराम मरकाम के कोई से भी गाना सुना देते।
0: ताप मन के पसंद माँ आवो सुने जाए ध्रुवाराम मरकाम और संगवारी मन के गाए ए गीत। फोन करे बार बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम। धन्यवाद।
2: लागे

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: हाँ तारकेश्वरी दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं मानवेंद्र साहू बोला था, नर्रा पार बांधा बाजार ले।
0: मानवेंद्र साहू जी, कार्यक्रम में आपन के बहुत बहुत स्वागत है
1: जी। धन्यवाद।
0: कैसे हो आप मन?
1: बढ़िया हैं दीदी, अच्छा है ना। गर्मी तो बहुत जनावत है जी, एकदम घाम है, नंगा तो बाढ़ गए है। तो बस अब ज्यादातर घर में रहा था भाई, अब जैसे काम रहते है ना, तभी हम घर ले बाहर निकला था ना, निकलता थे पूरा सुरक्षा के साथ निकला था दीदी।
0: अभी तो नौतपा घलो बाकी है, गर्मी और बाढ़े के संभावना है, तो बाँच के रहना बहुत जरूरी है भैया।
1: जरूरी है, और गर्मी से अपन आप बचाना चाहिए, और ज्यादा

0: से ज्यादा जिन ठंडा पेय पदार्थ है नींबू पानी वगैरह शरबत वगैरह एकर ज्यादातर उपयोग करना चाहिए दीदी हमारे लहे नहीं जो करसा के पानी रखे नहीं ओकर पानी पीना चाहिए ज्यादा आनंद आ जाता
1: हाँ और फ्रिज के पानी या जो बोतल बंद पेय पदार्थ आते ना ठंडा नहीं पीना चाहिए नहीं वापरना चाहिए काबर की उमा शक्कर ज्यादा होते और वो स्वास्थ्य पर इतना बढ़िया नहीं होते जितका हमारे घर के बने जिनिस होते है ना
0: बिल्कुल बिल्कुल अब हम कहीं बाहर ले आते हैं ना तो तुरते पानी झन पीवन थोड़ा बैठ ले पसीना ला सुखान देन बाद ही पानी पियन है नहीं
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया बताओ आज के कार्यक्रम में कॉल लगाया है तो कौन कलाकार मन के कौन से गीत सुनना चाहत हो
0: बद्री विशाल यादव जी के लिखे ये गीत सुनवा दे हूँ गणेश यादव के आवाज में हवा आगे हवा तोरे लेनहार जाए के बेरा कैसे कर बिना।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: नमस्ते दीदी,
0: नमस्ते, कौन बोला था बहनी?
1: मैं ग्राम कुटेना पोस्ट पानी का जिला गरियावल्ले कुमारी झामेश्वरी साहू बोला था।
0: झामेश्वरी साहू जी, कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: पिछली खाओ कब कॉल लगे रही आप मन के दीदी?
1: मोर फोन बहुत 4-5 महीना हो गए दीदी, अभी लगते नहीं रही साबे। और मैं दूसरा संगवारी मला मौका देवत रही।
0: आप मन का करत हो, कैसे हो आप मन?
1: मैं एकदम मस्त हूँ। मैं अभी पढ़ाई करा था, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी चला थी दीदी।
0: डिग्री मिल गई है अपन ला?
1: हाँ, मोर पास डिग्री मिल गई।
0: तो अपन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करत करत आप रेडियो घला सुना था?
1: हाँ, रेडियो घला सुन था। हमारे पापा मन सुनत रही थे, एकदम उत्साह रेडियो सुनन करके।
0: आप मन युवाणी घला सुन था? ओमा मार्गदर्शन क्रम आते और आने आने उपयोगी क्रम है ओमा, जेमा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पर काफी कंटेंट आप मन ला मिल सकते है।
1: हाँ सुनसन ना दीदी, वैसे तो मैं लड़का मतलब स्कूल चालू रही थी ना, ट्यूशन पढ़ावत रही हूँ। अभी अभी स्कूल बंद हो गए, तो लड़का सब कहीं कहीं घूमे चल रही है, तभी बंद है ट्यूशन पढ़ाई है। अभी मैं अपन पढ़ाई कर रही हूँ।
0: आज के कार्यक्रम में फोन लगाए हो बहनी, तो कौन कलाकार मन के कौन से गीत सुनना चाहत हो तेला बता दो।
1: हाँ, मैं तामराकार और ममता चंद्राकर के स्वर में आप मन कोई भी गाना सुना दे रहे।
0: तो आप मन के पसंद माँ आवाज सुने जाए कुलेश्वर ताम्रकार और विदुषी ममता चंद्राकर के आवाज माँ। ये गीत फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, फोन कराओ, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: जय राम दीदी।
0: जयराम भैया, कौन बोलत हो?
1: रोशन देवांगन बोला सुन पहले कर ले।
0: रोशन देवांगन जी, कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद दीदी, धन्यवाद।
0: कैसे हो आप मन?
1: बस बढ़िया दीदी, गर्मी का आनंद ले थन।
0: और पिछली घाव कॉल कब लगे रही साहब मन के?
1: बहुत दिनों के दीदी, समय पूरा हो गया तो लगाए हैं।
0: रोशन देवांगन जी, आप मन तो हमारे नियमित श्रोता हब।
1: हाँ दीदी, हाँ।
0: आज के कार्यक्रम में कॉल लगाया हो, बताओ क्या कहना चाहत हो?
1: बस दीदी, गर्मी के तो मौसम चला थे तो बहुत गर्मी भी, भयंकर गर्मी रहते। श्रोता मन कोई कहना चाह की बढ़िया अपन परिवार ख्याल रखी।
0: काम बुता कैसे चलत है आप मन के?
1: मोर काम बारह महीने चलते दीदी।
0: गर्मी में घलो आपन के बुनाई वगैरह चलत रही थी?
1: हाँ हाँ, रेगुलर चलते। काय अपन प्राइवेट काम है ना, घर में लगे लूम तो जतकर मन लगे उतके पर काम करता। पूरा अपन परिवार जोर मिलकर पूरा काम करता।
0: आज के कार्यक्रम में कॉल लगाया, बताओ कौन कलाकार मन के कौन से गीत आप मन ला सुना देन?
1: एक गीत है दीदी, जीव लेवा घाम हुए,
0: बैतल राम साहू की आवाज माँ।
1: हाँ हाँ दीदी, हाँ।
0: तो आप मन के पसंद माँ आवाज सुने जाए बैतल राम साहू और संगवारी मन के गाये यही गीत। फोन करे बार बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, फोन कर सकते हो? देखिए सुना
0: जी भैया।
1: जय जोहार मैडम।
0: नमस्ते, जय जोहार।
1: मैं केवल प्रसाद कनौजी बोला था, ग्राम सुनार देवी तहसील पड़ावी जिला बड़ौदा बाजार छत्तीसगढ़ से।
0: केवल प्रसाद कनौजे जी, कार्यक्रम आपन के बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत धन्यवाद दीदी।
0: का करत हो आपमन?
1: बस दीदी, ये अभी घरे में हमारे का है, अभी मौसम हुआ ज्यादा तापमान बताता है, खेती किसानी कार्य करता है, साथ साथ मजदूरी वगैरह चलते मन रेंगा करे में चाहते थे।
0: और परिवार में कौन कौन है आप मन सन?
1: परिवार में छोटे भाई है, बहू है, और पापा मम्मी है, दादा दादी है, बड़ा पूरा परिवार है हम मन है।
0: और रेडियो कब कब सुनत हो भैया?
1: रेडियो हमारे चाचा बड़ सुनते दीदी, तब वही हम लत लग गई मन सुनथन उन्हें फरमाइश से फोन कर छत्तीसगढ़ी गीत सुनवाए, चौपाल है, सब चीज इंडिया है, सब चीज कार्यक्रम सुनथन।
0: तो कब ले सुना था आपन रेडियो?
1: ऐसे तो ज्यादा दिन नहीं हुए दीदी सुने, बार साले दो साल हो है। हमारे चाचा से भी अब सुनाते थे, फोन उन भी लगाते थे, तू ही नंबर दे रही।
0: अच्छा तो परिवार में रेडियो आप मन के सदस्य के जैसे है, और ए बच्चर रेडियो के 90 बच्चर पूरे हुए थे।
1: हाँ हाँ, बहुत बहुत बधाई दीदी, आकाशवाणी रायपुर।
0: आप मन लग खूब बधाई हो, आप श्रोता मन के कारण ही ए मकाम तक हमन पहुँचे हन, और इसने माया दया बनाए रखो भैया। और अब जानना चाहतन कि रेडियो आप मन के जीवन में का बदलाव ला सके है?
1: का है दीदी, पहले तो हमारे जब दादा परदादा जमाना बताते कि रेडियो एक प्रकार के मनोरंजन के साधन वही रहा है, अब वो सेल वाला रेडियो मिला है। और आजकल का है दीदी, रेडियो से ये हो गए कि अनेक प्रकार पूरा जानकारी, शिक्षा के प्रति, खेती किसानी के प्रति, महिलाओं के विशेष कर सुरक्षा है, ऊपर मन के जो है ना प्रगति कैसे करना है, आजकल महिला मन भी सशक्त हुआ थे, ये सब जानकारी हम वाला रेडियो से ही प्राप्त हुआ थे। दुनिया भर के खबर है रेडियो से, अब कोनो में सुन सकते दीदी, खेत में, खलियान में हुआ, चाहे बस्ती में हुआ, चाहे रोड में हुआ, चाहे ना कोनो मेरे से बहुत बड़ा सुविधा हो गया मोबाइल के द्वारा है।
0: बिल्कुल भैया,
1: इंटरनेट के जमाना है। जी जी
0: तकनीक के साथ रेडियो घलो नवा हुआ थे। बताओ आज के कार्यक्रम में कॉल लगाया हो तो कौन कलाकार मन के कौन से गीत सुनना चाहत हो?
1: हाँ वाला दीदी, लक्ष्मण मस्तूरिया के गीत सुना दू, और गीत के बोल है दीदी, हमारा मोर संग चलाओगा।
0: तो आप मन के पसंद में आओ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
2: राम राम दीदी।
1: राम राम भैया, कौन बोलत हो?
2: मैं लक्ष्मण कुमार धीवर बोला हूँ दीदी, ग्राम मोहरा जिला बड़ौदा बाजार से दीदी।
1: लक्ष्मण कुमार धीवर जी, कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: क्या हाल चाल है मोहरा के, आप मन के कैसे हो आप मन?
2: ऐसे दीदी, मैं तो कर्नाटक में रहता, मैं कोलार जिला में, यहाँ मन ईटा उटा बना था ना मन है।
1: आज के कार्यक्रम में कॉल लगाए हो, क्या कहना चाहता हो भैया?
2: मतलब दीदी, अभी गर्मी है, अभी होती है बहुत ज्यादा है, अभी गाँव होती है, अब ऐसी बात तो उतनी ज्यादा नहीं है, गर्मी है, गाँव के बीच बीच में पानी गिरते हैं।
1: अच्छा, कर्नाटक के मौसम बने हवे?
2: हाँ, अभी बने हैं दीदी, अभी बीच बीच में पानी गिरते बस ना, तो अभी उतने ज्यादा गर्मी नहीं है, नॉर्मल है अभी।
1: आज के कार्यक्रम में फोन लगाए तो कौन कलाकार मन के कौन से गीत आप मन ला सुना दे?
2: गोरेलाल बर्मन के कोनो भी गाना सुना दे दीदी।
1: तो अपन के पसंद माँ आवाज सुने जाए गोरेलाल बर्मन और संगवारी मन के गाए एक गीत। फोन करे बार बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद दीदी।

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: हाँ दीदी, राम राम।
0: राम राम भैया, कौन बोला थो?
1: बलराम सेन, ग्राम भलेसर नयापारा, जिला महासमुंद से।
0: बलराम सेन जी, कार्यक्रम मा आप मन के बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद दीदी, आप मन तार के सुरु दीदी बोल कर
0: जी भैया।
1: हाँ, आप मन के भाषा बोली मन जान रहा था ना।
0: आप मन के मजा है भैया, बताओ कैसे हो आप मन?
1: बस बढ़िया हूँ दीदी, मोर का सैलून दुकान चलाथो में है, और आप मन के कार्यक्रम सुनथो मैं दिन भर।
0: हाँ, और ईमेल घलो भेज के आप मन अपन फरमाइशी गीत सुनना चाहत हो, आज के कार्यक्रम में फोन लगाए हो, बताओ का कहना चाहत हो?
1: अब बढ़िया है दीदी, अभी का है हमारा तो गर्मी मन माने बाहर गए है, अब पुरता भाई मन ला वही कहना चाहता हूँ कि धूप में ज्यादा मत निकले, काम रहता भी निकले बाहर।
0: ये तो हुई इस मौसम के बात।
1: हाँ
0: बलराम सेन जी, आप मन हमारे नियमित श्रोता हव और सरलक रेडियो सुनत रहते हो, कब ले सुनत हो आप मन रेडियो?
1: मैं दीदी 90 में रायपुर से।
0: तो आप मन गला जानत हो कि ए बछर आकाशवाणी अपन 90 बछर पूरे करत है।
1: हाँ।
0: तो का प्रभाव का असर डाले है आप मन के जीवन में रेडियो?
1: बहुत प्रभाव डाले है दीदी, ज्ञान और मनोरंजन के बहुत साधन है रेडियो हमारे लिए, बहुत उपयोगी है दीदी।
0: परिवार में कौन कौन सुना थे रेडियो?
1: हमारे यहाँ तो अपना सुनते दीदी।
0: कौन कौन से कार्यक्रम अपन ला सुने बने लाग?
1: आप मन के यहाँ से मैं जम्मो कार्यक्रम सुनता हूँ दीदी।
0: ऐसने मया दया बनाए रखो भैया, और अब बताओ आज के कार्यक्रम में कॉल लगाया हो तो कौन कलाकार मन के कौन से गीत आप मन ला सुना दें?
1: संत राम वर्मा के तुझे थे दीदी, फूल गे रे सुघर फूल गे रे, यही टाइप का गाना है इस टाइप
0: के। अपन के पसंद माँ आवाज सुने जाए संत राम वर्मा और संगवारी मन के गाए ये गीत। फोन करे बार बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी आप मन के।

0: हेलो, फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: राम राम दीदी।
0: राम राम, कौन बोला था?
1: गौरव कुमार फेकर बोला था दीदी।
0: गौरव कुमार फेकर जी, कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: कहाँ ले बोला था भैया?
1: लगती कुम्हारी ले।
0: कुम्हारी ले, का करा था आप मन? कौन क्लास में पढ़ा था?
1: छठी क्लास में पढ़ता हूँ दीदी।
0: और परीक्षा हो गए?
1: हाँ दीदी।
0: कौन कौन है परिवार में आप मन के?
1: माँ है, पापा है, सब है दीदी।
0: आज के कार्यक्रम में फोन लगाया हो, बताओ क्या कहना चाहता?
1: दीदी गर्मी दिन है, आज पेड़ पौधा लगाना चाहिए।
0: हाँ।
1: लेकिन खेरा कुतर रिछन घाम लेकिन तो इसने बिलवा गए दीदी घर में दीदी।
0: ज्यादा मोबाइल नहीं देखना भैया, है ना? ज्यादा टीवी झन देख पे भैया।
1: नहीं देखन दीदी।
0: हाँ बताओ, आज के कार्यक्रम में कौन कलाकार मन के कौन से गीत सुनना चाहत बेटा?
1: तुम के पानी क्या जैसे दीदी गाना सरवन बेटा वाला।
0: तो अपन के पसंद माँ आवाज सुने जाए यही गीत। फोन करे बार बहुत बहुत धन्यवाद।

0: यही गीत सुन सिरात हे आज के फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ कार्यक्रम आपन ला बता देन ओ फोन नंबर जिमा कॉल करके आप मन सुन सकत हो अपन पसंद के गीत नंबर नोट करो 4003482 दूसर नंबर है 4003483 और तीसर नंबर है 4003484 रायपुर के एसटीडी कोड हवे 0771 जय के पहले अपन ला बता देन आज के कार्यक्रम भर गीत जोड़े रहीन वीर भान साहू अब बिता देवा जम्मो संगवारी मन ला तारकेश्वरी के राम राम
1: फोन करो छत्तीसगढ़ी की सुनो ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे फोन संवाद और प्रस्तुति तारकेश्वरी आसुदानी की थी ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपल केंद्र है हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में ये आकाशवाणी रायपुर है अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार
2: ये आकाशवाणी रायपुर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा और अब पेश है आज के मुख्य समाचार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ के गोडबोले दंपति सहित 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई और प्रदेश के सभी डाकघरों में आज से अल्प बचत खाता खोलने के लिए 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है अब समाचार विस्तार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे आज 2 पद्म विभूषण 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है इनमें 5 पद्म विभूषण 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई है पेट्रोल और डीजल के मूल्य में यह पिछले 2 सप्ताह में 4थी वृद्धि है अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित किया उन्होंने कहा कि यह समागम आने वाले वर्षों में जनजातीय महाकुंभ के रूप में वैश्विक पहचान बनाएगा श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज को अपनी संस्कृति धर्म और जल जंगल जमीन की रक्षा का संदेश दिया था उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समाज के विकास के लिए लगातार काम कर रही है जनजातीय कल्याण का बजट 28,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है उन्होंने कहा कि नक्सल हिंसा में बड़ी संख्या में जनजातीय लोगों की जान गई लेकिन सरकार ने नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया है गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से जनजातीय समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा उन्होंने लोगों से भ्रांतियों से बचने और एकजुट होकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित

0: पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय सीबीएसई के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा प्रदेश के सभी डाकघरों में आज और कल अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नजदीकी डाकघर जाकर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से अल्प बचत योजनाओं जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकेंगे। बलरामपुर जिले में सनावल रोड स्थित ग्राम पीपरपान के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार युवकों की मौत हो गई। ईंट से लदे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक रविवार की शाम एक ही बाइक पर सवार होकर चारों युवक बाजार से लौट रहे थे, उसी समय यह हादसा हुआ जिसमें चारों की जान चली गई। और अब पेश है मौसम का हाल। नौतपा की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ में गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अगले चार दिनों तक हीट वेव चलने की संभावना जताई है। राजधानी रायपुर में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। यह रात में हवा भी हल्की गर्म चल रही है। जांजगीर चांपा जिले की पर्वतारोही अमिता श्रीवास ने बीती 22 मई को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतेह किया। हालांकि वापसी के दौरान अत्यंत कम तापमान और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर काठमांडू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना की जानकारी मिलते ही राज्य के उच्च अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अमिता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ के गोडबोले दंपति सहित 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई। और प्रदेश के सभी डाकघरों में आज से अल्प बचत खाता खोलने के लिए 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव 305.81 मीटर्स यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
4: और अजीत का भी नमस्कार।
3: कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
4: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
3: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
4: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
3: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली, पोस्ट खेरथा बाजार, जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मन तीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
3: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
4: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
3: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
4: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
3: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
4: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
3: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
4: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
3: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
4: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
3: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
4: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
3: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
4: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
3: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
4: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
3: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
4: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
3: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
4: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
5: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना, एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: कालक्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको।
5: फेंका जनाब।
2: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
7: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
8: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
9: सही में
8: बहादुर सैनिक हो तुम।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
10: मे आई कम इन सर?
7: यस, कम इन।
10: सर,
7: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
10: सर,
7: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
6: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
7: हाँ हाँ, कहो।
6: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
7: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
6: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
7: गो अहेड यंग मैन।
6: सर,
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
2: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
8: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
5: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
8: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
5: जी जनाब।
4: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
6: अब समय आ गया है हमला करने का।

0: हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
1: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
0: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
1: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
0: फायर!
1: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है, जल्दी करो प्रेमलाल। फायर, समय मत गवाओ, फायर!
1: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर!
1: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
3: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी, और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
2: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक रंजनी। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं लखन नेताम और साथी। कार्यक्रम में पहले सुनिए ये कर्मा गीत।

लोक रंजनी कार्यक्रम में आज कलाकार हैं लखन नेताम और साथी। कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये कर्मा गीत।

जन काटो एक रुख राईला जन काटो एक रुख राईला हो जाही दुखदाई गा।

लोक रंजनी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे लखन नेताम और साथी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है, 1 बजने को है। समाचार अब हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के 2रे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा

0: सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बंदी का गीत, हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज़ी, प्रेम धवन के बोल और संगीत हेमंत कुमार का।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त की आवाज में हसरत जयपुरी का लिखा गीत संगीत सरदार मलिक का।
2: मेरा दिल, मेरी जान, मेरी

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में राजेंद्र किशन का लिखा गीत। संगीत श्री रामचंद्र का है, फिल्म का नाम है बारिश।

अलबेली इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी, संगीत रवि का था। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आरती मुखर्जी के स्वरों में कैफे आज़मी का लिखा गीत, संगीत हेमंत कुमार का और फिल्म का नाम है दो दिल।

दो तेलस फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार वितरण का सजीव प्रसारण सुनिएगा शाम 5 बजे से। स्पोर्ट्स कैन रात 8:30 पर और पब्लिक स्पीक का समय होगा रात 9:30। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

बिंदिया कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर बाद यानी 1:30 पर आज की बात का विषय होगा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। कवि गोष्ठी आप सुनेंगे, प्रतिभागी होंगे सीमा पांडे और विजया ठाकुर, संचालन नेहा त्रिवेदी का होगा और आप सुनेंगे तरन्नुम। सुगम संगीत 6:30 पर कलाकार होंगे मोहम्मद याहूब। इसी कार्यक्रम में 8:15 पर कलाकार होंगी तापसी नागराज।

शाम 7:21 पर चौपाल में आज की बात का विषय होगा कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट प्रबंधन। आज की सलाह में दुग्ध प्रसंस्करण एवं प्रबंधन इस विषय पर डॉक्टर सारंग दिलीप पोपली, सहायक प्राध्यापक दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर, देंगे जानकारी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा शाहिद परवेज का सितार पर बजाया राग पूरिया धनाश्री।

चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं हमारी इसी सभा में दोपहर 2 बजे 2:30 पर, सांध्यकालीन सभा में शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 9:15 पर।

श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार वितरण का सजीव प्रसारण सुनिएगा शाम 5 बजे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: माथे पर बिंदिया हो आत्मसम्मान की, तो बाजार से गहने कौन खरीदता है। सिर पर जुनून हो अगर मंजिल पा लेने का, तो रास्ते के कांटों से भला कौन डरता है। नमस्कार सखियों, मैं हूं नेहा त्रिवेदी और आपका हमारे आज के बिंदिया कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी सखियों, जितना हमारा स्वस्थ रहना जरूरी है, उतना ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहना भी। सखियों, स्वावलंबी होने की पहली शर्त है शिक्षित होना, क्योंकि शिक्षा वो आभूषण है जो हमें योग्यता से समृद्ध बनाती है। इसके अलावा कला भी वो माध्यम है जो हमें आर्थिक मजबूती देती है। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स हैं जो हमारी कला को और भी विकसित कर सकते हैं, जैसे नृत्य, गायन की कला, कुकिंग, सिलाई बुनाई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ट्यूशन, जैसे बहुत से रास्ते हैं जो हमें स्वावलंबी बनाते हैं। हम महिलाएं छोटे छोटे उद्योग भी लगा सकती हैं, जिससे सरकार से उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है। स्वावलंबी होने से सिर्फ स्वयं का विकास नहीं होता सखियों, परिवार और समाज का भी कल्याण होता है। अपने घर परिवार का ध्यान रखते हुए अगर आप स्वावलंबी होती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है सखियों। और हाँ, आज एक और अच्छी बात है, हम आपके लिए कुछ नया रंग बिंदिया का लेकर आए हैं। सखियों के कुछ अनकहे जज्बात, प्रेम में भीगी मन की रंगोली, तो फिर आइए सखियों सुनते हैं काव्य गोष्ठी, जिसमें प्रतिभागी हैं श्रीमती विजया ठाकुर और श्रीमती सीमा पांडे। संचालन कर रही हूं मैं नेहा त्रिवेदी।
1: सजने लगी दोपहरिया सुनहरी, महकने लगी मन की कस्तूरी, खनकने लगी सुरों की बांसुरी, बिखरने लगी जज्बातों की अंजुरी, शब्दों की खुशबू से महकने लगा बिंदिया का मन, जब गूंजने लगी काव्य की गोष्ठी। सखियों, आज हमने अपने बिंदिया को नए अंदाज में सजाया है। स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर की सुप्रसिद्ध साहित्यिका, लेखिका और कवियत्री श्रीमती विजया ठाकुर जी और सीमा पांडे जी को, जो अपनी सुंदर कविताओं से हम सबका मन मोह लेंगी। तो आगाज करते हैं काव्य गोष्ठी का। दिए की लौ से मैं सूरज उगाना चाहती हूँ, मैं नामुमकिन को बस मुमकिन बनाना चाहती हूँ। सीमा जी नमस्कार, आपका हमारे काव्य गोष्ठी मंच में बहुत बहुत स्वागत है। आइए और अपनी काव्य वाटिका की खुशबू से हम सबको महका दीजिएगा।
2: नमस्कार नेहा जी, और बिंदिया के सब श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। माँ के चरणों में मस्तक रखती हूँ और माँ के एक आभासी स्वरूप को अपनी पंक्तियों से नमन करती हूँ, और इस मंच से काव्य गोष्ठी की शुरुआत करना चाहती हूँ मैं। तो मेरी दो पंक्तियाँ समर्पित हैं माँ को।

माँ के इस स्वरूप को मैं सच सच नमन करती हूँ। और कहते हैं कि जगत जननी के पश्चात इस संसार में माँ ने हमको जना है और हमारी सभी सुविधाओं का और हमारी सभी सुखों का सार वही है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनके लिए दो पंक्तियाँ ना हों। तो मेरा एक मुक्तक उनको मैं समर्पित करती हूँ कि वो अपने हिस्से की खुशियाँ भी मुझ पे वार देती है। यहाँ पर भी दो माएँ बैठी हुई हैं मेरे सामने कि वो

बहुत धन्यवाद दी। और इसी के साथ अभी नेहा जी ने मेरा परिचय मेरी ही दो पंक्तियों से दिया था, तो उनका आग्रह है कि मैं वो दो पंक्तियां आपके समक्ष रखूं, तो मैं जरूर रखना चाहूंगी कि

और इसी के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी एक रचना पे आती हूँ जो नारी शक्ति को समर्पित किया है मैंने। कोमल देह सुकोमल मन, कोमल देह सुकोमल

0: टूटे तिनके भ्रम सब ही आज टूटे। धन्यवाद।
1: नारी सशक्तिकरण की बहुत अच्छी बात कही, और चूंकि ये कार्यक्रम हम महिलाओं का है तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। हम आपके शब्दों के जाल में आज डूब गए हैं सीमा जी,
0: धन्यवाद,
1: और मोहपाश में फंस गए हैं।
0: तो मैं आपको इस मोहपाश से थोड़ा सा और रूबरू कराऊंगी। मैं एक ये मेरा बन मेरे मन के बहुत करीब आज की नारी के लिए समर्पित है कि पंख लगे अब पंखुरी को,
1: वाह,

0: खड़ी।
1: जब कभी हमसे मिलो दर्द मुट्ठी में और मुस्कान चेहरे पर रखिएगा। जब कभी हमसे मिलो तो दर्द मुट्ठी में और मुस्कान चेहरे पर रखिएगा। यकीन कीजिएगा जब जाएंगे तो हाथों में खुशियों का गुलाब होगा। स्वागत के फूलों से सजा देते हैं देहरी, प्रेम के अश्रु से तुम्हारा वंदन करते हैं। मुस्कान की लहरियों से करते हैं अभिवादन, आंखों के काजल से आपकी नजरें उतार लेते हैं।
0: वाह
1: जी हाँ,
0: क्या बात।
1: अब हम अपनी काव्य श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करते हैं श्रीमती विजया ठाकुर जी को। विजया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत आभार नेहा। बिंदिया की सभी बहनों को नमस्कार। चार लाइन का मैं मुक्तक पढ़ रही हूँ।
3: बिल्कुल।
2: अवतरित है हर कन्या में, अवतरित है हर कन्या में जगजननी माँ शेरावाली, करे आराधना इनकी नित दिन सरस्वती लक्ष्मी माँ काली। सिंहों सा हुंकार भरो तुम, सिंहों सा हुंकार भरो तुम, शक्ति का संचार करो, रहे सुरक्षित कन्या जग में, छाए जीवन में खुशियाली, छाए जीवन में खुशियाली।
0: बहुत अच्छी, बहुत अच्छी
3: रचना।
2: अब हम अपने जीवन को एक सकारात्मक भाव के साथ ले चलती हूँ आपको एक गीत की ओर।
1: स्वागत है।
2: जिंदगी के पग अटल अविचल रहे, हार के पल जीत में अब ढल रहे।
1: बहुत सुंदर।

0: 사귀었던
1: 뭐 하신데
0: 빵 में खिलते हुए शत दल रहे
2: बहुत सुंदर शब्द
0: हार की पल जीत में अब ढल रहे आज सरगम छे

0: बहुत सुंदर
1: रही,
0: शब्द दी,
2: बहुत
0: बहुत सुंदर
2: सुंदर।
1: अब ईश्वर के प्रति हम जब अधीन होते हैं तो डोर सांसों की रहे प्रभु हाथ में, कर्म की गठरी सदा हो साथ में।

0: हार के पल जीत में अब ढल रहे।
1: बहुत सुंदर, बहुत आशावादी
0: अब ढल रहे
1: गीत शब्द, बहुत सुंदर। और आपकी आपकी इन कविताओं को सुनकर मुझे भी कुछ याद आ रहा है कि हम भी अपने कुछ पुराने दिन की ओर चलें, और कुछ पंक्तियां मैं अपने स्कूल के दिनों को याद करती हूँ।
2: बिल्कुल,
1: चलो अपनी जिम्मेदारियों का बस्ता अपनी स्कूल की क्लास में बंद कर बेफिक्री की बैलगाड़ी के सफर पर चलते हैं। चलो अपनी जिम्मेदारियों का बस्ता अपने स्कूल की क्लास में बंद कर बेफिक्री की बैलगाड़ी के सफर पर चलते हैं। घूमते हैं यादों की कच्ची पगडंडियों में, अपने शहर के बाजार से कुछ सूखे सपने खरीद लेते हैं, सींचते हैं उसे नेह के जल से, चलो उसे फिर से जीवित करते हैं।
2: वाह,
1: बैठते हैं सब मिलकर दोस्ती की सीढ़ियों में, और चटपटी बातों की खट्टी मीठी बेरियां खाते हैं, और ऐसे ही खट्टी मीठी बातों की बेरियां खाते खाते हम फिर से सीमा जी की ओर आते हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो श्रृंगार की कोई कविता सुनाए हमें।
2: इससे पहले मैं नेहा जी ये कहना चाहूँगी कि मैं आपकी आवाज़ बहुत बार बिंदिया कार्यक्रम में सुनती रही हूँ, और मैं आपके लिए और बिंदिया कार्यक्रम के लिए एक मुक्तक छोटा सा लिख के लाई हूँ, तो मैं पहले वो सुनाती हूँ।
1: सौभाग्य है
2: कि ललाट का गौरव संस्कारों का पावन बोध है बिंदी, ललाट का गौरव संस्कारों का पावन बोध है बिंदी, और हिंदी के शब्द श्रृंगार का अनुपम शोध है बिंदी, हिंदी के शब्द श्रृंगार का अनुपम शोध है बिंदी, और आकाशवाणी के स्वर सजे बिंदिया की मधुर गूंज में, आकाशवाणी के स्वर सजे बिंदिया की मधुर गूंज से नारी की अस्मिता और विमल प्रतिबोध है बिंदी, नारी
3: बहुत
2: की अस्मिता
1: बहुत
2: और विमल प्रतिबोध है बिंदी। और मेरे सामने बहुत ही सुंदर सी बिंदी के लगा के नेहा जी उपस्थित हुई हैं, और ये बिंदी अक्षुण रहे। तो ऐसे ही एक भाव से मैंने भी, अभी बट सावित्री का व्रत आ रहा है, तो मैंने एक बट सावित्री के व्रत के समय में एक कविता रची थी, ये मेरे मन के भाव है जो आपके सबके समक्ष रखती हूँ मैं। तो सुनिएगा और जुड़िएगा और सोचिएगा कि आप ही वट के चारों ओर चक्कर लगाते हुए वो कविता समर्पित कर रही हैं।
1: बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर।

0: वट के चारों तरफ घूमती जो प्रिया। धन्यवाद नेहा जी,
1: बहुत सुंदर। और कहते हैं कि हम भले ही अच्छे समय में किसी का साथ ना दें, लेकिन जब कठिन वक्त आता है जीवन का, तब जरूर साथ निभाना चाहिए।
0: और मुझे लगता है कि जीवन साथी से बढ़कर ये साथ हमारा आज तक किसी ने नहीं निभाया।
2: सीमा, तुम्हारी रचनाओं को सुन के मेरे मुझे बहुत ताली बजाने की इच्छा हो रही है, जो मैं कर नहीं पा रही हूँ।
1: एक इसी को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी चार लाइनें मैंने श्रृंगार पे लिखी है कि नहीं चाहती मैं कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी गुलाब की पंखुड़ियों के बीच छिपा हो मेरा नाम। मैं तो तुम्हारे जीवन में आए कांटों के सिरों पर अपनी हथेलियां रख देना चाहती हूँ। मैंने कब चाहा कि तुम्हारी हर मुस्कान की हकदार मैं हूँ। मैं तो तुम्हारे आंसू निकल लेना चाहती हूँ। मैंने ये कब कहा कि खुशियों की टकर में मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में हो। मैं तो बस अंधेरों में तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। और इसके साथ ही मैं फिर से आती हूँ विजय जी के पास और चाहती हूँ कि वे कुछ सुनाएं।
2: चार पंक्तियाँ, जब चार सखियाँ मिलती हैं, तो इस चार पंक्तियों से मैं कुछ भावों को व्यक्त करना चाहती हूँ।
0: स्वागत है दी, स्वागत है।
2: वेदना के ग्रंथ में, वेदना के ग्रंथ में मुखरित हुए अनुप्रास को, वेदना के ग्रंथ में मुखरित हुए अनुप्रास को, अनुभवों की कुछ लकीरें कह रही इतिहास को। अनुभवों की कुछ लकीरें कह रही इतिहास को, खुल गई है पोटली, दुख सुख सभी साझा करें। सखियां जब चार मिलती हैं आपस में,
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: अपने दिल की बातें करती हैं।
2: खुल गई है पोटली, दुख सुख सभी साझा करे, हाथ थामे रिक्त मन में भर रही विश्वास को, भर रही विश्वास को।
0: बहुत खुशी, बहुत
2: खुशी। फिर से आपको अपने गीत के तरफ ले चलती हूँ।
0: स्वागत है दी।
2: संयुक्त परिवार आज विघटन की कगार पे है और ये गीत मेरी आत्मा से जुड़ा है। कुछ मैंने भी इस चीज को भोगा है, तो वही भाव के साथ ये गीत इसमें मैं

0: काल
1: पंचीसिसके
0: किंचित करे नशो मौन खड़ा चौखटे कबरगत सजती अब चौपाल नहीं। एक गांव के चित्र को कोशिश कर रही हूँ खींचने की। मौन खड़ा चौखटे कबरगत

0: कली के से खिलती, माँ भी बढ़ जाती है जब घर बढ़
1: माँ,
0: जाते हैं, तो
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: ममता बटी कहे से में जाए अब किस ओ, सुधियों के वन
1: टके
0: भटके।

0: केवन भटके रामन नम नैनो की कोर मन का घायल।
1: बहुत सुंदर कविता विजय जी, मन को छू गई। और एक माँ ही होती है जो एक परिवार को बांधने की हर हाल में कोशिश करती है। एक छोटी सी कविता माँ के ऊपर करके मैं अब इस अपनी काव्य गोष्ठी को विराम देती हूँ। माँ कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्हें घर के सब लोगों के पेट का आयतन पता है। कभी भूगोल नहीं पढ़ा,
2: क्या बात है,
1: लेकिन खुशियों के आने की दिशा उनको ज्ञात है। कभी अर्थशास्त्र छुआ ही नहीं, लेकिन रिश्तों के विनिमय बहुत अच्छी तरह जानती हैं। किसी भी भाषा से अनभिज्ञ हैं वो, लेकिन मीठा बोल लेती हैं। नहीं जानती चिकित्सा शास्त्र, लेकिन टूटे मन की दवा कर लेती हैं। नहीं आता हिसाब, तभी तो आशीष बेहिसाब देती हैं।
2: बहुत
1: आज मैं सच में बहुत भावुक हो गई। इतने अच्छे साहित्यकारों को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया, जिन्होंने संवेदनाओं के ग्रंथ लिखे, उन्हें सुनाए, अपनी भावनाएं हम सब तक पहुंचाई। सखियों, तुम्हें बहुत अच्छा लगा हो, आप सब बहुत आनंद लिए होंगे।
2: आप कार्यक्रम को विराम दें तो मैं इससे पहले एक आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप शब्दों की साधिका तो है ही, लेकिन आपकी जो एक मधुर मखमली आवाज गूंजती है घर आंगन में बिंदिया के जरिए, वो बहुत खूबसूरत है। और उससे भी खूबसूरत आपके शब्दों का चयन है, बहुत अच्छी शब्दों की वाटिका आप सजाती हैं। तो एक शेर छोटा सा आपके लिए कि किरणों से तराशा हुआ एक नूर का पैकर, किरणों से तराशा हुआ एक नूर का पैकर, शर्माया हुआ ख्वाब की चौखट पे खड़ा है। तो आप अपने ख्वाबों को ऐसे ही सच करते रहिए। और इसी के साथ
1: धन्यवाद सीमा जी, इतने
2: बहुत आभार,
1: सुंदर शब्दों से आपने मुझे परिभाषित किया। आप काव्य गोष्ठी में आए श्रीमती विजया जी और सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। और इसके साथ ही हम अपनी काव्य गोष्ठी को विराम देते हैं। नमस्कार सखियों, अभी आपने सुनी काव्य गोष्ठी। आमंत्रित कवयित्री थी श्रीमती विजया ठाकुर, श्रीमती सीमा पांडे, और संचालन कर रही थी मैं। बहनों, आपको हमारी काव्य गोष्ठी कैसी लगी, हमें पत्र एवं ईमेल के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमें पत्र लिखने के लिए कार्यक्रम का पता है, द्वारा के निदेशक बिंदिया प्रभाग, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, यहाँ का पिन कोड है 492001। और ईमेल भेजने के लिए ईमेल आईडी है raaipkichitthi11@gmail.com। गुजरते लम्हों की उंगलियां थामकर उसने कहा, सुनो ना, मेरा अच्छा वक्त कब आएगा। उसने कुछ अजनबी सा उसे देखा, कुछ ठहरा, फिर मुस्कुराया और कहा, ये जो तपती हवा है ना, इसे भी जुनून है शीतलता का, तभी तो दिन रात बस चली जा रही है। ये जो परिंदे हैं ना, इन्हें भी इंतज़ार है बेहिसाब बरसात का। देखो ना, कैसे तिनके जोड़ जोड़ कर अपना आशियाना बना रहे हैं। ये सूखी धरती

मुरझाए प्रकृति, खाली पड़े नदी नाले तलैया, सबको आसमान में तैरते बादलों के काफिले की प्रतीक्षा है। उम्मीद से बंधा जीवन, धीरज से अपलक निहारती आंखें और परिश्रम से भरपूर हाथों का अच्छा वक्त जरूर आता है। इसके साथ ही दीजिएगा अनुमति अपनी रेडियो सखी नेहा त्रिवेदी को। नमस्कार।

0: बिंदिया कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।
1: यूं ही तुम मुझसे

सत्ते पे सत्ता इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आवाज़ किशोर कुमार की थी, आर डी बर्मन का संगीत और बोल थे गुलशन बाफरा के। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अनोखी अदा, इस फिल्म का गीत आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत, गीतकार मसरूर।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रही थी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
3: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
5: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ही अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए धारावाहिक पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की 30वीं कड़ी। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं कला के क्षेत्र से जुड़ी पद्मश्री एम राजम पर केंद्रित कार्यक्रम।

0: पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है। इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहेंगे?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
2: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
3: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है, तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा, चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
2: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
3: डर।
2: हाँ, मन में डर जो होता है,
3: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
2: क्या बात है।
3: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे, क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आकर के भाग जाते रही, तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो डर की कोई बात नहीं थी।
2: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
3: बिल्कुल सहज रूप।
2: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी, ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
3: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था, 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह, तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
2: जी
3: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वाज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि एक साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो। और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइव गर्ल वो भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
2: अच्छा।
3: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा दे के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
2: जी।
3: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा। 12 साल मैं बजा चुका और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर हो जाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट। तो ले लिया मैंने, और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई। और पंडित ओमकार नाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
2: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
3: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
2: अच्छा।
3: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
2: जी।
3: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी। तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से, यानी जिस तरह कंठ से आवाज आती है, उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा तो उस तरह। और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। तो इस तरह शुरू हो गया।
2: और पंडित ओमकार नाथ जी के बारे में कुछ?
3: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
2: जी,
3: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
2: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वायलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
3: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है
2: जी।
3: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया?
2: हाँ जी।
3: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी। पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया, वो सिखाते थे मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
2: जी जी,
3: उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात।
2: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस, ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
3: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
2: जी, जी।
3: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
2: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा? एक आपका चूंकि संगीतकारों का, कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
3: बिल्कुल।
2: तो ये सवाल ऐसा है,
3: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
2: अच्छा।
3: मेरे पेरेंट्स के।
2: हाँ।
3: तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
2: जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को?
3: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग बाकी बच्चे बड़े रिस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं तो इसीलिए उनका वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
2: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
3: वायलिन में इंस्ट्रूमेंट में जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
2: क्या बात। अम्मा जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
3: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
2: जी,
3: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
2: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स जिनके होते थे उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी, तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
3: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
2: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं मजी, आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी वो बहुत ही पॉपुलर
3: हुई, उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया।
2: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी?
3: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की, तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता
2: था। बिल्कुल सही कहा
3: लोगों को
2: जी,
3: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
2: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके
3: मेरे साथ भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी, अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गमक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
2: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन, तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो संप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
3: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है
2: जी, जी।
3: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की, जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें वही बड़ी बात है, तो नया कुछ मैंने नहीं बना।
2: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
3: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं, हाँ एक घटना बता दी इस संबंध में।
2: जी बिल्कुल।
3: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
2: हाँ जी।
3: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्य हम टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे। तो मेरा कार्यक्रम था यानी आज यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को। तो वो पूछा इतने में कर लोगी तुम, मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतरा। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में जैसे एंट्रेंस है ना तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग बाहर। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी ले हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे। और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी ये कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, मैं बच्चों का प्रोग्राम। तो छड़ी ले करके वहां वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे। उसके बाद जब आए तो हाँ चल बजा, तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट दराग देश बजाया, तो उन्होंने क्या किया उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो गुजराती हो मराठी हो सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुना है उनका एकलव्य का, तो लोग हाँ कर। तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। एक लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया है। तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
2: अम्मा जी 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं, तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
3: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी
2: जी।
3: पर मैं यही सोचती हूँ हमें ये इतना बड़ा समुद्र है इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहां चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
2: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
3: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहाँ तक शास्त्रीय संगीत है वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
2: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
3: यही है अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
2: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
2: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.eirnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

अभी आप सुन रही थी धारावाहिक पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की 30वीं कड़ी। इसके अंतर्गत आप सुन रहे थे कला के क्षेत्र से जुड़ी पद्मश्री एम राजम पर केंद्रित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

श्रोताओं, हम आपको याद दिलाते हैं, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार वितरण का सजीव प्रसारण आप सुनेंगे शाम 5 बजे, स्पोर्ट्स कैन रात 8:30 पर, और पब्लिक स्पीक का समय होगा रात 9:30। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

8 मीटर्स अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। संध्याकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ 5 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें।

0: समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये दुख की बात है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसमें पूछा गया है कि पिछले साल एजेंसी के कामकाज में सुधार के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई सिफारिशों का कितना पालन किया गया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। याचिका में भविष्य की परीक्षाओं की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनाने की भी मांग की गई है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. A report.
1: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: Finance Minister Nirmala Sitharaman today called for increased focus on fuel, fertilizer and forex amid the West Asia crisis, underlining that the domestic economy continues to be resilient. Speaking at an event to celebrate the 37th anniversary of SIDBI in Mumbai, the finance minister said the cut in diesel and petrol excise duties will lead to a revenue impact of 1 lakh crore rupees. She said high gold prices are creating some challenges on the external front. She said the country's policy response has been calibrated to preserve domestic growth. She hit out at naysayers for creating a cynical and pessimistic narrative after Prime Minister Narendra Modi's appeals on altruism, pointing out that India cannot afford fear-mongering. The Supreme Court today expressed concern over repeated lapses in the conduct of the NEET examination, saying it was sad that the National Testing Agency had not learnt any lesson from the earlier paper leak controversy. A bench of Justices P.S. Narasimha and Alok Aradhe sought responses from the Centre, the National Testing Agency, NTA and the CBI on petitions demanding replacement of the testing agency with a more robust and autonomous body to conduct the medical entrance examination. The court directed the NTA to file an affidavit by Thursday, detailing compliance with recommendations made last year by a committee headed by former ISRO chief K. Radhakrishnan for overhauling the agency's functioning. The BJP today accused senior Congress leader and leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, of working only to weaken the country. Addressing the media, party spokesperson Gaurav Bhatia said the government is stable and firm. He added that amid the global crisis where many countries' economies have weakened, India is firmly facing this global challenge under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Biju Janata Dal, BJD leader and Rajya Sabha MP Devashish Samantarai today resigned from the primary membership of the party and also stepped down from the Rajya Sabha. In his resignation letter addressed to BJD President Naveen Patnaik, Devashish Samantarai alleged that he was being systematically belittled within the party and said the organisation no longer required his services. He submitted his resignation from the upper house to Vice President and Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan in New Delhi. With his resignation, the BJD's strength in the Rajya Sabha has come down to 5 members. The Assam government today introduced the Uniform Civil Code Bill in the State Assembly. The bill seeks to ban polygamy and make registration of living relationships compulsory. The bill provides that it will not be applicable to any of the scheduled tribes residing in Assam. For marriage, the bill sets 21 years and 18 years as minimum age for men and women respectively and prohibits polygamy. To safeguard legal rights, the bill proposes to make marriage and divorce registration compulsory, which will be vital for securing maintenance, inheritance and other legal protection for spouses. Foreign Affairs Minister of Japan Toshimitsu Motegi will arrive in New Delhi this evening for a 2-day visit to India. Mr. Motegi will hold a meeting with External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. He will attend the Quad Foreign Ministers meeting in the national capital tomorrow. He will also

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 3:10 लीजिए 3:11 हुए हैं। मन भवन लेकर देविका हाजिर है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और हिंदी सिने जगत की एक महत्वपूर्ण जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ऐसा कोई नहीं है जिन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गाने ना पसंद हो और आज मन भवन में हम याद करेंगे इसी जोड़ी के गीतों को क्योंकि आज लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि है। तो आपसे यही गुजारिश है अगर आप मेल कर रहे हैं तो ऐसे गीत मेल कीजिए, ऐसे गीतों की फरमाइश मेल कीजिए जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गीत हों। और मेल आई डी आपको बता दें fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com। पहला गीत ये

3:29 और 8 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। जी हाँ, मन भावन। और जैसा मैंने बताया था कि मन भावन में आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से लक्ष्मीकांत जी की बात, और क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है तो आपने बहुत सारी मेल्स हम तक पहुँचाई हैं। मेल आईडी है हमारी fmgoldaiadelhi@gmail.com। 100.1 MHz पर देविका है आपके साथ। और पहली जो फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलकर रतनमाला सुलकर कुमकुम कुमारी ने, और ये गीत तो सुनना चाहते हैं फिल्म पारस मनी का, ये बहुत ही बेहतरीन गीत।

जी हाँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। और अगली फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और ये कहते हैं कि इस गीत की फरमाइश की है इन्होंने, फिल्म इम्तिहान का ये सबसे बेहतरीन गीत आवाज़ है किशोर कुमार की।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने बहुत सारी फरमाइश हम तक भेजी है, लेकिन कुछ श्रोता हैं जिनके नाम हम लेना चाहेंगे। गुरनाम शिरटे जिला सांगली से हनुमत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे, हरजिंदर सिंह भाटिया जुड़े हुए हैं, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, इंशान छिपा, पूजा परिहार, टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप है, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, आज बिट्टा बजाज है। और अगली फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है वाड़ी खाम गांव से अंतावाड़े रामदेव वाड़े, शुभम, साक्षी, खुशी, समस्त वाड़े परिवार। और इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है, फिल्म है बॉबी।

मैं शायर तो नहीं, शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में गीत आपने सुना। और अगली फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है आपने मोटला बाज़ार से, बबलू ठेकेदार अपना नाम लिखा है और कहते हैं कि फिल्म में दोस्ती का एक गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में जो बहुत ही खूबसूरती से गाया गया था। जी हाँ बिल्कुल, और आपकी पसंद का गीत ये रहा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूँ?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: 3:54 और 44 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये दुख की बात है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में भविष्य की परीक्षाओं की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनाने की भी मांग की गई है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिक विषय की लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के हिरासत में भेज दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन संरक्षण की अपील राष्ट्रहित में है। हरियाणा के जिंद जिले में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने ईंधन बचाने के लिए अपने आधिकारिक काफिले में वाहनों की संख्या भी कम कर दी है। बढ़ती बिजली की मांग पर श्री मनोहर लाल ने कहा कि 21 मई को देश में बिजली की अधिकतम मांग 271 गीगावाट दर्ज की गई, जिसकी आपूर्ति लगभग पूरी की गई। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य करना है। विधेयक असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्रारंभिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में श्री सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, तेलंगाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बने रहने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. A report.
1: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: The government is making all efforts to ensure smooth supply of petroleum products within the country. Addressing the interministerial briefing in New Delhi today on recent developments in West Asia, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas Sujata Sharma said, refinery production of LPG in the country has been increased to 50,000 tons per day. The Joint Secretary said that over 8 lakh PNG connections have been gasified since March, adding that infrastructure has been created for 2,87,000 connections. Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said that Indian embassies and consulates are in touch with the Indian diaspora for their well-being. Mr. Jaiswal said that the ministry is extending all possible help to its seafaring community, which in large numbers are in the Gulf region. Additional Secretary of the Department of Fertilizers Aparna Sharma said that the overall stock position of fertilizers in the country also remains comfortable. Finance Minister Nirmala Sitharaman today called for increased focus on fuel, fertilizer and forex amid the West Asia crisis, underlining that the domestic economy continues to be resilient. Speaking at an event to celebrate the 37th anniversary of SIDBI in Mumbai, the Finance Minister said the cut in diesel and petrol excise duties will lead to a revenue impact of 1 lakh crore rupees. She said high gold prices are creating some challenges on the external front. She added that country's policy response has been calibrated to preserve domestic growth. She hit out at naysayers for creating a cynical and pessimistic narrative after Prime Minister Narendra Modi's appeals on altruism, pointing out that India cannot afford fear-mongering. The Supreme Court today expressed concern over repeated lapses in the conduct of the NEET examination, saying that it was sad that the National Testing Agency had not learnt any lesson from the earlier paper leak controversy. A bench of Justices P.S. Narasimha and Alok Aradhe sought responses from the Centre, the National Testing Agency NTA and the CBI on petitions demanding replacement of the testing agency with a more robust and autonomous body to conduct the medical entrance examination. In Tamil Nadu, political developments within the opposition AIADMK took a dramatic turn today as 3 MLAs belonging to the dissent group led by senior leader SP Velumani tendered their resignations from the assembly and joined the ruling Tamilaga Vetri Kadagam or TVK. The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of State of the United States Marco Rubio will participate in the meeting. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will preside over the meeting. The External Affairs Ministry said the leaders will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas. The Norway Chess 2026 will begin in Oslo today with round 1 matches. For the first time in its 13-year history, the Super Tournament has moved from Stavanger to the capital city of Oslo, hosting its matches at the iconic Deichman Bjørvika Public Library. And that is the end of this news bulletin.

0: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 4:11 और ठीक 1 सेकेंड। जी हाँ, देविका हाजिर है और गीत का आगाज मैं करने जा रही हूँ। फिल्म है दिल तेरा आशिक।
1: हो जा

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I'm Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, an institution of national importance under the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, has announced contractual recruitment for non-teaching positions. Vacancies include superintendent, audit, technician, and other technical support roles with consolidated monthly remuneration of 40,000 to 50,000 rupees. Initial appointments will be for 1 year and may be extended based on performance. Interested candidates can apply online by 31st May 2026. Complete recruitment details, eligibility conditions and application links are available on the Institute's website at www.rgipt.ac.in. SSB, under the Ministry of Home Affairs, has invited applications for 3 posts of Deputy Inspector General Works, Group A, gazetted, commutized, on deputation or re-employment basis in pay level 13A. Eligible officers from central state governments, CAPFs, MES, CPWD, state PWDs and related engineering organizations possessing a bachelor's degree in civil engineering with 12 years experience in civil work execution may apply. The maximum age limit is 56 years. Applications in the prescribed format must reach the Directorate General SSB New Delhi within 21 days from the release of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to www.ssb.gov.in. Rail Vikas Nigam Limited has invited applications for the post of a manager of business development on regular basis. The post carries IDA pay scale E8 and is based at the corporate office New Delhi. Eligible officers from equivalent CDA IDA grades may also apply as per the prescribed conditions. Detailed qualifications, eligibility criteria and application format is available on the official RVNL website. The last date for submission of applications is 27th May 2026. For details, kindly refer to www.rvnl.org. I repeat, it is www.rvnl.org. Indian Army has invited applications for the post of a stenographer grade 1 on deputation, including short-term contract basis at Headquarters, Western Command and Allied Formations. The total number of vacancies is 3 and is available at Chandi Mandir, Jalandhar and Pathankot in pay level 6. Eligible officers from central, state government, PSUs, universities and autonomous bodies may apply through proper channel within 30 days from the publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility criteria, application format and terms available on the official Indian Army website. Kindly visit www.indianarmy.nic.in. Rajdhani College under the University of Delhi has invited applications for 1 post of a section officer administration on deputation basis in pay level 7 as per the 7 CPC. Candidates holding analogous posts or with 3 years experience in pay level 6 may apply from central or state government institutions, universities or autonomous organizations, and the maximum age limit is 55 years. Applications along with supporting documents must reach the college by 30th May 2026 or within 2 weeks from the date of publication in the Employment News. Details available on the official website at www.rajdhanicollege.ac.in. You could also go on to www.du.ac.in. And now we have the Employment News in Hindi.
1: Samachar Seva Prabhat Prastut Karta Hai Rozgar Samachar. नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। आइए जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। रामपुर रजा लाइब्रेरी द्वारा सेवा अनुबंध के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पूर्णता भरे हुए आवेदन पत्र सभी संबंधित स्व प्रमाणित अभिलेखों सहित निदेशक रामपुर रजा लाइब्रेरी हामिद मंजिल किला रामपुर उत्तर प्रदेश के नाम पर संबोधित करते हुए विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक द्वारा अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। पूर्ण आवेदन पत्र A4 आकार के लिफाफे में भेजा जाए जिसके ऊपर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि किस पद हेतु आवेदन पात्र है। पद का नाम सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार, पदों की संख्या 1, मानदेय 55,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर विज्ञान कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा साइंस में स्नातक डिग्री तथा राज्य केंद्र सरकार निकायों अनुसंधान संस्थानों विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी संस्थान में IT क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं। लेखा सलाहकार, पदों की संख्या 1, मानदेय 55,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य अकाउंट में स्नातक स्नातकोत्तर डिग्री अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सचिव तथा राज्य केंद्र सरकार निकायों अनुसंधान संस्थानों विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी संस्थान में लेखा के क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं। प्रशासनिक सलाहकार, पदों की संख्या 1, मानदेय 55,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक स्नातकोत्तर डिग्री तथा राज्य केंद्र सरकार निकायों अनुसंधान संस्थानों विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी संस्थान में प्रशासन के क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं। क्रम संख्या 4, पद का नाम शोध सहायक हिंदी, पदों की संख्या 1, मानदेय 45,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में PhD उपाधि तथा शोध अनुवाद अथवा पांडुलिपि अध्ययन के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं। क्रम संख्या 5, पद का नाम शोध सहायक संस्कृत, पदों की संख्या 2, मानदेय 45,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत में PhD उपाधि तथा शोध अनुवाद अथवा पांडुलिपि अध्ययन के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं। क्रम संख्या 6, पद का नाम टाइपिस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी, पदों की संख्या 1, मानदेय 30,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री कंप्यूटर अनुप्रयोग में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र राज्य केंद्र सरकार निकायों अनुसंधान संस्थानों विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से किसी संस्थान में संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर पर हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दबाव पर 9000 KDPH के तुल्य। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं। क्रम संख्या 7, पद का नाम टाइपिस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर अंग्रेजी, पदों की संख्या 1, मानदेय 30,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री कंप्यूटर अनुप्रयोग में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र राज्य केंद्र सरकार निकायों अनुसंधान संस्थानों विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी संस्थान में संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दबाव पर 10,500 KDPH के तुल्य। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में बजे हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर तो रहती है हमारी बराबर नजर, और फिर हम याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। कार्यक्रम परिक्रमा में आज मैं हूं आपके साथ मुनीष शर्मा, और मेरे साथ है अनुजा कुमार। नमस्कार अनुजा।
2: नमस्कार मुनीष, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। नो रिस्पाइट फ्रॉम सोरिंग टेम्परेचर्स, हीट वेव फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज स्टिल। हीट वेव कंडीशंस इन सेंट्रल इंडिया डज नॉट सीम टू अबेट, इज़न्ट इट मुनीश? Several places record day temperatures close to 45 degrees, and according to the IMD, the prevailing condition of extreme heat will continue till the end of month. Scorching heat causes severe health issues like dehydration, heat exhaustion, and life-threatening heat stroke. It worsens the chronic cardiovascular and respiratory diseases as well, triggers acute kidney injuries, and causes acute drops in air quality. Urban environments amplify these dangers by trapping heat at night. So I would request, take care friends, stay hydrated and limit your outdoor exposure. And also, very important to protect your diet, avoid high protein foods, alcohol and caffeine, as they can accelerate dehydration. Consume water-rich fruits like watermelon, cucumber and citrus fruits. Of course, all these things would sound very cliche, but this is the need of the hour. And while staying indoors, stay tuned to Akashvani for some beautiful melodies along with updates on the news front. And so let's begin with news headlines at the moment. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई से मांगा जवाब। कहा, पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया।
2: Assam Assembly introduces Uniform Civil Code Bill.
1: और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी।
2: And Norway Chess 2026 tournament to begin in Oslo this evening. And now time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk on different topics which is being observed today, like World Football Day, International Missing Children's Day and World Thyroid Day. Let's begin with World Football Day first.

0: This song truly captures the spirit of football. The song was created as the official anthem of the 2010 FIFA World Cup, which was held in South Africa, the very first time the tournament took place on African soil, and that context matters deeply. The song became a symbol of how football connects people beyond borders, race, religion, and language, which exactly is what Football Day celebrates today, and that is why Waka Waka became one of the most iconic football songs ever made.
1: दोस्तों फुटबॉल में कुछ तो है बहुत खास है ना बस एक गेंद 22 खिलाड़ी एक मैदान और अचानक बिल्कुल अनजान लोग एक साथ मिलकर ऐसे चीयर करने लगते हैं मानो वो एक दूसरे को बरसों से जानते हों एक गली में बच्चे चप्पलों को गोल पोस्ट बनाकर खेल रहे होते हैं और वहीं दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में हजारों लोग एक विशाल स्टेडियम के भीतर एक साथ मिलकर गा रहे होते हैं अलग अलग भाषाएं अलग अलग संस्कृतियां अलग अलग जीवन फिर भी गेंद नेट से टकराती है तो किसी न किसी तरह हर कोई उस एक ही भावना को समझ जाता है
0: This is the power of football. Today, the world celebrates World Football Day, observed every year on the 25th of May by the United Nations. But have we ever stopped to think about why an entire day was dedicated to this sport? What makes football so special that it connects villages, cities, and entire nations? The answer goes far.

0: beyond the game itself. Football is often called the world's universal language, not because everyone speaks the same words, but because everyone understands the same feelings: hope, teamwork, resilience, heartbreak and joy.
1: Aur shayad isliye Sanyukt Rashtra ne football ko mehaz ek manoranjan se kahin badhkar mana hai. संयुक्त राष्ट्र फुटबॉल को एक ऐसी ताकत के तौर पर देखता है जो पूरी दुनिया में शांति, समावेश, स्वास्थ्य, समानता और सहयोग को बढ़ावा देती है. है ना दिलचस्प? एक ऐसा खेल जिसे कई लोग सिर्फ मनोरंजन का साधन मानते हैं, वो समाज को घावों से उबरने में मदद कर रहा है, युवा लड़कियों को सशक्त बना रहा है, शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है और यहां तक कि युद्ध के कारण विस्थापित हुए शरणार्थियों का भी सहयोग football kar raha hai.
0: And maybe that reminds us of something deeply human. Sometimes people do not need the same background to stand together. Sometimes all they need is a shared dream. World Football Day was officially proclaimed by the United Nations General Assembly in 2024. The date marks the 100th anniversary of the first international football tournament in history that included representation from all regions of the world, held during the 1924 Paris Olympics.
1: Dosto, 100 saal baad ye khel kuch aisa ban gaya hai jis par yakeen karna bhi mushkil hai. Arbon log ise dekhte hain, lakhon isko khelte hain, anginat logon ki zindagi isse samarti hai. Lekin yahan ek sawal hai jo poochne layak hai. Dusre kai khelon ke muqable football logon ke sath itna gehra bhavnatmak judav kyon banata hai? शायद इसलिए क्योंकि फुटबॉल तक पहुंच बनाना आसान लगता है. इसके लिए आपको हमेशा महंगे सामान की जरूरत नहीं होती, आपको किसी शानदार स्टेडियम की भी जरूरत नहीं होती. कभी कभी बारिश के बाद की कोई तंग गली ही खेलने के लिए काफी होती है.
0: एंड समटाइम्स एन एम्प्टी स्कूल ग्राउंड बिकम्स अ वर्ल्ड कप फाइनल इन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन. एंड India understands this emotion beautifully. For years, cricket has dominated conversations in our country, yet steadily, football has been growing in the hearts of millions of Indians.
1: Dosto, football hamein aise sabak bhi sikhata hai jo chup-chap zindagi bhar hamare saath rehte hain. Ek chuka hua goal hamein mazbooti sikhata hai, ek pass hamein bharosa sikhata hai, aur ek kaptaan hamein zimmedari samjhata hai. Ek team हमें एकता का संदेश देती है और शायद इसीलिए फुटबॉल हमें सिर्फ एक खेल से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है, क्योंकि कई मायनों में फुटबॉल जिंदगी का ही तो आईना है.
0: राइट मुनीश, एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे.
1: जी हाँ अनुजा, देखिए दरअसल कुछ पल ऐसे होते हैं जो खामोशी से पूरी दुनिया को हिला कर रख देते हैं. इसलिए नहीं कि वो शोर मचाते हैं, बल्कि इसलिए कि वो अपने पीछे गहरा खालीपन छोड़ जाते हैं. एक माँ जो बार बार उस फोन पर कॉल करती है जिसकी घंटी अब कभी नहीं बजती. एक पिता जो आधी रात को पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा है इस उम्मीद में कि शायद किसी ने उसके बच्चे को देखा हो.
0: एंड समवेयर इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अनदर फैमिली इज लिविंग द सेम नाइटमेयर. Every year on 25th of May, the world observes International Missing Children's Day, a day that reminds us that behind every missing child poster is not a statistic, but a family waiting for life to feel normal again.
1: दोस्तों, जब कोई बच्चा लापता हो जाता है, तो कुछ लोगों के लिए शायद महज एक ऐसी खबर हो जो कुछ ही दिनों में पुरानी होकर भुला दी जाएगी. लेकिन दूसरों के लिए ये जिंदगी भर का एक ऐसा जख्म बन जाता है जिसे और भी ज्यादा तकलीफ दे बना देता है इस संकट का विशाल दायरा. दुनिया के अलग अलग देशों में समय के साथ लाखों बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट सामने आती हैं और कई क्षेत्रों में तो आज भी इन लापता बच्चों की सही तादाद का कोई सही आंकड़ा मौजूद नहीं है.
0: That is not merely a number. That is thousands of dinner tables with one empty chair. Thousands of birthdays celebrated with unanswered prayers.
1: हर सुबह हजारों माँ बाप इस उम्मीद के साथ जागते हैं कि शायद आज उन्हें आखिरकार कोई खबर मिलेगी. लेकिन जागरूकता जान बचाती है, समुदाय जान बचाते हैं, जो लोग ध्यान देते हैं वो जान बचाते हैं. कभी कभी कोई बच्चा इसलिए मिल जाता है क्योंकि किसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में उसके चेहरे को पहचान लिया.
0: That's true. Sometimes a shopkeeper notices a frightened child standing alone, and sometimes a teacher senses that something feels wrong and decides to act. It raises an important question. How often do we teach children about safety without frightening them?
1: बिल्कुल. एक साधारण सी बातचीत भी एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती है. एक माँ अपने बेटे को फोन नंबर याद करना सिखाती है. एक पिता अपनी बेटी को याद दिलाता है कि वो कभी भी अजनबियों के साथ ना जाए. माँ बाप अपने बच्चों से कह रहे हैं कि अगर कोई बात उन्हें असहज महसूस कराती है तो वो बेझिझक उसके बारे में उनसे बात कर सकते हैं.
0: These may sound like small conversations, but in critical moments, small lessons become powerful protection. That is why organizations across the world continue working tirelessly to protect children and reunite families. International Missing Children's Day itself began after the disappearance of six-year-old Etan Pads in New York in 1979, a case that deeply moved society and changed conversations around child safety forever.
1: सालों बाद 25 मई याद, जागरूकता और कार्रवाई का एक वैश्विक प्रतीक बन गया है. और शायद असल में ये दिन इसी के बारे में है. डर के बारे में नहीं, निराशा के बारे में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के बारे में. ध्यान देने की जिम्मेदारी, सुनने की जिम्मेदारी, रक्षा करने की जिम्मेदारी, एक ऐसी दुनिया बनाने की जिम्मेदारी जहां बच्चे स्कूल जाते हुए, पार्क में खेलते हुए या फिर सूरज डूबने के बाद घर लौटते हुए खुद को सुरक्षित महसूस करें.
0: सो परहैप्स द नेक्स्ट टाइम वी हियर अबाउट अ मिसिंग चाइल्ड वी मे लुक एट इट डिफरेंटली, नॉट एज अनदर पासिंग हेडलाइन, बिकॉज फॉर वन फैमिली टाइम हैज स्टूड स्टिल सिंस दैट चाइल्ड डिसअपीयर्ड एंड समवेयर इन दैट साइलेंस They are still waiting to hear your child has been found.
1: और दोस्तों अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का क्या कुछ है खास उनके पास.
0: And first we take you all to Agartala. In a proud moment from Tripura, Sehpaji Jala district has emerged as the number one district in the entire country in the National Panchayat Awards 2025, announced by the Ministry of Panchayati Raj, Government of India. The district has received the prestigious Nanaji Deshmukh Sarvottam Panchayat Satat Vikas Puraskar for its outstanding achievements in rural development and sustainable governance. We have a report on this.
2: The award recognizes excellence in 9 key areas of sustainable development. Because of remarkable progress in all these sectors, the socio-economic condition of rural people in Sipahi Jala district has witnessed a major transformation. The district has set a benchmark for the rest of the country. Naturally, this historic achievement has brought immense joy and pride among people from every section of society across Sipahi Jala district.
3: Panchayat advancement index to 2.0 usme hum hamare jila ka jo 174 gpbc hai sab participate kiya hai sab milke iske upar acche se kaam kiya hai bahut ki gaurav ka baat hai hamare liye hamare is jila ke liye.
2: The Ministry of Panchayati Raj assist districts across India using the Panchayat Development Index 2.0, which measures overall progress in grassroots development. As a part of the award, the district will receive a financial grant of rupees 5 crore for further strengthening rural development initiatives and sustainable infrastructure. With the vision of Viksit Bharat 2047, guided by Prime Minister Narendra Modi, strengthening rural India has become a national priority. And today, Sipahi Jala district of Tripura stands as a shining example of how grassroots development, people's participation and good governance can bring meaningful change to rural lives. For Parikrama, Shuman Bhattacharji, Akashvani, Agartala.
1: दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गोवा सरकार पूरे राज्य में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का अभियान शुरू करेगी. इस पहल में जैव विविधता समितियां और स्वयं सहायता समूह भी शामिल होंगे और इसका मकसद गोवा के पारिस्थितिकी संतुलन को मजबूत करना और इसकी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करना है. हमारे संवाददाता से आइए सुनते हैं कुछ और जानकारी.
4: The government of Goa has announced a major green initiative to mark World Environment Day on June 5th. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said plantation of different varieties of trees will be taken up along national highways and state highways across Goa with support from biodiversity committees and self-help groups. Addressing a program organized by the Goa State Biodiversity Board on the occasion of Global Biodiversity Day, the Chief Minister said the initiative reflects

0: नेता के तौर पर एक खास पहचान मिली और फिर आई थी 1965 में बड़ी ही यादगार फिल्म वक्त, जिसमें थे बलराज साहनी, उनके साथ राजकुमार, शशि कपूर और रहमान। और खास फिल्मों की अगर उनकी बात करें तो साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान, पड़ोसन जैसी फिल्में हमें याद आती हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं का ये एक यादगार संवाद फिल्म मेरा साया से, और उसके बाद गीतों की एक झलक।
1: तुम मेरी बीवी हो ना, तुम्हें उस डायरी से बहुत प्यार था, तुम उस डायरी को बड़ी हिफाजत से रखती थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डायरी इस वक्त भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। कहाँ है वो?
2: जब मैं घर से निकली थी तो डायरी साथ लेकर नहीं गई।
1: मैंने घर का कोना कोना छान मारा, चप्पा चप्पा देख डाला, अलमारियां, सूटकेस, ट्रंक उलट पुलट कर दिए, मगर उस डायरी का कहीं पता नहीं, कहीं नामो निशान नहीं। वही चीज तुम्हें याद नहीं आ रही, कहाँ रखी थी? मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों नहीं याद आ रही, इसलिए कि तुम मेरी बीवी नहीं हो।
3: And a song from Sujata was another masterpiece picturized on him, which still remains unforgettable.

0: And as one part of the legendary Bollywood composing duo Lakshmikant Pyarelal, today is Lakshmikant Kundalkar's death anniversary. Who dominated the Indian film music industry from the 1960s to the 1990s.
1: जी हाँ, 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में पिता का निधन हो गया और उसके बाद बीच में पढ़ाई उनको छोड़ देनी पड़ी. बचपन से ही रुझान था लक्ष्मीकांत का संगीत की ओर और फिर संगीत की आरंभिक शिक्षा उन्होंने हासिल की थी अपने उस्ताद हुसैन अली से. और आगे चलकर लक्ष्मीकांत ने अपने दोस्त प्यारे लाल के साथ मिलकर संगीतकार जोड़ी बनाकर फिल्म जगत में अपना लोहा मनवाया. अपने करियर की शुरुआत में कल्याण जी आनंद जी के सहायक के तौर पर भी काम किया. मदारी, सट्टा बाजार, छलिया, दिल तेरा हम भी तेरे और कई उनकी ऐसी फिल्में हैं जिसमें उनके गीत खासे मशहूर रहे और अब भी गुनगुनाए जाते हैं.

0: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजने को हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में पद्म पुरस्कार वितरण का सजीव प्रसारण अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
2: नमस्कार, राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोह का ये पहला चरण है और

0: दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू,
1: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट वन ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी एज वी ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द गणतंत्र भवन at Rashtrapati Bhavan in the august presence of dignitaries and the proud recipients of the prestigious awards and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. फ्रेंड्स, दी अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ऑन रिपब्लिक डे एवरी ईयर।
0: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर, और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद, और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: श्री धर्मेंद्र सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 14th लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान फ्रॉम 2004 to 2009। And he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय Dr. Shrimati N. Rajam भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
1: भगत सिंह कोश्यारी लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश वेयर ही वर्क्स टू इम्पार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
2: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 decades एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ इंडो यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
1: कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
0: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
2: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
1: Ramaswamy Palaniswamy, चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनी स्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
2: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
1: guidelines.
2: श्री
1: पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
0: पीयूष पांडे, कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं।
2: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
1: श्री विश्वबंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
0: विश्व बंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
2: श्री विश्व बंधु वॉज द फाउंडर ऑफ सुरंगन वन ऑफ बिहार्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड रिमेन सो ओवर 6 डेकेड्स।
1: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
0: भरत सिंह भारती 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
2: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरबियातान वाज रिलीज्ड। He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
1: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Vadan.
0: Jaisalmer ki Tagaram Bhil Algoza bajate hain, kitna sundar saaz jo ki sheesham aur kair ki sukhi lakdi se bana hota hai. Inhone Jaisalmeri pattu pehna hai aur upar Jaisalmeri safa chundri ka.
2: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors and appreciation certificates. He has received a Maharawal Girdhar Award in 2013 by Maharawal Girdhar Trust Jaisalmer and many, many other awards. He
1: Sushri
2: got many opportunities.
1: Harmanpreet Kaur Bhullar, Khel Cricket.
0: Kaun nahi janta Harmanpreet Kaur ko, jinhone राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
2: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket but have also contributed significantly to the growth.
1: श्री रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर साहित्य एवं शिक्षा।
0: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
2: Yes, he has received many awards and honors and after 36 years his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities.

0: He's also written a biography, Raman Bhai Neelkanth.
1: Shri Kumar Bose, Kala Tabla.
2: Kumar Bose, Tabla में एक बहुत बड़ा नाम है. आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे.
0: Shri Bose's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect
1: Shri
0: within the artistic
1: Janardhan
0: community.
1: Bapurao Bothe, Samaj Seva.
2: मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं बोथे जी, 77 साल के हैं और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं.
0: श्री बोथे कंपनीड राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई. He has also served as full-time personal secretary
1: Swami Brahmadev Samaj Seva.
2: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धेय हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है.
0: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
2: Kesariya rang ka aapne saafa pehna hai aur kesariya hi paridhan hai. Rashtrapati ji ke samne unhe abhivadan karte hue ye sant Padma Shri se sammanit hota hua.
1: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला फिल्म अभिनय.
2: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसर के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है.
0: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली, स्कूप एंड खाकी.
1: श्रीमती देवकी अम्मा जी, समाज सेवा.
2: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती हैं. 3,000 से ज़्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अल्लपुआ से आती हैं.
0: श्रीमती देवकी अम्मा relied on traditional knowledge and close observation of soil and climate conditions for growing plant saplings and used mulching, organic manuring from home cattle, careful retention of leaf litter and thoughtful water management. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
2: People's
1: Dr. Ramchand Godbole evam Shrimati Sunita Godbole, Chikitsa.
2: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
1: डॉक्टर
2: सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है.
0: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Shrimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
1: Shrimati Sunita Godbole.
2: ये भी कितना गौरव का क्षण है. उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले. एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ. आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और ख़ास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है.
1: श्री तेची गुबिन, समाज सेवा.
2: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर, जिसमें सिर पर पंख भी है, हॉर्नबिल का नमस्कार करते हुए तेची गुबिन, 62

0: खुशी है पद्मश्री प्राप्त करते हुए।
1: श्री गोबिंद ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना म्यांमार एंड भूटान। He also led a team of delegations to meet the Vice President to report on the security
2: needs. Dr. H. V. Hande, Chikitsa.
0: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है। मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण जो कि तमिल में है मूल रूप से उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है। राष्ट्रपति जी के एडीसी उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए।
1: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr.
2: Shri
1: B.C. Roy
2: Award. Shri Ghafruddin Mevati Jogi Kala Bhapang Vadan.
0: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं, इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं और ख़ास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
1: वेल थ्रू हिज सस्टेन्ड आर्टिस्टिक प्रैक्टिस श्री गफरुद्दीन हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रिजर्वेशन ऑफ नियरली 20 इंडेंजर्ड फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ओरल नैरेटिव ट्रेडिशंस। हिज वर्क हैज सपोर्टेड एकेडमिक रिसर्च इंक्लूडिंग पीएचडी लेवल स्टडीज।
2: हाजी कासम कला ढोलक।
0: 75 साल के मीर हाजी कासम, इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं, आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं। 75 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और ख़ास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
1: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएई, ओमान एंड सेवरल अदर्स। He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya
2: Shri
1: Puraskar.
2: Shri Raghuveer Khedkar Kala Theatre.
0: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं।
1: ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक व्हेन पब्लिक परफॉर्मेंसेस हॉल्टेड एंड मेनी आर्टिस्ट फेस्ड हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, श्री खेड़कर स्टूड अप एज अ स्टॉन्च एडवोकेट। He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
2: Shri R. Krishnan Kitna Marnoprant Kala Kurumba Tribal Painting, unki patni Srimati Sushila Krishnan.
0: R. Krishnan Kitna, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था, आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए। सुशीला कृष्णन उनकी पत्नी पद्मश्री प्राप्त करती हुई।
1: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर। ही इज आल्सो
2: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच कला म्यूजिकोलॉजी।
0: एथ्रो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और ख़ास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है। बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
1: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025।
2: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार साहित्य एवं शिक्षा।
0: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है सुप्रसिद्ध शिक्षाविद हैं और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
1: Well, Professor Mamidala Jagadish Kumar framed and operationalized models under NEP 2020 and the four-year undergraduate program with flexible structure and the academic bank of credits.
2: Shri Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
0: और अब बारी इस 23 वर्षीय खिलाड़ी की. T44 ऊंची कूद में विश्व में आप नंबर वन हैं और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार.
1: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू अक्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड ग्रां प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर्स सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड. एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल.
2: श्री के विजय कुमार सिविल सेवा.
0: विजय कुमार जी सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
1: एज कमिश्नर ऑफ चेन्नई श्री के विजय कुमार रिफॉर्म्ड क्राइम कंट्रोल प्रैक्टिसेस क्रैक्ड डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड एनहांस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड रोड फैटलिटीज बाय 40%. एज एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर ही स्ट्रेंथेंड पब्लिक सेफ्टी.
2: देवा लाड दादा लाड कृषि.
0: देवालाड किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है. परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्मे हैं, 79 वर्ष के हैं.
1: श्री रंग देवालाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल.
2: श्री अंके गौड़ा एम समाज सेवा.
0: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है.
1: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 ईयर्स यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन Kannada, English, Hindi, Tamil, Telugu and several other Indian languages and diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
2: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa Cardiology.
0: 69 वर्षीय Dr. Mandal, interventional cardiologist हैं. आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है.
1: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
2: Professor Budh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
0: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar, Professor Budh Rashmi Mani. राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में.
1: वाइल वर्किंग इन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोफेसर मनी कंजर्व्ड अबाउट 150 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स इन महाराष्ट्र गोवा दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड डिस्कवर्ड 200 आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड ही डायरेक्टेड 20 एक्सपेडिशंस.
2: श्री निलेश विनोद चंद्र मांडलेवाला समाज सेवा.
0: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है.
1: श्री मांडलेवाला He has a long-term vision that by 2047, no citizen should lose life because of the non-availability of organs. For that, he has traveled extensively across India.
2: Dr. Mahendra Kumar Mishra, Sahitya Evam Shiksha.
0: लुप्त प्राय जनजातीय आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने.
1: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University, and Russia's Academy of Sciences.
2: Shrimati Tripti Mukherjee, Kala, कंथा एम्ब्रॉयडरी।
0: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत

0: योगदान रहा है।
1: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी इज ऑल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बाय कन्फरिंग ऑन हर द बंगाश्री अवार्ड।
2: हरि माधव मुखोपाध्याय कला थिएटर, उनके पुत्र श्री कृष्णेंदु मुखोपाध्याय।
0: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु मुखोपाध्याय।
1: श्री
2: सत्य नारायण नंदलाल नुवाल, व्यापार एवं उद्योग।
0: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
1: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which has
2: Shri K. Pajanivel Khel Silambam.
0: Silambam, 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल।
1: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also found the Mamallan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
2: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
0: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते राष्ट्रपति जी खुद अपने आकर श्री पंड्या का सम्मान।
1: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
2: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
0: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
1: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s as secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
0: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar kar niche aati hui aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है।
1: His work earned him the विश्व हिंदी सम्मान।
2: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार।
0: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
1: Over a career spanning 6 decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
2: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
0: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
1: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
2: Dr. students. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
0: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
1: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly

0: 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important
1: Deepika Reddy,
0: leadership positions.
1: Kala Nritya.
2: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
0: श्रीमती रेड्डी वॉज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली, एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
1: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
2: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
0: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts have
1: borne fruit. Shri Haricharan Shaikia, Kala Satriya Nitya.
2: Satriya, Assam ki ek suprasiddh kala. और हरिचरण शैकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं, व्हील चेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रीय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुए।
0: श्री हरिचरण साइकिया परफॉर्म्ड सत्रिय डांस बिफोर इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आल्सो ही परफॉर्म्ड द भरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
1: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री,
2: 86 साल के शास्त्री जी,
1: साहित्य एवं शिक्षा
2: विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए।
0: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स। He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
1: Professor Shafi Shauk, Sahitya evam Shiksha.
2: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है, प्रोफेसर शफी शौक।
0: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
1: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
2: Baldev Singh ji ne bahut sare hockey khiladi is rashtra ko diye hain. Ek anubhavi coach hai aur aaj inhe milta hua Padma Shri aur ye taaliyan is baat ka pramaan ki unka kitna bada contribution raha hai.
0: Shri Baldev Singh ji is widely recognized for developing the Shahbad Markanda Hockey Nursery into one of India's most productive centers for hockey talent.
1: Shri Yumnam Jatra Singh Marnoprant Kala Nat Sankirtan, unke putra Shri Yumnam Bishan Bhor Singh.
2: Aap Manipur ke paramparik Vaishnav nritya aur sangeet ke pratishthit pratipadak the aur बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए युवनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
0: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
1: Dr. Ashok Kumar Singh, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग।
2: अशोक जी ने भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
0: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 PhD एंड 5 MSc स्टूडेंट्स, मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
1: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।

0: हमारी श्रीमती शिवशंकरी जी की। आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और ख़ास तौर पर लेखन में, सभी भाषाओं में और ख़ासतौर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज़्यादा उपन्यास, 40 से ज़्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज़्यादा लघु कथाएं, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
1: Shrimati Shivshankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
2: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
0: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
1: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव का विकास, ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशंस। He has also played a central role in launching Gyan Darshan Group of Channels, the first 24-hour educational television channel.
2: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kalazar.
0: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के Institute of Medical Sciences में मेडिसिन के मानद प्रोफेसर हैं। संक्रामक रोगों, खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट। ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM एंड
2: डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा, समाज सेवा।
0: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और ख़ास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज़्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफ़ेद साड़ी इन्होंने पहनी है और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
1: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
2: श्री एन स्वामीनाथन, कला भक्ति संगीत।
0: तंजावूर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है।
1: He became a master of the art and served as author in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
2: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurveda.
0: Dr. Thakral, Ayurvedic Paddhati ke Shalya Chikitsak hain aur Bharat mein ek Kshar Sutra Chikitsa ke madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है।
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो।
2: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
0: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमण कुमार त्रिवेदी।
1: डॉक्टर त्रिवेदी, सिंस द लास्ट 5 years ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज।
2: श्री अरविंद वैद्य कला थिएटर
0: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज़्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है।
1: श्री वैद्य
0: काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है।
1: श्री वैद्य फाउंडेड द नाट्य संपदा, हिज ओन प्रोडक्शन कंपनी थ्रू विच ही प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड एंड एक्टेड इन मोर देन 75 फुल लेंथ प्लेज। ईच वर्क कैरीड द क्वाइट वेट ऑफ डेडिकेशन, गैदरिंग रिकॉग्निशन अलोंग द वे। In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
2: Professor
1: very adaptable.
2: Juzar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
0: Professor Juzar Vasi, IIT Bombay mein Professor Emeritus hai. Aur aapne micro electronics aur semiconductor aur solar फोटोवोल्टिक से क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टेक्स, ही स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशंस। ही हैज पब्लिश्ड अबाउट 200 पेपर्स इन लीडिंग जर्नल्स।
2: डॉक्टर नारायण व्यास, पुरातत्व विज्ञान।
0: डॉक्टर नारायण व्यास विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है, खास तौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
1: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the government of Madhya Pradesh in
2: 2019. Professor Gambir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
0: Gambir Singh Ji, Darjeeling पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग। A passionate advocate of scientific temper and environmental awareness, he led a 6-year conservation movement that was a huge, huge success.
2: Shri Halley War, Samaj Seva.
0: अब बारी हैली वार जी की। आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम हैं।
1: Shri War has spent more than 50 years nurturing and building the iconic living route bridges of the East Khasi Hills. Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
0: और अब सचिव महोदय आते हुए, क्योंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और राष्ट्रपति,
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय।

0: can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: And there is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please, may I have attention, please? I request all the award winners to move towards your right side. Second part of this ceremony.
1: आकाशवाणी से उसका आंखों देखा हाल भी सुनना ना भूले तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे

श्रोताओं, हम आपको बता दें आज रात 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन। रात 9:30 पर होगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा शाहिद परवेज का सितार पर बजाया राग पुरिया धनाश्री।

6:30 पर सुगम संगीत के कलाकार होंगे मोहम्मद याकूब। इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर आप सुनेंगे तापसी नागराज को। सात पर होगा कार्यक्रम चौपाल। इसमें आप सुनेंगे आज की बात, कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट प्रबंधन। क्रम आज की सलाह में आप सुनेंगे दुग्ध प्रसंस्करण एवं प्रबंधन, इस विषय पर डॉक्टर सारंग दिलीप पोपली की सलाह। इसके अलावा होगा आज का प्रश्न और छत्तीसगढ़ी गीत।

पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर आप सुनेंगे रात 10 बजे। चित्रपट संगीत का आप आनंद ले सकते हैं 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को है। समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज

0: दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह के अध्यक्ष डॉ. शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा की पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: भी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया अरचोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये चिनिया महावीरगंज शिवपुर कनकपुर टकिया मेंढारी करमडीहा भगवानपुर नवापारा कुंदीकला जामदोहर अखोरा जवाक

0: पहाड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये पोड़िपा, घंघरी, सकालो, सरगवा, गुल्हाड़ी, पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मिर्गाडांड, मनोहरपुर, पंडरीपानी, डांडगांव, बरवाली, बरडांड, दातीढाप, कंडराजा, बैगहवा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूरचुंदी, बरटोली, खड़ामाचा, राजा आमा, झिमकी, चट्टान पारा, महुआडी, खुटसेरा, पतेबहाल, झिक्की, खंताडांड, परसाडांड, पेटा, सामरबार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू में हाथियों की कुल संख्या 135 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, औरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लाल डी, झुनकी डी, जुनवानी, कुकरी कादर, डंगबोरा, खड़पड़ी, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमरडा अभयारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मुरुमडी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी, दलदली, तालाझर, झालपानी, कौहा बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासुल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। किसी भी परिस्थितियों में हाथियों का खेदा करने बिल्कुल ना जाएं। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाए। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा। जी, आकाशवाणी रायपुर है। अब आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति है आज 66 जिन विशिष्ट लोगन मल्ला बछर 2026 के पद्म पुरस्कार लेकर सम्मानित छत्तीसगढ़ के रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले ल संयुक्त रूप ले चिकित्सा के क्षेत्र में मिली पुरस्कार। पेट्रोल डीजल के भाव में एक घाव फेर बढ़ोतरी। पेट्रोल 2.61 रुपया और डीजल 2.71 रुपया के हो है बढ़ोतरी। और प्रदेश में आज ले नौतपा के होगे शुरुआत। मौसम विभाग है प्रदेश के कोनो कोनो जगह में लू चले के देहे चेतावनी। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है आज राष्ट्रपति भवन में 66 जिन विशिष्ट लोगन मल्ला बछर 2026 के पद्म पुरस्कार दिन इमा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला के रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले ला संयुक्त रूप ले चिकित्सा के क्षेत्र

0: मा बढ़िया कामकाज पर पद्मश्री पुरस्कार ले सम्मानित करेगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए रहिन। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह काली नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष ऊपर राखे गए जनजाति सांस्कृतिक समागम ल संबोधित करिन। ओमन कहिन कि ये समागम अवैया बछर म जनजातीय महाकुंभ के रूप में विश्व में चिन्ह बनही। ओमन कहिन कि भगवान बिरसा मुंडा हा जनजातीय समाज ला अपन संस्कृति, धर्म और जल जंगल जमीन के रक्षा के संदेश दिन। ओमन कहिन कि केंद्र सरकार हा जनजातीय समाज के विकास पर सरलक काम करत है। जनजातीय कल्याण के बजट ला 28,000 करोड़ ले बढ़ा के 1,50,000 करोड़ रुपया करे गए है। ओमन कहिन कि नक्सल हिंसा में बड़ संख्या में जनजातीय लोगन मन के जान गिस, फिर अब सरकार हा नक्सल ऊपर प्रभावी नियंत्रण पाए। गृहमंत्री है कहिन कि समान नागरिक संहिता माने UCC ले जनजातीय समाज के परंपरा और अधिकार ऊपर कोनो असर नहीं पड़े। कार्यक्रम ला संबोधित करत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है कहिन कि जनजातीय समाज हा दुनिया ला प्रकृति के संग बने विकास के रद्दा दिखा सकते। ओमन जनजातीय भाषा, संस्कृति और परंपरा ला संजोय ऊपर जोर देवत कहिन कि राज्य सरकार हा गोंडी, हल्बी और सादरी जैसन भाषा ला पारंपरिक शिक्षा ला बढ़ावा देवत है। मुख्यमंत्री है कहिन कि आदि परब, बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसन आयोजन है जनजातीय पहचान और प्रतिभा ला राष्ट्रीय मंच देवत है। पेट्रोल के भाव में आज 2.61 रुपया और डीजल में 2.71 रुपया के बढ़ोतरी हो है। पेट्रोल और डीजल के भाव में पाछू 2 हफ्ता में 4 बार बढ़ोतरी हो है। अब राजधानी रायपुर में पेट्रोल 107.96 रुपया प्रति लीटर और डीजल 100.17 रुपया प्रति लीटर मिलत है। केंद्रीय उर्वरक विभाग के अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा कहिन है कि पश्चिम एशिया संकट के बाद घलो देश में खातु मन के भंडार पूरा मात्रा में हवे। एसओ के आकलन के मुताबिक 390 लाख मीट्रिक टन भंडारण हवे। ए बेरा 200 लाख मीट्रिक टन के भंडारण हवे जौन हा सामान्य स्तर ले ज्यादा है। मुख्य सचिव विकासशील है अधिकारी मन ला प्रदेश में सड़क दुर्घटना ला रोके बर जम्मो कार्रवाई करे के निर्देश दे है। मंत्रालय में सड़क सुरक्षा ला लेके राखे के बैठका में मुख्य सचिव है कहिन कि सड़क दुर्घटना पर चिन्हारी करे गे ब्लैक स्पॉट के सड़क मॉनिटरिंग करे जाए और तुरते जरूरी सुधार करे जाए। उमर राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मन के बीच आपस में तालमेल बिठा के काम करे के बात कहिन। केंद्र सरकार है ईद उल अजहा माने बकरीद के सरकारी छुट्टी में बदलाव करे है। जम्मू केंद्रीय कार्यालय, विभाग और सरकारी संस्थान मन में 27 मई के जगह अब 28 मई के छुट्टी रही। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA है 28 मई के होवैया संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के तारीख आगू बढ़ा दे है। एजेंसी यकीन है कि बकरीद के तारीख में बदलाव के सेती ये फैसला ले गए है। 9 तारीख के घोषणा जल्दी करे जाही। जानकारी के मुताबिक छात्र मन NTA के आधिकारिक वेबसाइट में देखे जा सकते। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगे बढ़ो पांचे समाचार को थी। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में इबोला संक्रमण ला रोके बर जरूरी निर्देश जारी करे है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवा डहार ले जारी निर्देश में एयरपोर्ट ले अवैया यात्री मन के स्वास्थ्य जांच, संदिग्ध मामला के पहचान और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था ला बने ढंग ले राखे बर कहे है। संगे संग मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर ला स्वामी विवेकानंद विमानतल परिसर में एक झीन नोडल अधिकारी नियुक्त करे के घलो निर्देश दे है। जानबा के मुताबिक कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के बढ़त मामला के बाद दुनिया में सतर्कता बढ़ा दे गए है। विश्व स्वास्थ्य संगठन हा पहली जिले एला सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर चुके है। एला देखत भारत में घलो एहतियात बरते जात है। बलरामपुर जिला में

0: सनावल रोड स्थित गांव पिपरपान के तीर एक ठिन सड़क दुर्घटना में चार झीन मनखे के मौत हो गए। ये चारों मनखे मन काली संझा एक ठिन फटफटी में बैठ के बाजार ले लौटत रहीन। इही दौरान ओखर गाड़ी ह सड़क के तीर खड़े ट्रैक्टर ट्राली ले टकरा गए। ये दुर्घटना ले दू झीन मनखे के मौकच में प्राण छूट गए और दू झीन आने मनखे मन के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गए। झीरम घाटी में कांग्रेस नेता मन ऊपर होए हमला के आज 13 साल हो गए है। ये मौका में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मन रायपुर स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में रखे गए कार्यक्रम में झीरम घाटी में शहीद हुए नेता मन ला श्रद्धांजलि दिन। जानबा के मुताबिक 25 मई 2013 के बस्तर संभाग के झीरम घाटी में माओवादी मंडहार ले करे गए हमला में कांग्रेस के बड़का नेता और सुरक्षा बल के जवान मन के संगे संग करीबन 30 लोगन के मौत हो गई रही। राज्य शासन डहर ले बाल सक्षम नीति 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन पर 1 ले 30 जून तक पूरा प्रदेश में विशेष सघन अभियान चलाया जाए। ये दौरान सड़क में रहैया भिक्षावृत्ति बाल श्रम और कचरा सकेले में लगे लड़का मन की पहचान करके ओमन ल समाज के मुख्य धारा ले जोड़े के प्रयास करे जाए। ये अभियान के तहत कलेक्टर की अगुवाई में जम्मू जिला मन में विशेष टीम बनाया जाए। और पेशे मौसम के हाल, प्रदेश में आज ले नौतपा शुरू हो गए है और संगे संग ए बेरा प्रदेश के कतकोन जगह में जोरदारहा गर्मी पड़े के सेती लोगन मन परेशान हो है। यही बीच मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कतकोन जगह में लू चले के चेतावनी दे है। उन्हें एक दो जगह में हवा गरेर के संग हल्का वर्षा होए के संभावना बताए गए है। राज्य शासन ह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जम्मो तकनीकी कर्मचारी मन ला बिगड़े बोरिंग और पाइपलाइन मन ला सुधारे के संगे संग पेयजल समस्या के तुरते निपटारा करे के निर्देश दे है। निर्देश के बाद गांव गंवई मन में साफ पिए के पानी पहुंचाए बर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के टीम ह काम शुरू कर दे है। विभाग डहर ले जल जीवन मिशन के तहत चलाए जात योजना मन के बने ढंग ले संचालन के संगे संग गांव के लोगन मन ला पानी बचाए कोती जागरूक करे जात है। प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में 1 जून के मतदान हुई। एक बार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग डहर ले नामांकन पत्र के जांच और नाम वापसी के काम पूरा होए के बाद अभ्यर्थी मन के आखिरी सूची जारी कर दी गई है। अब थोरकुन समाचार सार में, मुख्यमंत्री की अगुवाई में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक काली 26 मई के संध्या 6 बजे अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। और बलौदाबाजार भाटापारा जिला के बार नवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में दतैल हाथी के हमला ले एक झीन गांव के लोगों की मौत हो गई। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर, राष्ट्रपति आज 66 जिन विशिष्ट लोगन मल्ला बछर 2026 के पद्म पुरस्कार लेकर इन सम्मानित छत्तीसगढ़ के रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले ला संयुक्त रूप ले चिकित्सा के क्षेत्र में मिली पुरस्कार। पेट्रोल डीजल के भाव में एक गांव फिर बढ़ोतरी, पेट्रोल 2.61 रुपया और डीजल में 2.71 रुपया को हो है बढ़ोतरी। और प्रदेश में आज ले नौतपा के होगी शुरुआत, मौसम विभाग प्रदेश के कोनो कोनो जगह में लू चले के देहे चेतावनी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने पद्म पुरस्कारान् प्रददाति। प्रशासनेन उक्तं यत् सर्वकारः देशे पेट्रोलियम उत्पादानां सुगमतया आपूर्तिं सुनिश्चेतुं प्रयतमानः अस्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन नीट परीक्षा पत्र लीक प्रकरणे केन्द्रस्य NTA CBI इत्युभाभ्यां प्रतिक्रिया याचिता। अपि च भारत ऋतु विभागेन आगामिषु 3 दिनेषु दिल्ल्यां उष्णतरंगस्य स्थित्यै पीतवर्णीया संचेतना प्रदत्तास्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे पद्म पुरस्कारान् प्रदत्तवती। पद्म पुरस्कारा देशस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारेषु अन्यतमाः सन्ति, यस्मिन् पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री च अन्तर्भवन्ति। अद्य 26,000 वर्षे प्रथम नागरिक निवेश समारोहे राष्ट्रपतिना कलाक्षेत्रे अभूतपूर्व योगदानाय मरणोपरान्तं चलचित्र अभिनेतारं धर्मेन्द्र सिंह देओलं वायलिन वादकं डॉक्टर एन राजम वर्यं च पद्म विभूषण पुरस्कारौ, 6 पद्म भूषण पुरस्काराः, 8 50

0: पश्चिम एशिया संकट कालावधौ इंधनस्य उर्वरकस्य विदेशी मुद्रायाः च विषये अधिकं ध्यानं दातुं आहूतवती। देशीय अर्थव्यवस्था निरन्तरं सुदृढा एवास्ति इति उक्तवती। मुंबई नगरे सिडबी संस्थायाः 37वें वार्षिकोत्सवे आयोजिते कार्यक्रमे भाषणं कुर्वन्ती वित्तमंत्रिणा उक्तं यत् डीजल पेट्रोल उत्पाद शुल्कयोः न्यूनीकरणेन 1,00,000,00,000 रूप्यकाणां राजस्वस्य उपरि प्रभावः भविष्यति। सा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः परोपकारस्य प्रार्थनायाः अनन्तरं निन्दकेषु वाक्प्रहारं कृतवती। सा उक्तवती यत् भारते भयस्य उत्प्रेषणं कर्तुं न शक्यते। राष्ट्रियान्वेषण अभिकरणेन अद्य जम्मू कश्मीरस्य श्रीनगर शोपियान जनपदयोः त्रिषु स्थानेषु अन्वेषणं विहितम्। अधिकारिणः उक्तवन्तः यत् शोपियान नगरस्य इमाम साहिब क्षेत्रे दारुल उलूम सिराजुल उलूम इत्यत्र अन्वेषणम् अभवत्। गतमासे एषा संस्था अवैध संस्था इति घोषिता आसीत्। शोपियान नगरस्य मूलु चित्रगाम क्षेत्रे पूर्व जमात ए इस्लामी प्रमुखस्य सहजादा औरंगजेबस्य निवासस्थाने अपि च श्रीनगरस्य लाल बाजार क्षेत्रे बालिकानां धार्मिक विद्यालये जमीयत उल बनात इत्यत्र अपि अन्वेषणं जातम्। अवधेयं यत् अद्य प्रातः काले अन्वेषणं समारब्धम्। क्वाड विदेश मंत्रिमंडलस्य उपवेशनं श्वः नवदिल्ल्यां भविष्यति। ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेशमंत्री पेनी वोंगः, जापान देशस्य विदेशमंत्री तोशिमित्सु मोटेगी, अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो च अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भविष्यन्ति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षः भविष्यति। विदेशमंत्रालयः अवदत् यत् नेतारः प्राधान्येषु क्षेत्रेषु क्वाड सहयोगस्य प्रगति विषये विचारान् विनिमयं करिष्यन्ति। वर्तमान उपक्रमाणां प्रगतिम् अपि च परस्पर चिन्ता विषयकान् अन्यान् अन्ताराष्ट्रिय विषयान् समीक्षितुं शक्नुवन्ति। भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान देशैः युक्तः क्वाड शङ्खः भारत प्रशान्त प्रदेशे शान्त्यै सुरक्षायै स्थिरतायै च प्रमुखः समूहः उद्भूतः अस्ति। भारतं संघटनस्य वर्तमानस्य अध्यक्षस्य रूपेण अस्याः सभायाः आतिथ्यं करोति। भारत ऋतु विभागेन आगामिषु त्रिषु दिनेषु दिल्ल्याम् उष्णतरङ्गस्य स्थित्यै पीतवर्णीया सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। विभागस्यानुसारं राष्ट्रिय राजधान्यां दिवसस्य तापमानं 44°C-46°C सेल्सियस् पर्यन्तं भवितुम् अपेक्षा अस्ति। आगामिदिनद्वयोः हरियाणायां चण्डीगढे पञ्जाबे बिहारे छत्तीसगढे मध्यप्रदेशे तटीय आन्ध्रप्रदेशे पूर्वी राजस्थाने झारखंडे ओडिशायां तेलंगानायां पश्चिम उत्तर प्रदेशे च उष्ण तरंगस्य स्थितिः यथावदेव भविष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। सुगम संगीत।
2: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: सुगम संगीत में कलाकार हैं मोहम्मद याकूब। इनकी आवाज में पहले सुनिए ये रचना।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: 10वीं या BSc पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था CPET रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
3: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। मोहम्मद याकूब की आवाज में अब सुनिए ये रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। कलाकार थे मोहम्मद याकूब। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।

0: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
0: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ के गोडबोले दंपत्ति सहित 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता से जनजाति समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 632 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में, 1 जून को होगा मतदान। और पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
5: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले एवं श्रीमती सुनीता गोडबोले, चिकित्सा।
4: समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित जनजाति सांस्कृतिक समागम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह समागम आने वाले वर्षों में जनजाति महाकुंभ के रूप में वैश्विक पहचान बनाएगा। श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजाति समाज को अपनी संस्कृति, धर्म और जल जंगल जमीन की रक्षा का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनजाति समाज के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। जनजाति कल्याण का बजट 28,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि नक्सल हिंसा में बड़ी संख्या में जनजाति लोगों की जान गई, लेकिन सरकार ने नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया है। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से जनजाति समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने लोगों से भ्रांतियों से बचने और एकजुट होकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजाति समाज दुनिया को प्रकृति के साथ संतुलित विकास का मार्ग दिखा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजाति समाज भारत की सांस्कृतिक,

0: आत्मा का सबसे प्राचीन और जीवन स्वरूप है। उन्होंने जनजाति भाषा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार गोंडी, हल्बी और सादरी जैसी भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। श्री साय ने कहा कि आदि परब बस्तर, पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन जनजाति पहचान और प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में यह पिछले 2 सप्ताह में 4थी वृद्धि है। अब राजधानी रायपुर में पेट्रोल 107.96 रुपये प्रति लीटर और डीजल 101.17 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। केंद्र सरकार ने ईद उल अजहा यानी बकरीद के अवसर पर घोषित अवकाश में बदलाव किया है। सभी केंद्रीय कार्यालयों, विभागों और सरकारी संस्थानों में 27 मई की बजाय अब 28 मई को अवकाश रहेगा। यह निर्णय चांद दिखने की संभावित तारीख और त्यौहार मनाने के शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 1 जून को मतदान होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। नगरीय निकायों में कुल 240 तथा त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों में पंच के 640 पदों और सरपंच के 15 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, जबकि जनपद सदस्य के सभी 10 पदों के लिए कुल 41 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं नगरीय निकायों में सभी रिक्त पदों पर न तो कोई नामांकन निरस्त हुआ है और न ही कोई निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में इबोला संक्रमण की रोकथाम को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी निर्देश में एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच, संदिग्ध मामलों की पहचान और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। गौरतलब है कि कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद दुनिया भर में सतर्कता बढ़ाई गई है। केंद्रीय उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में उर्वरकों का भंडार पर्याप्त और संतोषजनक स्थिति में है। इस वर्ष का आकलन 390 लाख मीट्रिक टन है। वर्तमान भंडार 200 लाख मीट्रिक टन है, जो सामान्य स्तर से अधिक है। उन्होंने कहा कि संकट के बाद घरेलू उत्पादन और उर्वरक आयात में काफी वृद्धि हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य शासन द्वारा बाल सक्षम नीति 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 1 से 30 जून पूरे प्रदेश में विशेष सघन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सड़क पर रहने वाले भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और अपशिष्ट संग्रहण में लगे बच्चों की पहचान कर उनका रेस्क्यू, पुनर्वास और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान के तहत कलेक्टरों के नेतृत्व में सभी जिलों में विशेष रेस्क्यू टीम गठित की जाएगी। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को वार्ड और संकुल स्तर पर जिम्मेदारी देकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अभियान का लाभ अंतिम जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी NTA की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। बलरामपुर जिले में सनावल रोड स्थित ग्राम पीपरपान के पास एक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। ये चारों युवक कल शाम एक बाइक पर सवार होकर बाजार से लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से जा टकराई। इससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य

0: नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रायपुर स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में झीरम घाटी में शहीद हुए नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि 25 मई 2013 को बस्तर संभाग की झीरम घाटी में माओवादियों द्वारा किए गए हमले में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और सुरक्षा बल के जवानों सहित करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी। और अब पेश है मौसम का हाल। आज से नवतपा शुरू हो गया है, वहीं इन दिनों प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भीषण गर्मी से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में ग्रीष्म लहर चलने और एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है।
1: पिछले 2-3 दिन से प्रदेश में अधिकतम तापमान लगभग 1 से लेकर 3 डिग्री ज्यादा है और मध्य छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर ग्रीष्म लहर चल रहे हैं। ऐसा वाला स्थिति जो है आगामी 4 दिन तक भी होने की संभावना है। ग्रीष्म लहर मुख्य रूप से बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग के जिलों में होने की संभावना है, जिसका वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका अलावा भी दक्षिण छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में भी 1-2 स्थानों पर ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। 4 दिन के पश्चात प्रदेश में मेघ गर्जन का एक्टिविटी जो है तेज हवा के साथ और वर्षा के साथ होने की चांसेस है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट एक्सपेक्टेड है।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक कल 26 मई को शाम 6 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। बेमेतरा जिले के साजा में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने एक पटवारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और बलौदाबाजार भाटापारा जिले के बार नवापारा अभ्यारण क्षेत्र में दंतैल हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई। वन विभाग द्वारा मृतक के परिजनों को तात्कालिक सहायता राशि 25,000 रुपए प्रदान की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ के गोडबोले दंपत्ति सहित 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता से जनजाति समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 632 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में 1 जून को होगा मतदान। और पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: सम्मान।
1: मैंने प्यार किया, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाजों में। गीतकार थे देव कोहली, संगीत राम लक्ष्मण का था।

ആകാശവാണി @90 आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में। समीर के लिखे गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने। फिल्म का नाम वंश।

मीरा का मोहन। इस फिल्म का गीत आपने सुना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। इंडीवर के लिखे गीत को संगीत दिया था अरुण पौडवाल ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेटा से। गीतकार हैं समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद, आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास की।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: सतीश भैया राम राम।
1: तेजस्वर भाई राम राम। औ संगे संग चौपाल सुनिया हमर जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला हमर दोनों के राम राम, राम, राम।
0: सतीश भैया
1: हाँ भाई,
0: कोनो भी फसल ला जब हमन हा अच्छा उत्पादन बर लेथन ना, या कहन की गुणवत्ता वाला उत्पादन होए की कथन, तो ओकर बर सबले ज्यादा जन जरूरी होते वो होते फसल के बोनी। फसल के बोनी पहे जन करथन ना, तो बहुत छोटे छोटे बात है वे जेकर हमन ध्यान करथन चेत करथन, तो हमर जन फसल है ओकर उत्पादन है वो बढ़िया ढंग लो। अब भाई कहन की कैसे ढंग ले करन, तो जैसे कि अभी बेरा हावे फसल बोनी के, तो फसल के बोनी ला हमन हा बेरा राहत करन।
1: बिल्कुल,
0: फसल के जन बुआई के और जन किस्म है ओकर चयन उही हिसाब ले करन कि हमन हा कौन बेरा मा ओकर उत्पादन ले बर जाथन। अगेती किस्म होवे त अगेती लगाथन, त पहली ले अगेती किस्म के चयन करन। और कहूँ हमन हा पछवा गए बोनी करे में, कोनो खेती किसानी के या आने का काम बूता में हमन हा व्यस्त रही गेन, और ओमा अगर कहूँ पछवा गए हमार खेती किसानी पछवा गए, अब भाई घाम बानी बादर और पानी ऊपर वाला भरोसा हवन, तो ओकर भरोसा में कहूँ हमार खेती पछवा गए, तो ओ बेरा में भाई हमन यहू ध्यान देवन कि पछेती किस्म के जन चयन किस्म है ओकरे चयन करन ओकरे बुआई करन, एकल ले फसल जल्दी तैयार होही और हमन ला अच्छा उत्पादन मिलही।
1: बहुत बढ़िया बात बता था, जो कोशिश हमला ये करना चाहिए भाई कि समय में हमला खेती करना चाहिए ताकि हमार उत्पादन जौन हवे और उत्पादन ला हम जैसे आगे हम बेचथन ओकरो हमला पूरा बाजार भाव बने मिलना चाहिए। ये ढंग से बहुत सुघर तय बात बता था जब तेजस्वर भाई के, जैसे फसल बोनी के पहली हम सबसे पहली खेत ले जन कचरा है अनावश्यक तत्व है ओला खरपतवार ला माने बाहर निकालन, और एक प्रमुख बात ये याद रखन कि खरपतवार ला निकाले के साथ साथ माटी परीक्षण करलन। संगवारी हो, माटी परीक्षण ये है कि माटी में आवश्यक पोषक तत्व कतका कन है, का है, कौन आवश्यक पोषक तत्व के मात्रा कतका कन होना चाहिए, ये सबो जिनिस के जानकारी हमला हो जाते तेकर से कृषि विज्ञान केंद्र से माटी परीक्षण जरूर करवाला ना, ओकर बाद हम ओकर अच्छा से हम माने उत्पादन ले सकबो।
0: भैया जिसे बात आते ना खरपतवार ला निकाले के, तो खरपतवार हम निकालत तो हन, फिर चेत यहू करन कि ओकर कहूँ बीजा पाक गे होई और भाई ओहर तैयार हावे तो हमर खेत में झिन गिरे, फिर वही आखू जन औ बच्छा रही तो ओमह जागे के
1: मेरा जाम लेगो फिर हाँ।
0: तो ओकर अच्छा ही है कि वह हमन बेरा के पहली ओकर जन परिपक्वता का थे तेन आए के पहली हमन होला काट लेन और निकाल के जन बाहरी जगह में जन खाली जगह हावे मेड़ है ओमन वाला जला देवन,
1: जला भून देवन
0: है नहीं। और ऐसा होते कि हमन हमेशा यही बात के ध्यान देवन कि फसल ला हमन हा अदल बदल के लगावन, फसल चक्र ला अपनावन, अंतर्वर्ती और जन मिश्रित फसल है ओला लगाए के जन है जोर है वे हमन ओला देवन। कोनो भी फसल जब लगा था ना भैया, तो हमन हा रोग बीमारी कीड़ा मकोड़ा एमन मत लगबे करते, जब भी ऐसन कोनो भी प्रभावित पौधा मन दिखत है जेमा रोग राई हो गए है, ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा हुआ थे, कोनो फल है जेमा रोग हो गए है कीड़ा मकोड़ा दिखत है, पत्ती मन हम कीड़ा मकोड़ा या रोग राय दिखत है, तो ओ मन ल दूसर पौधा में झन फैले गई कि पहली ले हमन हा उखाड़ के ओला नष्ट कर लेवन, और नष्ट हमेशा खेत के बाहर में ही करन।
1: ये विशेष बात है, तो का होते कि ऐसा ये तो बहुत सुगर बात बता था, जैसे मिश्रित खेती कहान या अदल बदल के जिन अंतर्वर्ती खेती एकर से का होती उत्पादन में हमर जो बढ़ोतरी होती तो जरूर करना चाहिए। जैसे हमन अभी अभी खरीफ फसल में जैसे कोनो कहूँ मैं गेहूँ लगीस कि चना लगीस तो मैं कुछ और फसल लगा देस, अब जैसे बातें करन हम कि गर्म अभी गर्मी के दिन चलत है दे, अब कद्दू वर्ग की फसल है जैसे लौकी है करेला कोहड़ा है खीरा तरबूज खरबूज है तुरई है केकरी हवै गलका ये मैं सब अच्छा उत्पादन दे थे तेकर स्थिति ये फसल हमला कीड़ा मकोड़ा ला देखभाल के ओकर कीड़ा मकोड़ा के पहली ले हम निस्तारी कर लेवन, ऐसे करके हम एक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लेना चाहथन तो हम पहली ले कर तैयारी करन। और कीड़ा मकोड़ा के निदान के बर हम प्रबंध करन कि जैविक खाद के ज़्यादा उपयोग करन, ज़्यादा कीटनाशक के हम उपयोग झन करन, ज्यादा कीटनाशक के उपयोग करबो तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति तो हो ही तीन तो होबे करी, साथ में ओकर संग का है जी पर्यावरण के जो आवश्यक जो हमर तत्व है माने कृषि के तत्व है ओला पूरा वो नष्ट कर दी, तो ये कोशिश करन कि जब है ज्यादा जरूरत पड़े तभी हम माने ये कर कीटनाशक के रसायन कीटनाशक के हम उपयोग करन।
0: देख भैया ऐसे होते कि जब भी हम कीड़क निदान के बात करथन ना तो सबले पहले हमारे रसायन सोच डार

0: फिर रसायन ल नहीं सोचना है, पहली हमन समन्वित ढंग ले जौन है खेती किसानी ल क्षति हो जौन बचाना है, हमार जौन फसल है ओमा अगर कहूँ संभावना अगर पड़त है तभी रसायन के उपयोग ला करना है।
1: बिल्कुल,
0: सबले पहले हमन ल कीड़ा के नियंत्रण अगर करना है तो हमन अपन यांत्रिक जो नियंत्रण कथन तेन ला अपना लेवन। और यांत्रिक नियंत्रण ऐसे है कि हमन छोटे छोटे बात के जन पहली गोट करे हैं वही मन हावे जन ल चेत कर
1: ध्यान देना चाहिए, पहली ले देना चाहिए।
0: हाँ, समय में बोनी कर लेवन, बेरा राहत बोनी करन, रोग और कीट के जन सहनशील किस्म है उकर मन के चयन करन। कभू भी जब भी हमन बीजा बिसाए बर जाथन बाजार ले तो ओकर पहले यहो पूछ लेवन कि एमा कौन कौन से रोग राय हो सकते या नहीं होए, या एला कोनो सहनशील बना है का, कोनो चीज बर रहर अच्छा है का, ऐसे पहले पूछ लेवन। ओकर हिसाब ले हमन हा फिर ओकर बीज के चयन ल करन। खेत के हमन हा बेरा बेरा में जो है खरपतवार हटावत रहन, निराई गुड़ाई घलोक बहुत ज्यादा जरूरत है भैया। कोनो भी फसल जब निराई गुड़ाई करथन ना तो हमन ला हवा मिलते, माटी में जब हवा अच्छा मिलही तो हमार फसल के जड़ ला अच्छा हवा मिलही, अच्छा हवा होगी तब हमार फसल के बढ़वार अच्छा हुई, और अच्छा बढ़वार यानी कि उत्पादन अच्छा। सिंचाई जो है फसल के जो जल मांग है, जल कभू कभू कथन कि अलग अलग फसल में क्रांतिक अवस्था होते है, जिन बेरा में हमन अगर कहूँ पानी ला समुचित रूप से अगर देथन, अगर अच्छा से ओकर उपयोगिता के हिसाब से देथन, ओकर जरूरत के हिसाब से देथन तो बड़ उपयोग के हावे, ओला ध्यान देवत हमन हा सिंचाई करन। और जन सिंचाई के जन साधन है इमन में यहू ध्यान देवन कि भाई निकासी घलोक हमन हा अपन व्यवस्था पहले बना
1: लेना ताकि पानी निस्तारी आराम से हो जाए।
0: काबर ऐसे होते हैं कि जब खेत में या हमार फसल करा जब पानी मारते तो हमार फसल नुकसान पहुंचाते।
1: बिल्कुल,
0: तो एक ले हमन हा बाचन पौधा और जो फलदार हावे सब्जी भाजी आने को चीज या पत्ती है ओमन में अगर कहूँ कीड़ा दिखत है तो ओला हटा के नष्ट कर लेवन। ये छोटे छोटे बात है जिला मन ध्यान देवो तो पहली ले कीड़ा मकोड़ा मन के नियंत्रण हो जाए।
1: पहली ले कीड़ा मकोड़ा दर्शक पहली हमला ये चेत रखना चाहिए ताकि हुआ भी तो इतने ज़्यादा मत हुए। कीड़ा लग इसे नष्ट करे पर खेत में बीच बीच में पीला चिपचिपा पीला प्रपंच, नीला प्रपंच ट्रेप के उपयोग करन, प्रकाश प्रपंच, सुगंधित प्रपंच जिला फेरोमोन ट्रेप कहे जाते ओला लगावन। एकर लगाए लागत कम और कीड़ा के निदान ज़्यादा होई एकर से, और जेन कीड़ा ला पकड़ के हाथ से नष्ट करे जा सकते ओला ये तरीका ले नष्ट करना चाहिए। खेत के बीच बीच में जैसे टी आकार के ये चिरई मन के बैठे के अंग्रेजी टीरी थे, अब हम सीधा सीधा कहाँ थे पहली सब्जी भाजी लगावे तक खेत खलिहान मन में हमारे सियान मन लगावे काक भगोड़ा, हाँ ढेखरा गड़ावा या काक भगोड़ा, तो का करना हमला ज़्यादा कोई नया तकनीक नहीं लाना है। एक ठन लकड़ी टी आकार के अंग्रेजी टी आकार के रख देन, ऊपर में पोतली या कसेली मल्ला रख देन, और टूटे चिरा फटा जन कपड़े तला टांग देन। ओकर से ये होते कि चिड़िया बनावे नहीं, ये सोचते कि कोनो रखवार बैठे का, ऐसे चिड़ई चुरगुन मल्ला आभास होते, तो ये ला हम काक भगोड़ा ला हम ये अपना सकथन।
0: टी आकार के खूटी एकरो बार जरूरी भैया कि जन कतको कन हमार मित्र जो मित्र कीड़ा है वहू मन आते संग चिरई चुरगुन मन घलो हमार फायदा के हवे। चिरई चुरगुन रही तो हर भाई बैठी हमार कीड़ा मन ल खही तो ओकर ले घलो कतको कन निदान हो जाते। जैविक जो कीटनाशक हावे जिसे निमास्त्र है ब्रह्मास्त्र है ये मन ल बना के उपयोग करन। हमार आस पास में कतको कन जिनिस मन मिल जाते कमती कहान की सामान हमला लगते और कमती सामान में और हमारे आसे पास के जो जिनिस तेरे मन में हमन ला बना के उपयोग कर सकथन। नीम के तेल ला हमन पानी में थोकन मिला लेन ओकर छिड़काव करन तो एकरो ले घलो कीड़ा मन के नियंत्रण हो जाते। कतको अकन हमारे मित्र कीट आवे जे मन ला फसल नुकसान करे जो कीड़ा है ना वो मन ला खाते, मन हमन मित्र कीट घलो कथन वो मन ला हमन ला बढ़ाए बर उद्यम करना चाहिए। और जब ये मन बाढ़ी तो हमार छोटे छोटे जो नुकसान करिए कीड़ा हवे ते मन नष्ट हो
1: नष्ट हो क्या है किसान के मितान तो बहुत होते जैसे कि जैसे केचुआ उछुअल के ना है ना मिट्टी शिथिल करते भुरभुरा बनाते, वैसे हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं गेंगरुआ बहुत सूक्ष्म होते मिट्टी में से नहीं देख सकन। ऐसे हमारे मित्र जो पशु पक्षी है चिड़ै चुरगुन है वही हमारे पर्यावरण में बहुत हवे तो ओकरो ध्यान रखन और जम्मो उपाय ला अपनाए लेवन। फिर जब फसल नुकसान हर बहुत ज़्यादा जरूरत है थे फसल के जब हम ये बचाना है जेमा फसल क्षति स्तर ओखर ले ज़्यादा पार हुआ संभावना है तब बाजार में बहुत अकन सुरक्षित दवा हबे जेकर हम छिड़काव हमन विशेषज्ञ मन के सलाह से करन। लेकिन हमार पर्यावरण ला बचावन और ऐसे छिड़काव करन जेकर से पर्यावरण ला ज़्यादा क्षति झन पहुँचे जिसे हमन अभी गोठियाते रहन है ना। सब्जी के उपयोग हमन ला दवाई के असर में ज़्यादा ये करना नहीं चाहिए। इसका बर सब्जी में ज़्यादा उपयोग करबे तो काय ओकर प्रभाव हर रही थे जिन हमार खाद्यान्न में आते और हमारे शरीर में आते, तो एकरो हमला पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए।
0: देख भैया कुल मिला के कहान तो भाई कि पहली रोकथाम करन फिर ओकर बाद दवाई के उपयोग करन, यही हावे समन्वित कीट प्रबंधन जेकर ले हमने सबले बढ़िया तरीका गलो कहा था। सुन संगी हो गोड़ बात करबो फिर अभी सुन लेथन ये संदेश।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: सतीश भैया,
4: हाँ हाँ भैया,
3: आज के जन बेरा है ना भैया, ओला देखा था मन कहान की पर्यावरण के जन संरक्षण है ओकर करे के उदिम हवे
4: बहुत भाई,
3: और पर्यावरण के संरक्षण अभी ले करत हन तो जब देखता ना मन है कि जलवायु परिवर्तन है पल पल में होत रहते,
4: बिल्कुल
3: ओ मन है बाछी और पूरा दुनिया भर में बड़कन समस्या घलो आगे है जलवायु परिवर्तन ले, ये सबले बड़े समस्या बन गया हवे। पृथ्वी के जन तापमान है वह दिनों दिन बढ़त हवे, ऐसे हमन देखत घलो हवन, आजे देख लेना घाम कत्ती खावे, एक कनक बाहर निकलथन तो चरचल ले जरथे घलो, तो एकल बाँचे बर ही हवे कि हमन हा पर्यावरण के संरक्षण के उद्यम करन, जेकर सेती मौसम के संतुलन ह बिगड़त घलो जात हवे तेला बाँची, और एकल सबले बड़े अगर कहो कारण हवे तो वो हवे प्रकृति मन में जम्मो जिनिस मन के जन हवे ना भैया ओकर हमन जरूरत ज्यादा उपयोग करत हवन, प्रदूषण ज्यादा फैलात हवन, अब पेड़ हवे तो पेड़ के अंधाधन उपयोग है, कोनो भी संसाधन है तो संसाधन मन के अंधाधन उपयोग है, तो उपयोग तो करना है फिर अतिकरण की पर्यावरण के जो संतुलन है वो बने रहे, प्रदूषण फैले ले बाँचे।
4: तेजेश्वर भाई बहुत सुगर गोट कहा था, कोई भी चीज के हम देखते हैं तो भाई सीमा रित है क्षमता रित है ना, पर्यावरण इस पहले कतेक हरियर हरियर रहा है और ठंडकता रहा है, उसने बरसात होए और गर्मी के दिन घलोक रहा है ना तो ज़्यादा अतिक जाना नहीं व्यापे नहीं, अब का होते पेड़ झाड़ कट गए तो जम्मू डार हरहर हरहर मार घर ले निकले तो 7 बजते सूरज नारायण उठे तो हम कोनो मेर आ जा नहीं सकच, तो ऐसे हो गए एकावर हुआ थे असंतुलन हुआ थे, हम आज प्रकृति में हस्तक्षेप करत हन जो नकर नियम हवे ओकर विरुद्ध हम ये करत हन तो एक प्रतिक्रिया हमला नकारात्मक प्रतिक्रिया मिले थे, और जलवायु परिवर्तन हो के सबले बड़े कारण है कि पेड़ के अंधाधुंध कटाई, कारखाना और गाड़ी मोटर के निकलिया जो धुआं है कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड निकला थे ये जगह जगह हर जगह हुआ, तो प्लास्टिक के उपयोग है ओकर लिए प्रदूषण फैला थे, वो प्राकृतिक संसाधन जरूरत से ज़्यादा हम करे पड़ी कर संरक्षण करे पड़ी इस प्राकृतिक जो संसाधन, तभी ये चीज़ से हम बच पाबो और अपन नाक सुरक्षित कर रह पाबो और हमारे जो भविष्य है हमारे जो पीढ़ी है उल हम अच्छा खुशहाली जीवन दे सकते हैं।
3: देख भैया अभी प्लास्टिक का हाथ रहना तो प्लास्टिक ऐसा उपयोग करन जेला हमन ह घेरी बेर उपयोग कर सकन, एक के बेर उपयोग करे वाला प्लास्टिक जन को उपयोग
4: नवीनीकरण ओकर होए ऐसे
3: ओकर का होत है कि बस वो प्रदूषण ही बस बढ़ाते, और भाई ओला उपयोग करत रहो तो हमर आगू उपयोग होत रही, तो घेरी बेरी उपयोग कर रही है तो बने हैं, फिर कम से कम एक घाव उपयोग वाला प्लास्टिक ले तो बाँचना है, और सबसे ज्यादा जरूरी हावे कि हमन जब जलवायु का प्रभाव देखथन ना तो तापमान बढ़त है, बाढ़ सूखा ऐसा जन जिनी से अमन देखे ब मिलत है, तूफान है, प्राकृतिक आपदा है, ये मन आत हवे, तो ये सब चीज हावे भैया जिन हमन देखा था, हमन सुनथन सुग्गर अकन गीत जिन स्वर देत हावे अलका चंद्राकर हर।

0: सुघ्घर गीत सुनत रहें अलका चंद्राकर और संगवारी मन के स्वर में।
1: और अब समय हवे क्रम आज की सलाह जिकर विषय हवे दुग्ध प्रसंस्करण एवं प्रबंधन। विशेषज्ञ है डॉक्टर सारंग दिलीप पोपली, सहायक प्राध्यापक दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। गोट बात करत हवे तेजेश्वर साहूमन।
2: संगवारी हो, खेती किसानी के संगे संग एकर ले जोन जुड़े डिगर व्यवसाय होते ओला करके हमन हा बढ़िया रोजगार के संगे संग अच्छा आमदनी घलो कमा सकथन। और आज हमर यही विषय हवे कि जोन दूध के प्रसंस्करण है ओला कोन ढंग ले करन और संगे संग ओकर प्रबंधन कैसे ढंग ले करन, ए विषय में सुघर जानकारी दे खातिर आज हमर संग उपस्थित है विशेषज्ञ डॉक्टर सारंग दिलीप पोपले जी। आप सहायक प्राध्यापक हो दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर ले। डॉक्टर साहब, सबले पहली हमर आज के कार्यक्रम में आपके स्वागत है। राम राम।
3: राम राम आपके सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम।
2: डॉक्टर साहब, सबले पहले ये बताते हो कि ये जो दूध के प्रसंस्करण हमन कहथन वो का होते।
3: शुरुआत में बताया कि भाई कृषि के साथ साथ दुग्ध व्यवसाय एक बहुत आमदनी का बहुत अच्छा जरिया है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो दूध एक ऐसा उत्पाद है कि जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, किसी भी मौसम में हो, गर्मी में खासतौर बहुत जल्दी ये दूध का फटने का की समस्या आती है। तो हम लोग को दूध को सही तरीके से रख रखाव करना, उसका प्रसंस्करण करना, उसको सही तरीके से पैकेट बनाना उसका और उसको बेचना,
2: हाँ।
3: ये सब पूरा प्रसंस्करण में आता है। तो उसको गर्म करना, उसको ठंडा करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, तो ये इस सारे को हम एक साथ प्रसंस्करण शब्द में मानते हैं
2: जी। और ये बताते सर कि जैसे हम दूध के प्रबंधन करना चाहथन, ओकर रख रखाव करना चाहथन, कौन कौन से जोन तरीका है ओला अपनान या कौन कौन से जोन सावधानी है ओला बर्तन एला बताते हो
3: जी। तो तेजस भाई, ऐसा है कि जब हम दूध के प्रसंस्करण की बात करते हैं तो हम प्रसंस्करण से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि दूध का उत्पादन अच्छा हो। क्योंकि आप एक चीज को हम किसान भाइयों को सबको समझना चाहिए कि अगर उत्पाद अच्छा नहीं है तो जो इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है, जो हमारा प्रोडक्शन के प्रोसेसिंग के बाद प्रसंस्करण के बाद जो चीज बनेगी वो अच्छी क्वालिटी की या अच्छी गुणवत्ता की तब तक नहीं हो सकती जब तक उसका जो कच्चा माल है वो अच्छा ना हो। तो कच्चा माल जो है हमारा, कच्चा दूध जो है यहाँ पे, उसकी गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसकी गुणवत्ता हमें अच्छी करने के लिए क्या जरूरी है कि भाई हम गाय का अच्छा रखरखाव करें, जो भी हमारा गाय भैंस है दोनों का अच्छा रखरखाव रखें, उसको बहुत साफ सुथरे ढंग से रखें, वो जहां आप उसको बाड़े में रखते हैं, किसी फार्म में रखते हैं, उसकी सफाई अच्छे से करें, जो हम दूध निकालने की जो प्रक्रिया है, दूध धोने की जो प्रक्रिया है, उसको बहुत अच्छे सावधानी से बरतें। क्योंकि अगर जानवर को चोट आ गई या कुछ हो गया तो उसमें इन्फेक्शन फैल जाएगा और फिर वो इन्फेक्शन दूध में भी आएगा
2: जी।
3: तो एक तो हुआ हमारा दूध उत्पादन के समय पे, उसके बाद जब एक बार दूध उत्पादन हो गया है उसके बाद हम उस दूध को लेके आएंगे अपने डेयरी प्लांट में या फिर अपने जो जहां आप दूध का प्रसंस्करण करते हो, तो हम उसको डेयरी प्लांट बोलते हैं जब वो बड़े साइज का होता है, और अगर छोटा है तो हम उसको प्रोसेसिंग यूनिट की तरह बोल सकते हैं
2: जी।
3: तो हम क्या करते हैं, एक बार यहां दूध आने के बाद सबसे पहला काम होता है हमारा इसको ठंडा करना, क्योंकि प्रसंस्करण में सबसे जरूरी है दूध को जल्दी से जल्दी ठंडा कर देना, क्योंकि दूध में बहुत सारे जीवाणु होते हैं। अगर ये जीवाणु जैसे ही गर्मी में इनको अच्छा टेम्परेचर मिलता है तो ये बहुत जल्दी ही बढ़ना चालू करते हैं, और जैसे ही ये बढ़ना चालू करते हैं बहुत तेजी से दूध को खराब करेंगे। तो दूध में ये लैक्टिक अम्ल बनाएंगे जिसको हम लैक्टिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये लैक्टिक एसिड दूध के फटने का कारण है। तो एक बार दूध फट गया तो फिर हमारे किसी काम का नहीं, और अगर दूध फटने की प्रक्रिया चालू हो गई है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा सबसे सावधानी इस बात की रखनी चाहिए कि शुरू में ही हमें वैसी सावधानियां बरतनी है कि दूध फटे ही ना, अम्ल ना बने उसमें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले है कि दूध को स्वच्छ दूध उत्पादन करें, दूसरा है कि हम दूध जैसे ही उत्पादन हुआ है दूध का, गाय ने जैसे ही दूध दिया है, हम उसको तुरंत से तुरंत उसको ठंडा कर लें। क्योंकि कई बार आपको जो उत्पाद बनाने हैं, खोआ बनाना हो सकता है या फिर रबड़ी बनानी हो सकती है, दही या जो भी आपको उत्पाद बनाने हैं, उन उत्पादों के बनाने में हो सकता है समय लग रहा हो, तो हम उस समय की जो तैयारी में जो समय लगता है उस समय में दूध को खुला ना छोड़ें बाहर। हमारा पहला ये ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को कि उसको दूध को ठंडा करने के लिए रखते हैं। फिर ठंडा करने के बाद जैसे जैसे आपको, अगर आपको लंबे टाइम के लिए रखना है दूध, लंबे समय के लिए उसको रखना है, तो उसको एक बार गर्म कर लें और फिर वापस ठंडा कर लें। तो इसको हम टेक्निकल भाषा में, हम इसको तकनीकी भाषा में इसको हम पैश्चराइजेशन कहते हैं। तो हम जो दूध को जो गर्म करते हैं वैसे तो 70 या 72 डिग्री पर गर्म करना होता है 15 सेकंड के लिए, बट ये जब मशीन से करते हैं, जब आपके पास इतनी मशीन ना हो तो हम उसको गैस पे भी उबाल सकते हैं सिर्फ, और उबाल के ठंडा करके हम उसको फ्रिज में रख सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब जी से भी बतात रहे हो और हमारे कतको संगवारी मन के मन में इसे गलो रहते हैं कि भाई दूध के हमन हम प्रसंस्करण करथन या कोनो ला उत्पाद बनाथन तो ओकर ले हमन ला का लाभ आवे और हमन हा कतिक कमा सकथन। ज्यादातर किसान साथी मन हा ओला कच्चा बेचना पसंद करते, काबर ओमे कमती खर्चा हवे और ओकर ले लाभ बढ़िया मिल जाते, अपन सामान्य जन बाजार है उमन में बेच पाते
3: जी,
0: तो एला बताते हो कि हमन ला ओम का लाभ हो सकता।
3: देखिए आपका ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो दूध का उत्पादन कर रहे हैं एक तो किसान भाई मन अपने घर पे ही अपने परिवार वालों के लिए भी उसको पीने के लिए और अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, ताकि परिवार के सारे जो जितने भी हमारे किसान भाइयों के परिवार हैं उनका पौष्टिक जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें। दूसरा हम उसको बेचते हैं मार्केट में, तो जब हम मार्केट में बेचने जाते हैं तो एक दो तरह से बेचा जाता है दूध को। एक खुला दूध बिकता है जिसको हम घर घर जाके, आपका जो दूध वाला है वो घर घर जाके बेचता है जैसे, ठीक है
0: जी।
3: दूसरा होता है हम इसको कंपनी में दे दें, या फिर जो बड़ी कंपनीज होती हैं जो अमूल जैसी हुई या फिर देवभोग जो हमारी छत्तीसगढ़ की कंपनी है, तो ये हर किसान भाइयों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध लेके इसको इकट्ठा करके फिर इसको इसका दुग्ध संयंत्र द्वारा प्रसंस्करण करके इसको बेचा जाता है
0: जी।
3: अगर हम किसान भाइयों को ही इस संयंत्र लगाना है या छोटे छोटी क्वालिटी का अगर संयंत्र लगाना, छोटे साइज का अगर संयंत्र लगाना है तो हम बहुत सारे तरीके हैं जिससे ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाई। वो क्या क्या तरीके हैं? एक हो सकता है कि आप अलग अलग तरह के उत्पाद बनाए। आप खुला दूध तो बेच ही सकते हैं, पर खुला दूध में क्या होता है कि जो हमें मार्जिन मिलता है दूध का, वो जो प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है, वो बहुत कम होता है। ये बात सही है कि वो एक घंटे दो घंटे में आपका काम निपट जाता है, पर इससे जो मुनाफा होना है वो बहुत लिमिटेड होता है। पर जब अगर हम इस चीज को अगर हम प्रसंस्करण कर लें या फिर उसका संवर्धन कर लें किसी तरीके से, तो हम अलग अलग उत्पादों में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत उदाहरण के लिए तहत बताऊं, तो अगर आप एक लीटर दूध अगर मार्केट में बेचते हैं तो उसकी कीमत आपको 50 रूपये से लेकर 80 रूपये तक आपको दूध बेचा जा सकता है। अगर मैं दही की बात करूं तो अब आप सोचिए कि दूध को दही बनाने के लिए हमें कोई खर्चा आता ही नहीं है, सिर्फ जामन डालना होता है। अगर आप सोचिए कि आप और थोड़ी देर के लिए रखना होता है 7-8 घंटे के लिए, तो अगर हमने रात को दूध निकाला है, रात को उसको गर्म करके ठंडा करके उसमें जामन डाल दिया, सुबह तक अगर वो दही बन जाता है, तो अब आप सोचिए आपका पैसा कुछ भी नहीं लगा, पर आपका जो दूध की जो दही की कीमत है वो दूध से लगभग दुगनी है। आपको वही जो दूध आपने 50 रूपये में बेच रहे थे वो आप बिना किसी खर्चे के अब आप उसको 90 रूपये 100 रूपये के आसपास किलो में बेच सकते हैं दही को। तो आप सोचिए कि आपने बिना कुछ किए जब 50 रूपये का मुनाफा कमा लिया, तो क्यों ना हम अलग अलग तरीकों से प्रसंस्करण करके कमाएं खुला दूध बेचने के। तो अब आप क्या क्या बना सकते हैं, जैसे हमने बात की दही बना सकते हैं, फिर हम खोआ और खोआ से बनने वाली जो विभिन्न प्रकार की मिठाइयां हैं जिसमें रसगुल्ला हो गया, रसमलाई हो गई, अन्य प्रकार की जो मिठाइयां बन रही है, इनमें किसान भाइयों अगर इनको बनाने का काम चालू करते हैं तो इसमें बहुत मुनाफा होता है। और ये इतना लाभ देगा कि आप जो खुला दूध बेचते हैं उस अगर हम उसके कंपैरिजन में देखें तो बहुत ज्यादा मुनाफा भाई लोग कमा सकते हैं हमारे
0: जी। डॉक्टर साहब एक ठनऊ बात आते है कि जब कतको गण संगवारी मन है जिकर मन कर दूध उत्पादन तो होबे नहीं करे और वो मन हर थे बाजार ले दूध खरीदते है नी, तो वो संगवारी मन के मन में एक ठनऊ संकर थे कि भाई हमन जे चीज ला खरीदा था वो बने है कि नहीं है, कोन्हो नकली ढंग ले या फिर कोन्हो मिलावट वाला जिनिस तो नहीं मिलत है, ये डर में घलो कतको जन संगवारी मन डर्रात रहते। तो एक हमन कोन्हो ढंग ले पहचान कर सकथन का, एक पहचान करे के कोन्हो तरीका है का, एला बताते हो
3: जी। जी ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा, मैं इसलिए भी इसको महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि ये हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। अब आप सोचिए कि हम जो खा रहे हैं, हम अपने बच्चों को जो खिला रहे हैं, अगर मिलावटी सामान खिलाएं कोई भी, तो हमारे जो सेहत के ऊपर बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो खा रहे हैं वो शुद्ध हो। पर शुद्धता कैसे पता चले किसी उत्पाद की? तो एक तो होता है जो अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं तो जो होता है एक जिसको हम इंग्लिश में ब्रांड कहते हैं, कि जो बड़े दूध उत्पादक ब्रांड होते हैं जो प्रसंस्करण में बहुत अच्छी गुणवत्ता नियंत्रण को नियमों का पालन करते हैं, तो जब ऐसे तरीके से दूध के उत्पाद बन के आते हैं तो हम बहुत हद तक इस चीज को गारंटी मान सकते हैं कि इसमें कोई मिलावट नहीं हुई होगी, शुद्धता का और इसका पूरा ध्यान रखा गया होगा बनाते समय। अब बात होती है खुले दूध उत्पादों की जो हमें मार्केट में मिलते हैं। अगर आप जो हमारे त्योहारों का जो मौसम होता है, जैसे दिवाली का टाइम आ गया या होली का टाइम आ गया, उस टाइम पे जो मिठाइयां मिलती हैं हम उनमें अक्सर सुनते हैं कि उसमें कोई मिलावट है, खोए में कोई कुछ थोड़ा मिला देता है या फिर कोई स्टार्च मिला देते हैं, तो ये चीजें तो बहुत हद तक मार्केट में चलती हैं। तो हमें क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहले सबसे पहला जो हम बोलते हैं कि भाई अगर आप कोई भी मिलावट करोगे, कोई भी केमिकल मिलाते हैं आप या कुछ भी ऐसा मिलाते हैं, तो उसमें उसका जो किसी भी उत्पाद का जो अपना एक प्राकृतिक जो उसका टेस्ट होता है, जो उसका स्वाद है, उसकी जो खुशबू है, उसमें कहीं ना कहीं तो बदलाव आ जाता है। तो एक जो तरीका हो सकता है कि हम उसको अच्छे से थोड़ा सा उसको चख के देखें, थोड़ा सा उसको सूंघ के देखें और देखें कि भाई ये अच्छी दुकान से खरीदा गया है। अगर हम इन सब बेसिक चीजों का ध्यान रखें, मूलभूत चीजों का ध्यान रखें, तो हम देख सकते हैं। बट मिलावट को ऐसे पहचानना हर बार नहीं किया जा सकता। तो जब हम मिलावट की बात करते हैं तो कई बार हमें उसके लिए लेबोरेटरी में उसकी जांच करनी पड़ती है। तो लेबोरेटरी में जांच करने के लिए आपको बहुत सारी किट मिल जाएंगी, या फिर आप हमारे विश्वविद्यालय में भी इसका संपर्क कर सकते हैं, हम आपको उसमें भी सहायता कर सकते हैं, जो किट के केमिकल्स होते हैं वो कैसे इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और फिर आप इन किट्स को इस्तेमाल करके जो दूध में जो किसी भी दूध या दूध उत्पादन में जो मिलावट की जाती है उसकी हम तुरंत जांच कर सकते हैं, इसमें कोई

0: टाइम नहीं लगता और बहुत खर्चा भी नहीं है इसमें।
1: एक ठन और बात रही सर की जैसे हमन हा डिब्बा बंदी जो दूध आते आजकल या आने उत्पाद आते वो मन हर हमारे स्वास्थ्य पर कतिक अच्छा माने जाते और का विशेष ध्यान हमन देना चाहिए जेकर ले हमन ओकर उपयोग करन तो हमारे स्वास्थ्य पर रोग बीमारी झन आए।
0: जी जी, वो पाउच में भी मिलता है और एक डिब्बे के आकार में जिसको हम टेट्रा पैक कहते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको तरल जो पदार्थ होते हैं वो आपको टेट्रा पैक में मिलते हैं। तो ये जो डिब्बा बंद जितनी भी चीजें हैं, अब प्रश्न ये आता है कि क्या ये हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। तो एक बात तो हम बहुत विश्वास से कह सकते हैं कि जो डिब्बा बंद सामान मिलता है हमें उसकी पूरी उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है और उसके उसके ऊपर अलग अलग तरह के टेस्ट लगाए जाते हैं और उसके बाद ही उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो हम लोग ये तो आश्वस्त रहते हैं कि भाई इसमें अलग अलग तरह के जो कीटाणु, क्योंकि प्रसंस्करण के टाइम पे जितने भी कीटाणु होते हैं या जीवाणु जो उसमें आ रहे हैं, उन जीवाणुओं का हम प्रसंस्करण के समय उनका पूरा नाश कर देते हैं। तो ऐसा करने के बाद ये पदार्थ जो है हमारे खाने के लिए सेफ हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं
1: जी।
0: तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप आपको अगर बहुत ताजा उत्पाद मिल रहा हो कहीं पे तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए
1: जी।
0: बट इसमें आपको जो हमारे श्रोतागण है उनको इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर आपका विश्वास है किसी जगह पे कि भाई यहाँ पे अच्छा दूध मिलता है, साफ सुथरे उत्पाद मिलते हैं, तो अच्छी बात है। पर ये आप हमेशा गारंटी नहीं कर सकते इस चीज की। तो हम लोग को डिब्बा बंद सामान पे जाना ही पड़ता है कई बार। तो जब डिब्बा बंद लें तो बस कुछ मूलभूत चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि हर पैकेट के ऊपर, आप कोई भी पैकेट खरीदें दूध का या खोए का, खोए तो नहीं मिलेगा आपको, पर दूसरी जो चीज रसगुल्ला हो गया, गुलाब जामुन हो गया, जो पैकेट में मिलते हैं, डिब्बे बंद में मिलते हैं, उसके ऊपर उसके उसका एक्सपायरी डेट जिसको हम कहते हैं कि भाई उसको कब तक इस्तेमाल किया जाता है, कब तक खाया जाता है। किसी पे हो सकता है 2 दिन लिखा हो, किसी पे हो सकता है महीना भर लिखा हो। कुछ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको 6-6 महीने 9-9 महीने तक खाया जा सकता है, वो खराब नहीं होते। तो आप ये ध्यान रखें हमारे जितने भी श्रोतागण है कि भाई डिब्बे के ऊपर जानकारी लिखी होती है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है।
1: डॉक्टर साहब बहुत सुघर अकन जानकारी हमारे संगवारी मतलब देव, ये जानकारी खातिर आप ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद तेजस भाई, आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: क्रम आज की सलाह अभी सुनत रहें। विषय रिसाब है दुग्ध प्रसंस्करण एवं प्रबंधन। विशेषज्ञ रिसाब है डॉक्टर सारंग दिलीप पोपली, सहायक प्राध्यापक दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। और गोट बात करते हैं हवे तेजेश्वर साहू।
3: हाँ संगी हो, हेलो किसान वाणी ले जुड़े सूचना हवे। मंगलवार 26 मई 2026 के जन प्रसारित हो या हेलो किसान वाणी के विषय हवे वो ए बारी हवे खरीफ पूर्व कृषि यंत्र मन के रख रखाव और ओकर संबंधित योजना। ए विषय में आप मन के जतिक भी समस्या है, जिज्ञासा है, एकर समाधान भर हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हो ही डॉक्टर विनय कुमार नायक, सहायक प्राध्यापक है मन कृषि अभियांत्रिकी कृषि विज्ञान केंद्र पहादा दुरुगमा। आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए भर हमें फोन कर सकत हो। हमार फोन नंबर हावे 400-3482, 400-3483, 400-3484 और रायपुर के स्टडी कोड हावे 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग हर 26 मई 2026 के बिहनिया 11:30 बजे ले 12 बजे तक करे जाही। ये कार्यक्रम के प्रसारण उही दिन मंगलवार के ही संझा बेरा 7:30 ले करे जाही। हमन लाप मन के फोन कॉल के अगोरा रही संगी हो, सूचना ही मेर सिरावत है।
2: अब बेरा हवे कृषक प्रश्न मंच के प्रश्न हवे, दुग्ध प्रसंस्करण ले कौन कौन से जिनिस या उत्पाद बनाए जा सकते, एकर सही जवाब हमर तीर एक हफ्ता के भीतर भीतर पठोड़ हो संगी हो, जेखर बर पता भाई राई आज के प्रश्न 23@gmail.com। बता देवन पाछू हफ्ता पूछे प्रश्न सही जवाब। पाछू हफ्ता प्रश्न रही साबे व्हाइट क्ले औ टैग फार्मुलेशन का होते, एकर सही जवाब है पौधा ला तेज धूप ले बचाए खातिर एकर छिड़काव पौधा में करे जाते। और सही जवाब भेजिया संगवारी मन के नाम बता देते जसोर भाई।
3: भीमेतरल हावे सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी, बठेना पाटन जिला दुर्गले है बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा पार्थ कश्यप, उमेश धनेश्वरी वर्मा, बंटी और बबली वर्मा, लोरमी ग्राम चचड़ी ले है कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी। संगी हो सही जवाब भेजे हो, एक गाढ़ा गाढ़ा बधाई। और भैया सुग्घर गीत सुन लेथन जिनला स्वर दे थावे प्रकाश देवागन माया खापर डेहर दे।

0: अभी सुनिन ये सुघर गीत ला जिला स्वर देवत्री सबै प्रकाश देवांगन और माया खापड़े मन।
1: हाँ सतीश भैया, संगी मन सन गोड़ बात करत बेरा हो गए जाए के।
0: हाँ भाई,
1: तो जाए के पहले बता देते काली के कार्यक्रम। काली संजा बेरा चौपाल मोही आज के बात के संग फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवानी। एमा विषय हवे खरीफ पूर्व कृषि यंत्र मन के रख रखाव और संबंधित जन योजना है एकर मन के बारे में। संगी हो देव विदा कार्यक्रम सुनैया जतिक संगी मन विदा लेथन भैया। तेजस्वर साहू आऊ
0: सतीश कुमार यदु के
1: राम राम, राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजे हैं, आइए सुने चित्रपट संगीत।

0: प्रेम कहानी। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देवबर्मन का संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम। का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में। माया गोविंद के लिखे गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म का नाम है पिघलता आसमान।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

सुरेश वाडकर और नितिन मुकेश को आपने सुना फिल्म चांदनी में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया था शिव हरि ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं तापसी नागराज। इनकी आवाज में पहले सुनिए दुष्यंत कुमार की रचना

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। कलाकार थीं तापसी नागराज। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने किया जीत के साथ प्रतियोगिता का आगाज, जियोवानी पेरिकार्ड को हराकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। खेल क्षेत्र में 9 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। ओशोनिया चैंपियनशिप में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 5 पदक जीते। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता जारी। ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप कल से जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित किया जाएगा। और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट आज से शुरू, डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा भारत का नेतृत्व करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुश्ती से, जहां वियतनाम में आज भी भारतीय कुश्ती पहलवानों का जो है लगातार पदक जीतने का सिलसिला जारी है। वियतनाम के दनांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय तानाजी धीरे और विक्की ने स्वर्ण पदक जीते। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय तानाजी धीरे ने यलमन अमान गिल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में विक्की ने शिरजोद पोयोनो को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विरोधियों को पटकनी देते हुए देश के लिए कई पदक अपने नाम किए। बचे हुए मुकाबलों में इन खिलाड़ियों से पदकों की संख्या बढ़ाने की पूरी उम्मीद है। सीधे चलते अब चर्चा करते हैं फ्रेंच ओपन पर। रोलैंड गॉरेस फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने प्रतियोगिता का आगाज जीत के साथ किया है। जोकोविच ने कड़े मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए फ्रेंच के खिलाड़ी जियोवानी

0: पेट्सी पेरिकार्ड को हराकर पेरिस में दूसरे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली।
1: 39 वर्षीय नोवाक जोकोविच ने लगातार 82वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में जगह बनाई है। इसके साथ ही उन्होंने रॉजर फेडरर और फेलिसियानो लोपेस के साथ साझा किया गया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब जोकोविच का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रिकॉर्ड 80 जीत और सिर्फ दो हार का हो गया है। नोवाक जोकोविच 2006 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद से किसी भी ग्रैंड स्लैम का पहला मैच नहीं हारे हैं। पेरिस में फ्रेंच खिलाड़ियों के खिलाफ उनका अब तक का रिकॉर्ड 13-0 है। पहले सेट में नोवाक जोकोविच को पेरिकार्ड की शानदार सर्विस के सामने एक भी ब्रेक पॉइंट नहीं मिला। फिर फ्रेंच खिलाड़ी ने जोकोविच की सर्विस तोड़ दी और सेट जीत लिया। इसके साथ ही वह 14 साल में पेरिस में जोकोविच से एक सेट जीतने वाले पहले फ्रेंच खिलाड़ी बने। इसके बाद जोकोविच ने पेरिकार्ड को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और 2 घंटे 51 मिनट तक चले मुकाबले में 5-7, 7-5, 6-1 और 6-4 से जीत दर्ज करते हुए दूसरे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
0: प्रतियोगिता में जहां नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जैसे प्रतिष्ठित खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आ रहे, वहीं कार्लोस अल्काराज चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गए। अगर हम भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदगी भले ही इस प्रतियोगिता में सीमित हो, लेकिन आने वाले दिनों में पेरिस की क्ले कोर्ट पर करोड़ों भारतीय निगाहें यूकी भांबरी, श्रीराम बालाजी और जूनियर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 2026 के लिए 9 पुरस्कार खेल के क्षेत्र में वितरित किए गए। टेनिस में विजय अमृतराज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, वहीं पद्मश्री पुरस्कार क्रिकेट में रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को दिया गया। वहीं हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया और हॉकी कोच बलदेव सिंह को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को ऊंची कूद में पद्मश्री पुरस्कार मिला, जबकि भगवान दास रैकवार को मार्शल आर्ट्स में और के पजनीवेल को सिलंबम में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा कुश्ती कोच व्लादिमीर मेस्त्रिस्ल्वी को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
2: सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर खेल क्रिकेट, श्री प्रवीण कुमार खेल एथलेटिक्स दिव्यांग, श्री के पजानीवेल खेल सिलंबम।
0: समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और एचडी कुमार स्वामी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। बात कर लेते ओशेनिया चैंपियनशिप में, जहां कल भारत ने कई पदक अपने नाम किए। जापान में आईएयू 24 एच एशिया और ओशेनिया चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 5 पदक जीते, वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत इवेंट में क्लीन स्वीप किया।
3: भारतीय पुरुष टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत पोडियम पर कब्जा किया और कुल 815 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय करके टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। 23 से 24 मई तक 24 घंटे की कड़ी रेसिंग में टॉप अल्ट्रा रनर्स ने अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार किया। अमर सिंह देवंदा ने करीब 283 किलोमीटर की शानदार दूरी के लिए 226 लैप पूरे करके स्वर्ण पदक जीता। वहीं गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया। मेजबान देश जापान ने मासाकी मोतो की अगुवाई में टीम स्पर्धा में सिल्वर अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक पर कब्जा किया। महिला वर्ग में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। जापान की मीहो नाकाता ने 261 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए व्यक्तिगत गोल्ड मेडल 20 किलोमीटर के बड़े अंतर से जीता। उनके प्रदर्शन की वजह से जापान की महिला टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया ने रजत पदक अपने नाम किया। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
0: टॉप अल्ट्रा रनर्स ने अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार करते हुए व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में न सिर्फ पदकों की संख्या बढ़ाई बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान भी बढ़ाया। अब सीधे ले चलते आपको झारखंड की राजधानी, जहां 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता

0: जारी है। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता जारी है। आज का दिन भी रिकॉर्ड और पदकों के लिहाज से बेहद शानदार रहा है। स्टेडियम में मौजूद हमारी संवाददाता महवीश रहमान सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। महवीश
1: जी,
0: फेडरेशन कप के चौथे दिन आज मैदान पर कैसा रोमांच देखने को मिला? हमारे श्रोताओं को आज के मुख्य परिणामों के बारे में बताइए।
1: जी प्रशांत, आज चौथे दिन मैदान पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। आज कई राज्यों के स्टार एथलीटों ने पदक जीतने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया, जिससे दर्शकों को बेहद करीबी और रोमांचक मैच देखने को मिले। आज की सबसे बड़ी खबर दौड़ और हाई जंप स्पर्धाओं से आ रही है, जहाँ नए विजेताओं ने बाजी मारी है।
0: जी बिल्कुल, तो हमारे खेल प्रेमियों को ये भी बताइए कि आज महिलाओं और पुरुषों की इन मुख्य स्पर्धाओं में किसने बाजी मारी है।
1: आज महिलाओं की 500 मीटर दौड़ में रिलायंस की स्टार एथलीट सीमा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। सीमा ने कल भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं पुरुष वर्ग की 500 मीटर दौड़ में कर्नाटक के शिवाजी परशुरामा सबसे आगे रहे। इसके अलावा महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हिमाचल प्रदेश की कुसुम ठाकुर, जबकि पुरुषों में अनिमेश कुजूर जो हमारे स्टार धावक हैं, उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया। पुरुषों की 400 मीटर हर्डल में तमिलनाडु की आर विथाया रामराज ने बाजी मारी, जबकि महिलाओं के हाई जंप में उत्तर प्रदेश की ख्याति माथुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है।
0: महवीश, ये प्रतियोगिता कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी काफी अहम मानी जा रही है, तो इस प्रतियोगिता में अब तक कुल 12 खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आज के इस शानदार प्रदर्शन का आगे क्या असर देखने को मिल रहा है?
1: जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो यहाँ क्वालिफाई कर रहे हैं वो कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलेंगे। तो प्रतियोगिता के शुरुआती दिन में गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके और तेजस्वी शंकर ने जो नेशनल रिकॉर्ड बनाए थे, उसका उत्साह आज चौथे दिन भी खिलाड़ियों में साफ दिखा। आज विधाया रामराज, ख्याति माथुर, सीमा और शिवाजी जैसे खिलाड़ियों ने उनकी जीत ने साबित कर दिया है कि भारतीय एथलेटिक्स का भविष्य बेहद सुरक्षित हाथों में है। इससे पहले कल पुरुष पोल वॉल्ट में मध्य प्रदेश के देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार ने 5.45 मीटर की ऊंचाई पार कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। काउंटडाउन नियम से देव कुमार को स्वर्ण और कुलदीप को रजत पदक मिला और दोनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से तो हमें आगामी प्रतियोगिताओं के लिए देश को कई मेडल की उम्मीदें अब जाग गई हैं।
0: जी महवीश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रतियोगिता पर विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा की। ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप 26 से 31 मई के बीच जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित किया जाएगा। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की चयन समिति ने 22 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित कर दी है। इस टीम में ओलंपिक में दो पदक अपने नाम कर चुकी मनु भाकर और उनकी साथी ओलंपियन और विश्व चैंपियन पदक विजेता ईशा सिंह शामिल हैं। एक नज़र भारतीय निशानेबाजों पर।
2: प्रतियोगिता की शुरुआत 25 मीटर पिस्टल विमेन्स प्रेसिजन स्टेज इवेंट से होगी। इसके साथ ही 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष वर्ग का क्वालिफिकेशन राउंड और महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन का एलिमिनेशन राउंड भी शुरू होगा, जिसके बाद 10 मीटर एयर राइफल मेंस इवेंट के लिए क्वालिफिकेशन राउंड होगा। पहले दिन दो फाइनल मुकाबले होंगे। इन इवेंट्स में 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस और 10 मीटर एयर राइफल मेंस शामिल है। इस विशेष कप के लिए 80 देशों के कुल 696 एथलीट्स ने दावेदारी पेश की है। भारतीय टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का एक बेहतरीन मिश्रण है। दो बार की ओलंपियन और पूर्व एशियन गेम्स की चैंपियन राही सरनोबत म्यूनिख में सबसे सीनियर भारतीय निशानेबाज होंगी। अन्य अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजों में मौजूदा विश्व चैंपियन सम्राट राणा, पूर्व विश्व चैंपियन रुद्रांश पाटिल, वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट अनिश भानवाल, वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट एलाविनिल वलारिविन, वर्ल्ड कप फाइनल विजेता सुरुचि सिंह और मौजूदा म्यूनिक मिक्स टीम चैंपियन अर्जुन बबूता शामिल है। भारत की तरफ से पहली बार हिस्सा लेने वालों में पुणे की 22 वर्षीय साक्षी पाड़ेकर है। दूसरी तरफ 18 वर्षीय सूरज शर्मा म्यूनिक में भारत की तरफ से पहली बार हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में सबसे युवा है। वहीं 23 वर्षीय अजेंद्र सिंह चौहान ने घरेलू प्रतियोगिताओं में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम में जगह बनाई है। म्यूनिक में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के साथ भारत के लिए अपने पहले ओलंपिक इवेंट में हिस्सा लेंगे। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: नॉर्वे के ओस्लो में आज से शतरंज टूर्नामेंट शुरू हो रहा है।

0: ई गुकेश और आर प्रज्ञानंदा की मौजूदगी में भारतीय दल टूर्नामेंट में खिताब के अपने सूखे को खत्म करने की कोशिश करेगी। बात आईपीएल पर, आईपीएल के लीग मुकाबलों के कल समापन के साथ ही प्लेऑफ की चार टीम फाइनल हो गई हैं। प्रतियोगिता में अब तक कई रिकॉर्ड्स बने और तो कई ध्वस्त हुए। जानते हैं अब तक खिलाड़ियों का कैसा रहा प्रदर्शन।
1: अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर मौजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला क्वालिफायर वन में दूसरे स्थान पर काबिज गुजरात टाइटन्स से 26 मई को धर्मशाला में होगा, जबकि तीसरे और चौथे स्थान पर मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला एलिमिनेटर में 27 मई को न्यू चंडीगढ़ में होगा। क्वालिफायर वन जीतने वाली टीम को सीधे फाइनल में एंट्री मिल जाएगी। वहीं क्वालिफायर वन में हारने वाली टीम और एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम का मुकाबला 29 मई को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इस मैच को जीतने वाली टीम को फाइनल में जगह मिलेगी। फाइनल मुकाबला 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हम ऑरेंज कैप की रेस की बात करें तो वहां साई सुदर्शन 638 रनों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं 616 रनों के साथ शुभमन गिल दूसरे, हेनरी क्लासन 606 रन के साथ तीसरे और केएल राहुल 594 रन बनाकर चौथे स्थान पर हैं। वैभव सूर्यवंशी 583 रनों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। पर्पल कैप के लिए भुवनेश्वर कुमार 24 विकेट और बेहतर इकोनॉमी के साथ पहले, कासिगो रबाडा 24 विकेट के साथ दूसरे, जोफ्रा आर्चर और अंशुल काम्बोज 21 विकेटों के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर हैं।
0: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण
2: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत

0: दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी पलाना स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
2: High international crude prices and
3: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
2: Fertilizer and foreign exchange.
1: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
4: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
5: Several key agreements were signed.
6: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
5: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
7: Against the assessment of
3: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
7: Like metric tons of imports have reached our shores.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता

शबनम। प्यार से लोग मुझे कहते हैं शबो,

ए पहचाना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

उस रोज रात भर शहनाई बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्मा नहीं घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: चित्रपट संगीत में अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत। फिल्म इंतकाम के लिए संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।

वो आ गया।

आशा भोसले और आर डी बर्मन की आवाज़ों में आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। फिल्म कारवा के लिए संगीत आर डी बर्मन का था। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा आपके साथ। आज का ये दौर जहां हर इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुका है कि अपनों खासकर अपने माता पिता के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय भी मुश्किल से निकल पाता है। नौकरी की मजबूरियां, घर की जिम्मेदारियां और बेहतर भविष्य की तलाश में पलायन, इन सबके बीच सबसे ज्यादा अकेलेपन का सामना करते हैं हमारे बुजुर्ग। वो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बदलते समय के साथ उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सही सहारा देना आज समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। 2011 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10 करोड़ थी, जो 2036 तक दोगुना होकर 23 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। तो श्रोताओं, ऐसे में बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक सहारे को लेकर नई सोच और नई पहल की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ सरकार ने शुरू किए हैं जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। आज पब्लिक स्पीक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू हुए इन प्रयासों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे। आपका स्वागत है मोनाली जी।
1: धन्यवाद मैम।
0: और श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है वो डायल करें और उसके बाद ये नंबर डायल कर सकते हैं 2331-0481 या 2371-1711-7, 2371-7106 और 2331-4444। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289-0940-44। और श्रोताओं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। मोनाली जी, सबसे पहले ये बताएं कि जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड क्या है और क्या उद्देश्य है इनका?
1: जीवन ऐप जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क है उसका फुल फॉर्म, और शतायु सीनियर्स होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। जीवन ऐप, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 2025 मई में माननीय राष्ट्रपति जी ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल को लोकार्पित किया था, उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने यह मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम है जीवन जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। अभी आपने कहा कि जैसे हमारे वरिष्ठ जनों की पॉपुलेशन 2011 में टोटल जो 8.4% थी, अभी 2036 तक 15% की ओर बढ़ेगी। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सीनियर इंडियन की, वो 30 से

0: 32 सालों के बीच से आज बढ़ के हो गई है 70 पॉइंट औसतम 70.3। इसको सबको नजर रखते हुए जैसे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव आपातकालीन सहायता इन सब चीजों पे विचार करते हुए हमारे मंत्रालय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हैं इन्होंने जब सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया इसी के सीरीज में यह ऐप एक वन टाइम स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा इसी को लॉन्च किया गया है। दूसरा है शतायु। शतायु एक डैशबोर्ड है जहां पे ट्रेंड प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर केयर गिवर अभी तक हमारे मंत्रालय ने जितने ट्रेंड केरियाटिक केयर गिवर्स किए हैं उन सब के बारे में वहाँ पे जानकारी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अगर किसी को उनकी सेवा चाहिए तो वो वहाँ पे अपना ढूंढ सकते हैं।
1: ऐसे जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की बात की यानी जो बुजुर्ग देखभाल कर्मियों की जानकारी जो उपलब्ध है तो इसी से जुड़ा एक हमारे व्हाट्सएप पे सवाल आया और सीनियर सिटीजन्स के बहुत सवाल आए आज मोनाली जी हमारे पास व्हाट्सएप पे। और पहला सवाल ये है कि हाउ कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जेरियाट्रिक केयर प्रोवाइडर्स अवेलेबल इन माई लोकल एरिया, डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस फॉर सर्चिंग द केयर वर्कर्स। ये है नैना का सवाल मुंबई से।
0: जी थैंक यू नैना जी। जेरियाट्रिक केयर गिवर का जो अगर आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो उसमें आपके लोकेलिटी पे जो आप रहते हैं वहाँ पे मुंबई में या महाराष्ट्र में जैसे आपने मुझसे कहा जी। तो वहाँ पे कितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स हैं उसके बारे में आपको तहत जानकारी मिलेगी। उसमें एक नंबर होगा जहाँ पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। एक ओटीपी आते ही आपका जेन्युइन चेक करके वहाँ के जितने प्रोफेशनल केयर गिवर्स है वहाँ पे एक मैसेज चला जाएगा उनको कि आप ये सेवा चाहती हैं, उसके हिसाब से जो भी फ्री होंगे या अभी कहीं काम नहीं कर रहे होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे आपके नंबर पे और फिर आप उनकी सुविधाएं यूज कर
1: पाएंगे। तो ये नंबर्स रजिस्टर्ड होंगे जैसे अगर हमें ओटीपी आएगा और अगर कोई बुजुर्ग है वो चाहता है कि है तो ये इसको अगर हम वेरीफाई करने के लिए तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा या मेडिकल हिस्ट्री भी ऐसी कुछ भी देनी होगी उस समय?
0: नहीं, एक सीनियर सिटीजन या उसके घर के परिवार वाले अगर फोन करते हैं तो उनको वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं के मोबाइल पे ओटीपी आएगा
1: जी
0: कि हमारे जेरियाट्रिक केयर गिवर का वहाँ पे सिर्फ नाम होगा, वो किस जेंडर का है वो होगा और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ये होगा, इसके अलावा वहाँ पे कोई जानकारी नहीं होगी।
1: और एक और सवाल आया है हमारा,
0: इसका पार्ट टू भी
1: ये है, डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस के लिए, क्या पेड है, भुगतान देना पड़ेगा?
0: जी नहीं, किसी भी नागरिक को इस सेवा के लिए कोई भी भुगतान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक ओटीपी से अपना जेन्युइनिटी वेरीफाई करना होगा। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी जब आप इनकी सर्विसेज लोगे, आपने किसी की सर्विसेज हायर की है उस पे, तो इस हिसाब से आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपके वहाँ के अवेलेबल चार्जेस पे आपको देना पड़ेगा, पर इसका पुलिस वेरिफिकेशन हो कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो वो आप ही को करना पड़ेगा, हम सिर्फ प्रोफेशनली ट्रेंड केयर गिवर्स दे रहे हैं
1: जी, हम सब जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और बाकी की जो प्रोसेस होगा वो अकॉर्डिंगली होगा
0: जी।
1: सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से धर्मवीर जी। हेलो
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपको भी मालूम है कि सीनियर सिटीजन जब अपनी एज पे आ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी कान सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है
0: जी,
2: वो फोन चलाने लायक नहीं रह जाते और कोई स्मार्टफोन नहीं चलाना जानता हो, कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे लोगों की क्या एक अलग ही प्रॉब्लम होती है, कोई बर्थ दिव्यांग है, किसी के दोनों पैर खराब हैं, वो अपने घर से तो निकल भी नहीं सकते, उनको तो लैट्रिन बाथरूम बिठाने के लिए भी
1: जी मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन से या तकनीक से बहुत परिचित ना और जो ये एक्सेस ना कर सके तो उन्हें किस तरह से सहायता मिलेगी जी। धर्मवीर जी, और संजय सूरी जी का भी हमारे पास इसी से जुड़ा सवाल है व्हाट्सएप पे कि जैसे जो कई बार सीनियर सिटीजन्स हैं जो वो बहुत सेवी नहीं है, जो मतलब टेक्निक्स और जो आजकल की जो नई सेवाएं आ रही हैं वो मोबाइल पे वो नहीं चाहते, तो उनके लिए ये कैसे हेल्प करेगी और कौन हेल्प कर सकता है इसको लेकर?
0: जी इसमें एक हमारा एल्डर लाइन है 14567, ये नंबर हमारा एल्डर लाइन का है जो हमेशा इस ऐप से जुड़ा हुआ है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक 14567 पे डायल करके जो भी सेवाएं हैं वो उसके बारे में तहत जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए उस मोबाइल जानकारी होना या मोबाइल पे टेक सेवी होना जरूरत नहीं है।
1: जी थैंक यू मोनाली जी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमारे एल्डरी के लिए। और एक और हमारा व्हाट्सएप पे प्रश्न है, ये है कमल कांत जी का हैदराबाद से, कि हाउ कैन सीनियर सिटीजन्स गेट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसीज, अगर आपातकालीन कई बार होता है और बहुत इमरजेंसी कोई होता नहीं क्योंकि अकेलेपन में रहते अकेले रहते हैं, तो उस समय बुजुर्ग को जो बुजुर्ग है वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह से सहायता सुलभ हो सकती है।
0: जी थैंक यू कमल कांत सर आपके क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जीवन ऐप में भी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल पे भी आपको पता होगा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14567, तो यही सुविधा इमरजेंसी में हमारे वरिष्ठ नागरिक यूज कर सकते हैं। जब आप जीवन ऐप करते हैं तो इसका हमने 112 और 108 के साथ भी उसी पे एक सुविधा प्रदान की हुई है, जिसके माध्यम से आप तीनों नंबर्स पे कहीं भी अपना हेल्प या इमरजेंसी पे आप कॉल कर सकते हैं।
1: और एक बहुत ही विशेष अनुरोध आया है हमारे पास व्हाट्सएप से कि आप प्लीज जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मराठी में चाहते हैं, और उनका प्रश्न ये है, अरुण पवार जी हैं, उनका प्रश्न ये है कि हाउ कैन आई फाइंड नियर बाय वॉक इन सेंटर फॉर सपोर्टिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फ्रॉम जीवन मोबाइल ऐप। अनुरोध किया है उन्होंने बहुत ही।
0: थैंक यू अरुण पवार जी, मी तुम्हाला मराठीमध्येच उत्तर देईल। आमच्या याच्यात राष्ट्रीय वयोश्री योजनेच्या तहत पुष्कळसे सेंटर्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत, तुम्ही तिथे नाव टाका आणि तुमच्या जागेत तुम्हाला मिळेल। अभी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना चाहूंगी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत हम लोग जैसे कैंप्स लगाते हैं वो ऑनलाइन सेंटर्स के पूरी जानकारी 100 के करीब हमारे दिव्य वयोश्री केंद्र है, वहाँ पे बुजुर्ग जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरतें जो होंगी वो आधार कार्ड का देके परिचय पत्र देके ले सकते हैं। तो ये जानकारी ऑलरेडी हमारे जीवन ऐप पे भी अवेलेबल है।
1: जी, और सवाल है गोपाल सोनी जी का राजस्थान के सीकर से, और संजय सूरी जी का, जो कई उनके जो प्रश्न हैं दोनों के वो समान हैं। उनका कहना है कि ये जानना चाहते हैं कि जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उसमें जो वरिष्ठ नागरिकों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा।
0: जी संजय सूरी जी और गोपाल सोनी जी। आपके सवालों के लिए तो पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि जीवन ऐप के बारे में मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूँगी। जीवन ऐप में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के सीनियर सिटीजन होम, जिसको हम वयो आश्रम बोलते हैं, उसकी पूरी जानकारी जो हमारे मंत्रालय से ग्रांट्स पाते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी, विद ज्योग्राफिकल लोकेशन, नाम पता। दूसरा है एल्डर लाइन, जैसे मैंने कहा 14567, उसका 112 और 108 के साथ। तीसरी है हमारे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जितने कैंप्स लगने वाले हैं और जितने वॉक इन सेंटर्स हैं उसके बारे में। चौथी जानकारी आपको मिल सकती है जहाँ पे हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन जो है अपने पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्कीम है, कहाँ से लिया जाए, या फिर आयुष्मान भारत कार्ड जो है जहाँ कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या सुविधाएँ हैं, कहाँ अप्लाई करना हो, इन सब के बारे में इस प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन शुरू किया हुआ है। इसके अलावा हमारे जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं, एमओयू हुए हैं, वो आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो, ब्रह्म कुमारीज हो, वेव विकास हो, या जिस भी संस्थाओं के साथ हमारा काम चल रहा है, हमारे जितने भी स्कीम्स के बारे में जो हमारा ब्यौरा है, हम लोग इंटरजनरेशन बॉन्डिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे जो भी नए पहल हैं, इसकी गैलरी है, मैसेजेस है, अनुभव बोलता है, जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आके भी बोलते हैं, तो ये सब जानकारी आपको उस जीवन ऐप में भी उपलब्ध होगी।
1: और संजय सूरी जी का एक और दूसरा प्रश्न ये है, क्योंकि जैसे आपने अभी मराठी में जवाब दिया, तो ऐसे कई श्रोता जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो सुविधा दी जा रही है तो उपलब्ध होगी।
0: जी इसका प्रयास चल रहा है और तुरंत ये उपलब्ध हो जाएगी
1: ताकि लोगों को आसानी हो।
0: जी, जो संजीवनी
1: संजय सूरी जी। और सासाराम बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
3: जी नमस्कार, मैं सासाराम बिहार से बोल। इसमें मैडम ने अभी बताया बहुत अच्छा कि दूर दराज तक कैसे हम लोग इसको पहुंच बना सकते हैं। मेरा इसमें और ऐड करना था कि क्या जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर

0: रात तक जो उसमें कुछ ऐसा रेशियो भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चल नहीं सकते हैं, उन तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं? तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे सेवा केंद्र के माध्यम से या कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट हो, जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की जो सेवाएं हैं वो लगातार पहुंच पर नहीं है, उसके हिसाब से कुछ ऐसा प्रोग्राम करके ताकि वहां तक दूर बैठे लोगों तक भी वो पहुंच सके। जो मैडम ने बताया था बहुत अच्छा अच्छा है, ये भी हो सकता है कि कुछ 10% 20% जो भी थोड़ा बहुत छूट दी जाए तो वहां तक हम लोग पहुंच बना सकते हैं। जी,
1: सुझाव दे रहे हैं अमित जी कि दूर दराज क्षेत्र तक अगर पहुंच बढ़ानी हो तो।
2: जी अमित उपाध्याय जी, सासाराम से थैंक यू आपके प्रश्न के लिए। हमारे बिहाफ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है वो भी हमारे तहत हमारा बहुत सा कार्यक्रम इस पे सुचारू रूप से चलाते हैं। तो यही नहीं है कि केंद्र में ही हम चला रहे हैं, पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या सामाजिक न्याय मंत्रालय जो आपके स्टेट के हैं बिहार के जैसे, तो आप वहाँ भी जाके उनसे ये मांग सकते हैं। वहाँ भी वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वेलफेयर ऑफिसर होता है। तो हमारी पहल ऑलरेडी स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ पहल शुरू हो चुकी है कि आप तक हम पहुँचे।
1: जी हाँ, तो सिर्फ ये शहरों तक सीमित नहीं है, तो पूरे देश में हर कोने तक इस सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का। मोनाली जी, अगर देखूं जैसे हमने शुरुआत में अकेलेपन की भी बात की, तो जो वरिष्ठ नागरिकों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो ये कितनी उपयोगी हो सकती है?
2: मैं इसमें एक आपको उदाहरण पेश करना चाहूँगी। हमारा जो 14567 है इस पे बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन हैं, 40-45 मिनट सिर्फ बोलते हैं क्योंकि अकेले रहते हैं तो उन्हें कोई बोलने वाला चाहिए। तो ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बुजुर्ग हमसे बातें करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ अभी हमारे मंत्रालय ने, माननीय मंत्री जी ने भी इंटर जनरेशन बॉन्डिंग पे काफ़ी जोर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के साथ भी हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम साझा करने चाहे हैं, वॉकथॉन्स करते हैं इंटर जनरेशन बॉन्डिंग के नाम पे, बहुत से हमने सीरीज भी शुरू की है। तो हर तरह से प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है कि हम ये जो सामाजिक इंक्लूसिव सोसाइटी हमारे बुजुर्गों के साथ एकजुट होके चले का प्रयास करते हैं कि वो अकेलापन महसूस ना करें।
1: जी हाँ, तो मतलब इसमें जो है कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं।
2: जी
1: ठीक है, मतलब ताकि जो ज़्यादा लोगों तक अगर हम हों तो पहुंच बना सके। तो अगर मैं एक संक्षेप में जाना चाहूँ, आपने जैसे कुछ कुछ योजनाएं बताई और जैसे आयुष्मान योजना है, तो क्या ये भी हमें उपलब्ध होगी? और जो बेसिक योजनाएं हैं वयोवृद्ध जो हमारे जन हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो एक बेसिक जानना चाहती हूँ कि मुख्य तौर पर क्या क्या योजनाएं हैं, आप संक्षेप में बताएं।
2: अभी तो हमने जो जीवन पोर्टल जो लॉन्च किया है उसमें हमने आयुष्मान भारत जो हमारे सीनियर सिटीजन या सीनियर नागरिकों के लिए हैं आभा कार्ड, उसके लिए हमने प्रयास किया है। ओल्ड एज पेंशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देता है उसके लिए प्रयास किया है। जीवन प्रमाण जो पोस्टल और बाकी मिनिस्ट्रीज देती है उसका भी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाते हैं भारत सरकार, उसका बैकएंड से इंटीग्रेशन हमने अभी धीरे धीरे शुरू किया हुआ है इस पोर्टल के माध्यम से कि हमारे बुजुर्ग वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन प्लेटफॉर्म पे ही उन सबको ये मिल जाए।
1: अच्छा, मतलब एक ही जगह पे, क्योंकि कई योजनाएं हैं, कई जो उसके ऐप्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही जगह पे सारी योजनाएं उपलब्ध हैं, तो उससे बहुत सहूलियत होगी जो हमारे वृद्ध जन हैं। पुणे से जुड़े हैं श्रीपद झाकड़े जी।
3: हेलो हेलो,
1: नमस्कार श्रीपद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद। मैं श्रीपाद झाकड़े बोल रहा हूँ पुणे से। तो मेरा सवाल ये है कि मैं दृष्टिहीन हूँ और वृद्धाश्रम में रहते हैं, मतलब हम लोगों को किस प्रकार इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है? कारण हमारे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है और कोई हम ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमको कैसे मतलब इसका उपयोग हो सकता है मतलब हम लोगों को?
1: जी हाँ, दृष्टिहीन है और वृद्धाश्रम में रहते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है?
2: श्रीपाद जी, आप पुणे से बोल रहे हैं, सीनियर सिटीजन होम से?
1: जी, अब डिस्कनेक्ट हो गया है, पर हाँ जी, हाँ, उन्होंने बताया वृद्धाश्रम
2: से रहे। तो हमने जो जीवन ऐप लॉन्च किया है इसमें तो हर जानकारी है। इसके अलावा जितने एनजीओ जो सीनियर सिटीजन होम्स को कार्यान्वित कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इस ऐप को देख के जो जो कार्यक्रम आसपास हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उस पे है। आप अपने मैनेजमेंट स्टाफ को भी पूछ के ये जानकारी वहां से ले सकते हैं।
1: जी हाँ, तो बहुत

0: ईजी करने की कोशिश की गई है और आप तक पहुंच बढ़ाने की सरकार की कोशिश की गई है। अगर मैं विशेषता जानना चाहूं इस ऐप की और इस डैशबोर्ड की, तो क्या है जो बुजुर्गों के लिए हो, क्योंकि जो टेक्निकल जो इतने सेवी नहीं है और स्मार्टफोन जिनको चलाने इतने खास नहीं आते, तो ऐसे में उनके लिए क्या विशेषता है?
1: पहले बात करते हैं शतायु की। शतायु नाम ही इसलिए हमने दिया है कि आप 100 साल जिए, तो हम आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक सामाजिक जुड़ाव के लिए हमने शतायु ऐप नाम उसका किया है, जहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की मदद मिले कि आपको डेली कंपेनियनशिप हो, आपके वेलबीन के लिए हो, योगा हो, इन सब के लिए आपको मदद मिले। आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐप पे जाके आप सीधा आपके आसपास के जितने भी प्रोफेशनली ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी करके उनकी सर्विसेस ले सकते हैं। अब आते हैं हम जीवन ऐप पे, जो दूसरा हमने पोर्टल लॉन्च किया है जीवन। उसके तहत ना ही, जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन होम्स, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप और बाकी भी है, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी हमारे पास कार्यक्रम होते हैं जिसपे आप डायरेक्टली लॉग करके आप इसके ऑनलाइन जुड़ के भी आप ले सकते हैं जानकारियाँ
0: जी। जी, तो मतलब आप जानकारी लेना भी आपके लिए आसान, और सबसे आसान तो ये है कि जो आपने एल्डरली जो हेल्पलाइन नंबर बताया हुआ है, तो 1-4-5-6-7-1-4-5-6-7, इस पर अगर आपको कोई भी शंका, कोई भी दुविधा है, तो आप इस नंबर पर डायल करके अपने सवाल के जवाब पा सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़े हैं रशीद अहमद खान जी।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार।
2: आप सभी लोगों को आगामी पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
0: जी, धन्यवाद
2: जी। और हाँ जी, मतलब सवाल मेरा ये है कि क्या जितने वरिष्ठ नागरिक लोग रहते हैं या अकेले रहते हैं या किसी परिवार में भी है मान लें, तो क्या उनको कोई वैधानिक समस्या आ रही है, उनके परिवार के लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं या मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ कानूनी हेल्प मिलती है उनको?
1: जी रशीद जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा कि 1-4-5-6-7 ये जो हेल्पलाइन है, इसके तहत आपको ये सब जानकारी और मदद तो मिलेगी मिलेगी, इसके अलावा 112 जो आपका ERSS नंबर है, इस पे भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिस पे आपको बाकी मदद भी वहाँ के वहाँ पहुँचाई जाएगी।
0: जी हाँ, तो दो नंबर्स मैम ने बताए हैं, 1-4-5-6-7 और जो कनेक्टेड हैं 112 के साथ भी, तो कोई भी आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो आप इन नंबर्स पे डायल करके आप सेवा ले सकते हैं। अगर जैसे वरिष्ठ लोगों को जो इतने अगर नहीं सुन रहे हैं कार्यक्रम या उन तक ये पहुंच नहीं हो पा रही है कि ये जो सुविधा सरकार ने शुरू की है, तो उन तक इस बारे में जागरूकता लाने के लिए, इन सेवाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
1: एक तो मुझे आकाशवाणी का थैंक यू बोलना चाहिए, अभी पब्लिक लाइव हुए हैं तो सब पब्लिक जहां भी है वो सुन रहे हैं, तो एक तो ये पब्लिक डिसेमिनेशन है ही
0: जी,
1: प्रेस के तहत और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा कि हमारे बिहाफ पे वो भी बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनके तहत भी हम ये जीवन ऐप जो है वो भी इसके बारे में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुँचने की हम लोग ज़रूर प्रयास कर रहे हैं।
0: जी हाँ, जैसे हमने जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की बात की, और जैसे हमें तो खैर उस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, पर अगर हम हर क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ जब भुगतान करना है, तो अगर हम जाएँ दूर दराज के क्षेत्रों में और जो भुगतान सेवा है, तो उधर भी उपलब्ध होगी जो ये प्रोवाइडर्स होंगे, केयर गिवर्स जो होंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल जो कर्मी होंगे, कि वहाँ पर भी उपलब्ध होंगे ये इतनी दूर दराज के क्षेत्रों में भी?
1: जी, अगर वहाँ पे जैसे दूर से कोई ट्रेंड है उस जगह से, जैसे बिहार से, सासाराम से, अगर वहाँ पे कोई प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर है, तो उसके आसपास के लोकेलिटी में जितने लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, वो उसकी पूरी जानकारी वहाँ मिल जाएगी।
0: जी, दिल्ली से जुड़े हैं राजकुमारी जी।
3: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।
3: मैं राजकुमारी, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी आयु 82 वर्ष है मैडम
0: जी।
3: आपके मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जीवन ऐप क्या है, और सीनियर सिटीजन्स को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी मैडम?
0: जी राजकुमारी जी, एक बार आपसे गुजारिश है, फिर से बता दें आपके बारे में और क्या इससे लोगों को फायदा होगा।
1: नमस्कार मैम। जीवन जॉइंट एंडली एम्पावर एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क ऐप है, जो एक मोबाइल सॉल्यूशन है। जीवन ऐप में आपको आपके आसपास होने वाले सीनियर सिटीजन होम्स हो, राष्ट्रीय वयोशी कैंप्स हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन या वॉक इन सेंटर जहाँ पे आप जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस ले सकते हैं। इसके अलावा एल्डर लाइन जो हेल्पलाइन है और 112, इसके बारे में आप जानकारी, आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई ज़रूरत हो तो इस वाले में 112 और 14567 पे डायल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीनियर सिटीजन्स है उनकी जो जैसे आभा कार्ड है या वयोश्री पेंशन योजना है या जितने भी सीनियर सिटीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप्स है उसका इंटीग्रेशन के बारे में जो प्रयास चल रहा है, तो इसकी सब जानकारी जो हमारे वयोश्री वयोश्रेष्ठ नागरिक है उनको मिलने के लिए हमारा मंत्रालय का एक छोटा सा प्रयास है।
0: जी, तो इसमें जैसे आपने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की तो राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी?
1: राज्य सरकार की भूमिका ये होती है, जैसे हम बड़े मेजर इस पे काम करते हैं वो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं जहाँ पे वो हर व्यक्ति के आसपास के या उस स्टेट्स के रिलेटेड की ज़्यादा जानकारी उन्हें होती है। एक माइक्रो लेवल पॉलिसी हम बना लेते हैं पर वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मोस्टली राज्य सरकारों का होता है क्योंकि वो एक आम नागरिक से जुड़ते हैं, हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते तो हमारा माध्यम होता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ पे जितने मेडिकल कैंप्स लगने हैं, ऑपरेशंस कैटरैक्ट के होने हैं या जो ट्रेनिंग करवानी है या डिमेंशिया स्क्रीनिंग हो रही है तो वो सब जानकारी जो भी कैंप्स करवाने या जो भी आईसी मटेरियल की जानकारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है।
0: जी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हैं रमा शंकर जी।
4: नमस्कार,
0: आपका सवाल।
4: हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसा बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि जो वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, दूर दराज गांवों में रहते हैं, उनके लिए ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, यह व्यवस्था क्या की गई है कृपया बताएं।
0: ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था है कि उन तक ये जो फायदे हैं और ये जो योजनाएं हैं ये प्रयास है पहुंचे?
1: रामाशंकर जी, आपको मोबाइल टेक सेवी होने की ज़रूरत नहीं है। आप 14567 डायल करते ही आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस ऐप में क्या है या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए मंत्रालय का क्या दायित्व है और मंत्रालय के क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं।
0: अगर उन्हें का स्मार्टफोन भी नहीं है तो क्या करें?
1: 14567 अच्छा, में आपको स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल इससे भी आपका वो टोल फ्री नंबर है, आप डायल कर सकते हैं।
0: जी हाँ, तो अब आपकी जो समस्या था उसका निजात कर दिया मोनाली जी ने। मध्य प्रदेश
1: मंत्रालय ने
0: जी। राजेश नेमा जी।
5: जी
0: राजेश जी, आपका सवाल क्या है?
5: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
0: जी,
5: तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान की जो आपाधापी है उसमें घर में जो बुजुर्ग रहते हैं वो परिवार से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो इस स्थिति में वह ऐप क्या मदद कर सकता है?
0: जी राजेश जी, अब अक्सर आप देखिए कि सवाल ये है कि आपस में अगर घर में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है तो उस स्थिति में ऐप का, हालांकि मैम ने बताया कि नंबर ही है 14567 और इसके अलावा क्या उन तक सहायता हो सकती है? मोनाली जी,
1: राजेश जी, जैसे हमने कहा कि परिवार के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, परिवार का आपसी मनमुटाव तो अपना पारिवारिक जीवन ही होता है, पर इसके अलावा अगर एब्यूज़ हो रहा है, मारपीट हो रही है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप 112 और 14567 पे ज़रूर आप इस पे रेस करिएगा, हम आपके लिए जस्ट वन कॉल अवे हैं।
0: जी, तो अगर हम युवा पीढ़ी की बात करूँ इसमें तो युवा पीढ़ी किस तरह से सहायता दे सकती है?
1: जी थैंक यू इस सवाल के लिए। हमारे आदरणीय मंत्री जी भी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी इसके लिए काफ़ी प्रयास करते रहते हैं कि हम इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग और युवाओं को कैसे शामिल किया जाए कि हम बुज़ुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाए जाए, तो इसके इससे साथ हमने बहुत से ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाने की कोशिश की है, जैसे ग्रैंड पेरेंट टीचर मीट स्कूलों में हो जाए, वॉकथॉन्स हो जाए, प्लेज ऑनलाइन प्लेजेस लेने चाहिए, तो इवन जेरियाट्रिक केयर गिवर जो है वो युवाओं के लिए ही है कि आज का युवा कल जाके जो बुजुर्ग हो तो उसके लिए वो अपने घर वालों की कैसे सेवा कर सकता है, तो इससे हम युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
0: तो अगर मैं भविष्य में देखूँ, अगर आपने जैसे योजनाएं बताई, जो स्कीम्स बताई इसमें है, तो और आगे भविष्य में किस तरह की चीजें इसमें एड ऑन करने की आपकी वो है योजना है?
1: जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारा जो

सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये पहल हमारे बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद, सुरक्षा और सम्मान को नई रोशनी देगी, यही उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आई और विस्तार से चर्चा की, इस बारे में धन्यवाद। और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिनके व्हाट्सएप पे हमें प्रश्न मिले और जिनके हमें कॉल्स आए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर।

रात की इस खूबसूरत फिजा में जब हवाएं भी कोई मीठी धुन गुनगुनाने लगती है, जब दिल बीते लम्हों की किताब खोलकर कुछ भूले बिसरे गीतों को याद करने लगता है, तभी शुरू होता है संगीत, एहसास और यादों का कारवां, सुरों का सफर। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त थानेन्द्र। अगले आधे घंटे तक हम साथ चलेंगे इस सुरीले सफर में, जहां हर गीत किसी की मुस्कान बनकर उभरेगा, हर धुन किसी की यादों को छू जाएगी और हर लफ्ज दिल के किसी कोने में उतर जाएगा। श्रोताओं, संगीत सिर्फ आवाज नहीं होता, ये वो एहसास है जो कभी आंखों में चमक बनकर उतरता है तो कभी खामोशी में भी दिल की धड़कन बन जाता है। कभी किसी पुराने गीत में हमें अपना बचपन मिल जाता है तो कभी किसी धुन में किसी अपने की याद। तो तैयार हो जाइए कुछ सुरीले नगमे और ढेर सारी खूबसूरत यादों के साथ एक यादगार सफर पर चलने के लिए, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा एहसासों से भरा कार्यक्रम सुरों का सफर। और इस सुरीले सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत के साथ जो न सिर्फ कानों को सुकून देगा बल्कि दिल को भी मुस्कुराने की वजह दे जाएगा।

लता मंगेशकर, चितलकर और साथियों की आवाजों में आपने सुना फिल्म अलबेला का गीत। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण, संगीत सी रामचंद्र का था। और इस गीत को सुनना चाहते थे हमारे ये श्रोता साथी, भाटापारा दतरेंगे से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, झाविंद्र कुमार वर्मा, पटपर डोंगरगढ़ से रामगोपाल ध्रुव, नरेंद्र कुमार ध्रुव, कविता और जयंती ध्रुव, बाजार पारा बेमेतरा से भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार सिन्हा, लक्की सिन्हा और मुरली मनोहर पटेल, नर्मदा धाम सुरसुली से आप हैं कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र योगेश यादव, रामनगर रायपुर से राजेश अम्बादे, शशिकला अम्बादे, पूजा अम्बादे, बंगला मटिया बालोद से शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, पीहू, लीना और आशुतोष अंगारे, कोर्दल अवन से भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद वर्मा, गुलशन कुमार, शिवकुमारी, हेमलता, बेद किरण वर्मा, दरचूरा से ददवा साहू, भूरी साहू, रेखा, मोतीलाल साहू, सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव और संगीत नगरी खैरागढ़ से रविंद्र अग्रवाल, पुष्पलता, डॉक्टर झरना, प्रेरणा, दीक्षा और शिक्षा। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नया दौर से। गीतकार हैं साहिल लुधियानवी, संगीतकार ओपी नैयर, आवाजें शमशाद बेगम और आशा भोसले की। इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है हमारे ये श्रोता, शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा, धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, अरमरी खुर्द से चूरामन लाल वार्डे, जैनी वार्डे, विवेक कुमार, नेहा वार्डे, कोटा रायपुर से अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा, दिनेश सेन, यहीं से योगिता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी और ओजल वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता सारथी, कमलकांत, वीरेंद्र, व्रजकांत सारथी, हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस दास, सतीश वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव, दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना लक्ष्मीना यदु, नवागढ़ कटई से आप हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा और भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु और विनय ठाकुर। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म नया दौर का ये गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर। कार्यक्रम के अगले गीत को पसंद किया है आप सबने। कटोरा तालाब रायपुर से मोहनलाल देवांगन, प्रभा देवांगन, भूपेश तुषार देवांगन, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा कांबड़े, मीना विपुल कांबड़े, पिपरिया से आप हैं कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये, बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, रिंगनी से आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, सिमगा से सविता जैन, प्रदीप जैन और इनके साथी, भाटापारा से दानसिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत, भिलाई जामुल से विकास वर्मा, खुशी वर्मा, ग्रंथ वर्मा, यहीं से संजय प्रधान, पूजा प्रधान, शीतलानगर दुर्ग से शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर, बेमेतरा से राज और रागिनी वैष्णव, चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियाना मल, अनिता मोटवानी, राजेश मुकेश मोटवानी, सोमेश मनीषा और शुभम। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम तुम सा नहीं देखा।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और कमल बारोट की आवाजों में फिल्म पारस मणि का गीत। गीतकार हैं असद भोपाली, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फरमाइश आप सबकी। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक, सीमा साहू। मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू। मेघापारा चिल्फी से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दिव्यांशु, दिव्या पटेल।

यहीं से दीपांजलि और दीपक, दतरेंगी से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि नोखेलाल वर्मा, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह ऋषभ और राम सहोदर, पहरा अहिवारा से आप हैं पोषण बंछोर, चंद्र किरण प्रीति छाया बंछोर, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन, सह्या मालगी से सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवरानी चंद्रवंशी, आकाश प्रतिभा पूर्वी और पूनम चंद्रवंशी, हस्ता नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र पायल साहू, खम्हार मुड़ा से शिवाय गिरी गोस्वामी, एकांशी गोस्वामी, भीम खोज तरपोंगी से आप हैं संतोष गुप्ता, हितेश होमेश, लक्ष्मी प्रतिभा गुप्ता और अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। आप सबकी पसंद पर सुनिए फिल्म पारसमणि का ये गीत।

कार्यक्रम के आखिरी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोता साथियों ने। बागबाहरा भदरसी से आप हैं पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा कौशल सेन, इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, शिखा, शेफाली, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा।

पद्मा चांदनी, राहुल भूपेश, दीपेश वर्मा, कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद चंद्राकर, पूर्णेंद्र साहिल चंद्राकर, लोरमी सहसपुर से छोटको साहू, मोहित साहू, लोकेश रामकिशन और दूली चंद साहू, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल आप हैं लघान पंडरिया से, डोंगरिया मलाजखंड से मुन्नालाल पटले, माधुरी पटले, दीपांशु याचना पटले और गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरी देवांगन, दीपक कुमार, जयश्री देवांगन, ऋषभ और ऋचा देवांगन। आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ज्वेल थीफ का ये गीत। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, आवाज़ें लता मंगेशकर, भूपिंदर और साथियों की।

अभी आप सुन रहे थे पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए शाहिद परवेज का सितार पर बजाया राग पुरिया धनाश्री में आलाप गत। मध्य लय 3 ताल में निबद्ध है। तबले पर संगतकार हैं विजय घटे।

0: आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
2: High international crude prices and
3: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
2: Fertilizer and foreign exchange.
1: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है।

0: And that's the end of the news bulletin.
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ कल सुबह 5:53 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

हेलो सर, टॉक स्टूडियो से समय मिला लीजिए। 5:24, 46, 47, 50, 51, 52 सेकेंड्स। ओके सर, वर्क स्टेशन 1।

हेलो सर, आर्टिस्ट साइड से समय मिला लीजिए। 5:26, 2:03, 4 सेकेंड्स। हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक नंबर 2। 5:26, 11, 12, 13, 14 सेकेंड्स।